हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त सन 2026। प्रातः के 5:58:40 हो रहे हैं। हमारी प्रथम सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है, कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात के 6 बजने को है, अब सुनिएगा समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी सी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रूपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा

0: सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज पर प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्तिमय कार्यक्रम वंदना। आस्था की डोर हम सबको जोड़ती है और सुबह की पहली किरण के साथ जब मंदिरों की घंटियां गूंजती है और गुरुद्वारे से वाहे गुरु का सिमरन सुनाई देता है और दूसरी ओर मस्जिदों से आजान की रूहानी पुकार फिजाओं में घुल जाती है, तब हमारा मन अपने आप ही ईश्वर की आस्था में झुक जाता है। तो आइए इसी दिव्य वातावरण में आरंभ करते हैं, श्रद्धा से अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए सुनते हैं ये भक्तिमय भजन।

जीवन में सुख हो या कठिनाई, ईश्वर की कृपा हमारी हर राह को आसान बना देती है। जब मन सच्चे भाव से प्रभु को पुकारता है तो उनकी करुणा हम पर अवश्य बरसती है। भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ना भी होता है। हर नई सुबह अपने साथ एक नया संदेश यही तो लेकर आती है, और सूरज की हर किरण हमें याद दिलाती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है, और यदि मन में विश्वास हो तो हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है। प्रकृति का यही सुंदर संदेश आइए सुनवाते हैं हमारे इस भजन में।

गुरुवाणी का प्रत्येक शब्द आत्मा को शांति और जीवन को नई दिशा देता है। वाहे गुरु का सिमरन मन के विकारों को दूर कर मन में प्रेम और विनम्रता का भाव जगाता है। ये केवल उच्चारण नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक पवित्र माध्यम है। तो आइए कुछ पल सांसारिक चिंताओं से दूर होकर उसके नाम में लीन हो जाते हैं और करते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ वाहे गुरु का सिमरन।

इबादत सिर्फ अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये तो रब के करीब जाने के रास्ते होते हैं। और जब फिजाओं में जिक्र इलाही की सदाएं गूंजती हैं, तो दिलों में सुकून और रूह में एक नई रोशनी उतर आती है। उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसकी मोहब्बत हमें ज़िंदगी की सच्ची हकीकत बताती है। आइए इसी एहसास को पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं इस नात में।

जहाँ संतोष होता है वहाँ मन में शांति और जीवन में सुख का वास होता है। माँ की आराधना हमें विश्वास, धैर्य और सकारात्मक सोच का मार्ग दिखाती है। आइए भक्ति के इस मधुर भाव के साथ माँ की आरती करते हैं।

इसी आरती के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। आप सुनिएगा श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। स्वर उत्तरा केलकर और रविंद्र साठी का है, संगीत बद किया है सतीश भाटिया ने।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: उत्तरा केलकर और रविंद्र साठी के स्वर में आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। सवेरे के 6:40 हुए हैं, अब सुनिएगा आज का चिंतन।
1: हम अपना अधिकांश समय मात्र सोचते हुए व्यतीत करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी समस्त गतिविधियां हमारे मस्तिष्क द्वारा परिचालित होती हैं, पर हम कभी भी फुर्सत में और पूरी सजगता के साथ दिमाग से 2 मिनट भी बात नहीं करते हैं और न उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। आज हम आपसे कहते हैं कि आप अपने सब काम बंद कर दीजिए और अपने दिमाग से परिचय प्राप्त कीजिए। दिमाग से संपर्क करने का मतलब है हम अपने सब काम बंद कर दें और शांतिपूर्वक उसके पास बैठ जाएं। सचेतन होकर मस्तिष्क से संपर्क को ध्यान लगाना या मेडिटेशन कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गतिविधि का विपरीत या विलोम ध्यान लगाना है। हाँ, तो आप ध्यान के लिए तैयार हैं? आप देखेंगे कि आपका दिमाग निरंतर बिना रुके हुए सक्रिय बना रहता है। आप ध्यान पूर्वक इसकी गतिविधि को देखिए। मस्तिष्क के साथ संपर्क स्थापित करने और इसके समृद्ध कोश की ओर देखने के लिए समर्थ होने में थोड़ा समय लगता है। पेचकस को घुमाने पर शीशी की डांट धीरे धीरे बाहर आ जाती है। मस्तिष्क बड़ा चंचल है, हर पल कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे शरीर के अंगों के संकल्प के अलावा उहा पोह उखाड़ पछाड़ करता रहता है। इसकी चंचलता की ओर इंगित करते हुए गांडीवधारी महारथी अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। उत्तर स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, निसंदेह मन बड़ा चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। बाहरी गतिविधियों को रोकना वैराग्य का प्रथम सोपान है। आपने सोपान को पार किया है,

0: इस स्थिति में है कि विश्वास कर सके कि हमारे पास मस्तिष्क या दिमाग नाम की वस्तु है। मस्तिष्क से परिचय होने की स्थिति में हम अपने कार्यक्रम के अनुसार कार्य करने लगते हैं, वरना हमारा दिमाग हमें चाहे जिधर ले जाता है और चाहे जिस कार्यक्रम के अनुसार कार्य कराता रहता है। इसको आप सुनामी लहरों का भाई बंधु समझ लीजिए। हम जब ध्यान की स्थिति में होते हैं तो हमारे मन में बसने वाले विचार प्रकट होने लगते हैं। हमको विदित होता है कि हमारे पास मानसिक विकारों का कितना बड़ा खजाना है। इस खजाने से साक्षात्कार होने पर हम शुरू में तो घबराने लगते हैं, परंतु धीरे धीरे उनका आवेग कम होने लगता है। यदि हम एक निश्चित समय पर ध्यान करने का अभ्यास करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारा मस्तिष्क हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है। एक निश्चित समय पर ध्यान द्वारा उत्पन्न कंपन अपने स्वभावानुसार पुनरावृत्ति करते हैं और अनुकूल वातावरण का सृजन कर देते हैं। समय और अभ्यास के साथ ध्यान की अवधि बढ़ती जाती है, हमारा मस्तिष्क मनमानी करना कम कर देता है और हमारी इच्छा अनुसार विचार उत्पन्न करने लगता है। ध्यान की प्रक्रिया दिमाग के साथ हमारी मित्रता करा देती है, वो आवेग मुक्त हो जाता है, हम भी आवेग मुक्त हो जाते हैं, लगाम की जरूरत नहीं रह जाती, सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगता है। ध्यान एक सरल प्रक्रिया है, परंतु इसका निर्वाह सरल नहीं है। ये हमारे सामने हमारा विकृत रूप प्रस्तुत करती है, जिससे दो चार होने के लिए हमें साहस बटोरना पड़ता है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से करते हुए केवल अपने दिमाग से दोस्ती करके अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करना है। याद रखिए, सच्ची दोस्ती की पहचान है दोनों के मध्य सुखद शांति।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। सुबह के 6:45 हुए हैं, अब सुनिएगा गांधी कथा।

अन्नाहार पर मेरी श्रद्धा दिन दिन बढ़ती गई। साल्ट की किताब से आहार के विषय में पढ़ने की भूख तेज हो गई। जितनी पुस्तकें मिली खरीद कर पढ़ डाली। उनमें हावर्ड विलियम्स की आहार नीति द एथिक्स ऑफ डाइट नामक पुस्तक में विभिन्न युगों के ज्ञानियों, अवतारों और पैगंबरों के आहार और आहार विषयों का वर्णन मिला। पाइथागोरस, ईसा इत्यादि को उसने केवल अन्नाहार करने वाला सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। डॉक्टर श्रीमती अना किंग्सफर्ड की उत्तम आहार की रीति द परफेक्ट वे इन डाइट नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। इसके सिवा डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेखों से भी अच्छी मदद मिली। वो दवा के बजाय केवल भोजन के फेराफेर से ही रोग को चंगा करने की पद्धति का समर्थन करते हैं। डॉक्टर एलिंसन स्वयं अन्नाहारी थे और रोगियों के लिए केवल अन्नाहार की ही सलाह देते थे। इन सारी पुस्तकों के पढ़ने का परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन में भोजन के प्रयोगों ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। उन प्रयोगों में पहले आरोग्य दृष्टि की प्रधानता थी, बाद को धार्मिक दृष्टि सर्वोपरि हो गई। मेरे बारे में मेरे मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेम के वश ये मान लिया था कि मांसाहार न करने से मैं कमजोर हो जाऊंगा, इतना ही नहीं बल्कि भोंदू रह जाऊंगा, क्योंकि

0: मांसाहार ना करने से अंग्रेज समाज में हिलमिल न सकूंगा। मेरे अन्नाहार विषयक पुस्तकें पढ़ने का उनको पता था। उन्हें शंका हुई कि इस तरह की पुस्तकें पढ़कर मैं सनक जाऊंगा, प्रयोगों में मेरा जन्म जाएगा, जो कुछ करना है उसे भूल जाऊंगा और पढ़ा लिखा मूर्ख बना रहूंगा। अतः उन्होंने मेरे सुधार का एक अंतिम प्रयत्न किया, मुझे अपने साथ थिएटर चलने का न्योता दिया। वहां जाने से पहले मुझे उनके साथ हाबर्न होटल में भोजन करना था। ये होटल मेरी नजरों में महल था। ऐसे होटल में जाने का विक्टोरिया होटल छोड़ने के बाद ये पहला ही मौका था। विक्टोरिया होटल का अनुभव बेकार था, क्योंकि ये माना जा सकता है कि वहां मैं अचेत था। सैकड़ों के बीच में हम दो मित्र एक मेज पर बैठे। मित्र ने पहला परोसा मंगाया, वो सूप यानी शोरबा था। मैं उलझन में पड़ गया, मित्र से क्या पूछता। परोसने वाले को पास बुलाया, मित्र समझ गए, चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या बात है। मैंने धीरे से संकोच सहित कहा, मैं जानना चाहता हूं कि इसमें मांस तो नहीं है, ये जंगलीपन इस होटल में नहीं चल सकता। यदि अब भी तुम्हें ये किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे होटल में खा लो और वहीं मेरी बांट जोना। मुझे इस प्रस्ताव से प्रसन्नता हुई, उठकर दूसरे होटल की खोज में निकला। पास ही एक अन्नाहारी भोजन गृह था, पर उस समय वो बंद हो चुका था। समझ में न आया कि अब क्या करूं। मैं भूखा रहा, हम थिएटर गए। मित्र ने इस घटना के बारे में एक शब्द भी न कहा। मेरे लिए तो कहने को था ही क्या, पर हम लोगों के बीच ये अंतिम प्रेम युद्ध था। हमारा संबंध नहीं टूटा, न उसमें कटुता आई। उनके सारे प्रयत्नों की जड़ में जो प्रेम भाव था उसे मैं समझ रहा था। इससे आचार और विचार में विभिन्नता होते हुए भी उनके लिए मेरे मन में आदर बढ़ा। मुझे उनका भय दूर कर देना जरूरी मालूम हुआ। मैंने निश्चय किया कि जंगली नहीं रहूंगा, सभ्यों के तौर तरीके सीखूंगा और दूसरी तरह से समाज में सम्मिलित होने योग्य बनकर अपनी अन्नाहार की विचित्रता पर पर्दा डालूंगा।
1: अब सुनिए यह वचन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी कथा। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले संस्कृत में और फिर हिंदी में।

0: सति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्त्र दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् पञ्चोत्तरैकोनविंशतितमे वर्षे अगस्त मासस्य सप्तमदिनांके भारतस्य स्वातन्त्र्यसंघर्षस्य भागरूपेण स्वदेशी आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिश शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः, निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः, शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
1: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः पादोनचतुर्विंशतिसहस्रकोटिरूप्यकाणां परिव्यययुतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टययुतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धनयोजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसारमाध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां सीडी देशमुख व्याख्यानं 2026 इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धाय

0: विशिष्टाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षणक्षेत्रात् मध्यम परिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवा राज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचित जनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम् अधिसूचितम्। येन गोवा राज्ये अनुसूचित जनजातीनां कृते विधानसभास्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीय राजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरलराज्ये, माहे प्रदेशे, ओडिशाराज्ये, तटीय दक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्ड बातेन विद्युत् प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, झारखण्डप्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिमबंगप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरीप्रदेशे, कारैकलल प्रदेशे, उत्तराखण्डप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन्नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपान्तचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी

0: में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। जल ही जीवन का आधार है, आज की जानकारी का विषय यही है, तो सुनिएगा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: हजारों वर्षों के अनुभव के आधार पर भारतीय शास्त्रकारों का ये कथन सर्वथा सत्य है। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्या नारायणो हरि, अर्थात वृद्धावस्था से जर्जर या रोगग्रस्त शरीर के लिए जल ही औषधि है और ईश्वर ही वैद्य है। हमारे शरीर के असंख्य सेलों में जल भरा हुआ है। कोई सेल नहीं, कोई तंतु नहीं जहां जल का कुछ ना कुछ अंश ना हो। शरीर में प्रोटीन, वसा और कार्बोस के ऑक्सीकरण से जल उत्पन्न होता है। रक्त और लसिका का अधिक भाग जल ही होता है। हमारे शरीर की रचना में जल की विपुलता है। शरीर के वजन का 2/3 भाग जल तथा केवल 1/3 भाग ठोस है। दांत शरीर का सबसे ठोस पदार्थ कहा जा सकता है, उसमें भी 10% जल का अंश है। शरीर के अन्य भागों की हड्डियों में 14% से अधिक जलीय अंश है। सारांश ये है कि 120 पाउंड वजन वाले शरीर में 80 पाउंड जल होता है। मनुष्य की आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के जलीय अंश में किंचित कमी और ठोस अंश में थोड़ी वृद्धि होने लगती है। मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक जल को इसीलिए प्रकृति ने इतना सुलभ कर दिया है कि वो हर प्राणी के लिए सरलता पूर्वक उपलब्ध हो सके। जल में पुराने और अनुवांशिक रोग तक को दूर करने का सामर्थ्य है। इस प्रकार हमारे शरीर को एक जटिल जल प्रणाली भी कहा जा सकता है। छोटी और बड़ी कई प्रकार की नलिकाओं में से एक अंश से दूसरे अंश में भिन्न भिन्न प्रकार के तरल पदार्थ प्रतिक्षण दौरा करते रहते हैं। प्रकृति शरीर के प्रत्येक तंतु को जो खाद्य परोसती या पहुंचाती है, जल ही उसका वाहन है। शरीर का प्रत्येक शुद्धतम कोश भी सर्वदा पानी से धुलता रहता है। शरीर में रस की समता को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन करना चाहिए। यदि हम ऐसा ना करें तो प्रकृति खून, मांसपेशी और शरीर के विभिन्न तंतुओं से जलीय

0: बीज लेने के लिए बाध्य होता है। उसके फल स्वरूप प्यास बढ़ती है, आंखें बैठ जाती हैं, होंठ और जीभ सूख जाता है, मल कड़ा हो जाता है, वजन घट जाता है, त्वचा शुष्क व सिकुड़ जाती है और उसके बाद रक्त प्रवाह बंद होने से लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। शरीर में जल का अभाव होने से शरीर के अंदर अम्ल और क्षार के अनुपात में भी परिवर्तन आता है और कभी कभी शरीर का ताप बढ़ जाता है। गर्म देशों में काम करने वाले लोग यदि प्यास के अतिरिक्त पानी ना पिए तो उनकी कार्य शक्ति नष्ट हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है और सिर घूमना, अवसाद तथा श्वास कष्ट आदि लक्षण प्रकट होते हैं। अंत में जीवन शक्ति का क्षय भी हो सकता है। साधारण पेयजल जब पेट में पहुंचता है तो पीने वाले के स्वभाव अनुसार कभी जल्दी कभी देर में शरीर कणों में समाता है और उनके संपर्क में देर तक रहने से धुलाई का काम भी करता है। पीने पर तुरंत ही अन्य मार्ग से होकर वो आमाशय में पहुंचता है और पाचन क्रिया पर प्रभाव भी डालता है। पानी पीने से मूत्राशय किडनी का कार्य भी सुचारू रूप से होता है। साथ ही शरीर की भिन्न भिन्न रस स्रावी ग्रंथियों का स्राव ठीक से होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त पानी पीने से हृदय और त्वचा आदि शरीर के समस्त यंत्रों की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा रक्त साफ होकर सारे शरीर में सुचारू रूप से संचालित होता है। तंदुरुस्त रहने के लिए हर एक मनुष्य को 24 घंटे में 3 लीटर पानी या प्रवाही द्रव्य की आवश्यकता है। पीने का पानी हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। हर रोज 2-3 लीटर पानी पीने से मूत्र के द्वारा दूषित पदार्थ बाहर निकल जाता है। ये स्वास्थ्य रक्षा का एक प्रधान उपाय भी है।
1: स्वास्थ्य चर्चा के बाद अब समय हो चला है कार्यक्रम खेती की बातें का, और आज इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाई खरीफ के प्रमुख खरपतवारों के नियंत्रण के विषय में जानकारी लेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाई नमस्कार, खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई खेती करते हैं और खेती से लाभ भी कमाते हैं। किसान भाइयों, इस समय की बात करें तो बरसात का समय चल रहा है और बरसात के समय में ज्यादातर बारिश होती है और बारिश होने से जो खरपतवार हैं उनका विकास तेजी से होता है। अगर हमारे किसान भाई उसका सही से नियंत्रण नहीं कर पाते तो उससे हमारी फसलों को भी नुकसान होता है। तो आज इसी के संबंध में एक जानकारी लेकर आए हैं जिसका विषय है खरीफ के प्रमुख खरपतवारों का नियंत्रण। किसान भाइयों, भारत में खरीफ मौसम की फसलें जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इस मौसम में पर्याप्त नमी और अनुकूल तापमान के कारण फसलों के साथ साथ खरपतवार भी तेजी से बढ़ते हैं। खरपतवार वे पौधे होते हैं जो बिना बोए हमारे खेत में उगाते हैं और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और इनका हमारे किसान भाई अगर सही समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो 30-70% तक का नुकसान हमारी फसल में हो जाता है। इसीलिए खरीफ मौसम में खरपतवारों का समुचित प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। अगर खरीफ मौसम में खरपतवारों की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सांबा, जो धान और मक्का में पाया जाता है। मोथा, यह सबसे हानिकारक खरपतवारों में से एक है और इसकी गांठों से बार बार नई पौध निकलती है। दूब घास, यह तेजी से फैलने वाली बहुवर्षीय घास है जो बार बार उगाती है। गाजर घास, यह खेतों के साथ साथ सड़क के किनारे भी उगती है और मनुष्य और पशुओं के लिए भी हानिकारक है। खरपतवार फसलों से पानी, खाद और सूर्य का प्रकाश छीन लेते हैं। इसके कारण फसल की वृद्धि धीमी हो जाती है। कई खरपतवार कीटों और रोगों के आश्रय स्थल भी बन जाते हैं। इसके अलावा कटाई और मड़ाई में भी कठिनाई उत्पन्न होती है और उत्पादन और गुणवत्ता दोनों घट जाती है। अगर हमारे किसान भाई इसका सही से नियंत्रण नहीं कर पाते तो इसका नुकसान हमें आने वाली फसल में भी हो सकता है। अगर इसके नियंत्रण की बात करें तो सबसे पहले हमें खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। फसल की बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। पहली वर्षा के बाद खरपतवारों के बीज अंकुरित होने पर दोबारा जुताई करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। इस विधि से खेत में खरपतवारों की संख्या काफी कम हो जाती है। हमेशा प्रमाणित तथा खरपतवार रहित बीजों का हमें उपयोग करना चाहिए और वही सबसे महत्वपूर्ण है उचित बीज दर और कतारों में बुआई। हमारे किसान भाई अनुशंसित बीज दर का प्रयोग करें और कतारों में बुआई करें। इससे निराई गुड़ाई करना आसान होता है और खरपतवारों पर प्रभावी नियंत्रण भी मिलता है। निराई गुड़ाई, किसान भाई यह सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। बुवाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली तथा 40 से 45 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर तीसरी निराई गुड़ाई भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। एक तो इससे खरपतवार नष्ट होते हैं और नष्ट होने के साथ साथ मिट्टी भुरभुरी होती है और जड़ों को पर्याप्त वायु भी मिलती है। और भैया, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मल्चिंग का प्रयोग। हमारे किसान भाई खरपतवारों से बचने के लिए, इसके नियंत्रण के लिए मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। फसल की कतारों के बीच

0: जरूरी है। और इसके साथ साथ जल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। विशेष रूप से धान की फसल में उचित जल स्तर बनाए रखने से कई प्रकार के खरपतवारों का अंकुरण रुक जाता है और रासायनिक तरीके से भी नियंत्रण कर सकते हैं। जब खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से अनुशंसित खरपतवार नाशियों का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे किसान भाई एकीकृत खरपतवार प्रबंधन भी कर सकते हैं। आज के समय में केवल एक विधि पर निर्भर रहने के बजाय एकीकृत खरपतवार प्रबंधन अपनाना अधिक लाभदायक है। इसमें खेत की तैयारी, समय पर बुआई, फसल चक्र, निराई गुड़ाई, मल्चिंग और आवश्यकता अनुसार रासायनिक नियंत्रण को एक साथ अपनाया जाता है। तो वही कुल मिलाकर बात यूँ निकल आती है कि अगर समय पर खरपतवारों का नियंत्रण हो जाए तो बहुत सारे लाभ हमारी फसल में मिलते हैं। एक तो फसल की वृद्धि तेज होती है और हमारी जो फसल है वो स्वस्थ बनी रहती है। पौधों को पर्याप्त पानी, पोषक तत्व और प्रकाश मिलता है। कीट और रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। कटाई और मड़ाई में भी सुविधा होती है। खेती की लागत कम होती है और किसानों की आय भी बढ़ती है। खेत लंबे समय तक खरपतवारों के भारी प्रकोप से सुरक्षित रहता है और हमारी आमदनी भी बढ़ती है। तो कुल मिलाकर बात यूँ निकल कर आती है कि खरीफ मौसम में खरपतवारों का समय पर नियंत्रण सफल खेती की आधारशिला है। यदि किसान खेत की उचित तैयारी, स्वच्छ बीज, समय पर बुआई, नियमित निराई गुड़ाई, संतुलित उर्वरक और जल प्रबंधन तथा आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित खरपतवार नाशियों का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग करें तो खरपतवारों से होने वाली हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन अपनाकर हमारे किसान भाई फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ा सकते हैं और खेती से लाभ भी ले सकते हैं और अपनी खेती को टिकाऊ बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम आज यहीं पर संपन्न होता है। कल एक और नई जानकारी के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। किसान भाइयों, नमस्कार।
1: खरीफ के प्रमुख खरपतवारों का नियंत्रण, इस विषय पर आप जानकारी ले रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में। आकाशवाणी का ये नजीब आबाद केंद्र है। प्रातः के 7:15 हुए हैं। आइए अब डाल लेते हैं एक नजर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर।

माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली में आयोजित समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रातः 11:10 पर। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे आज रात 10 और संसद समीक्षा का समय रहेगा रात्रि 8। आपको बता दें ये तीनों ही कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। हमारी इस सभा में प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा बस्ती और हमीरपुर जिले की हलचल। सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद सुनिएगा रात 9:30 पर और प्रातः 10:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम जागरूक श्रोता का और आज की बातचीत का विषय रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन। सुगम संगीत कार्यक्रम में इफ्तिखार अहमद और साथियों के स्वर में शाम 7:32 पर आपको सुनवाई जाएंगी कुछ नात। कार्यक्रम विविधा में हुनर बाज श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली मेहमान पंकज लोचन गोस्वामी से शोभित शर्मा की बातचीत सुनिएगा शाम 6:45 पर। शाम 6:05 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाइयों की खेती एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान सुनिएगा। तो श्रोताओं ये तो थी कुछ जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, प्रातः के 7:18 होने को है। कुछ ही पलों में सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।

0: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। आज हैंडलूम से खरीदारी करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबर्धन योजना को दी मंजूरी। घुमंतू समाज द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के जरिए देशवासियों से उत्साह और उमंग के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की है।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटी होती है।
0: प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करने को कहा।
1: हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबर्धन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोबर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गोबर्धन योजना को मंजूरी दिया जाना आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
1: केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा कि वह सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के लिए घुमंतू समाज द्वारा आयोजित आभार ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का जो मंत्र देश को दिया था, उसी संकल्प का विस्तार समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विमुक्त जातियां भारत के स्वाधीनता संग्राम की सेनानी हैं।
2: स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के नाते जो सम्मान उनको प्राप्त होना चाहिए था, उस सम्मान को देने के लिए ये डबल इंजन की सरकार निकली है। घुमंतु जाति को दर दर की ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का एक अधिकार ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदान करेगी, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, कांवड़ यात्रा, बाढ़ की स्थिति, आगामी पर्व एवं त्योहारों की तैयारियों, खाद की उपलब्धता तथा स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा है कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए। मुख्यमंत्री ने बाराबंकी और उन्नाव सहित बाढ़ प्रभावित 8 जनपदों में राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए इन जनपदों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य पूरी तत्परता से जारी रहें और कहीं भी सहायता में कोई कमी ना रहे। इससे पहले एक अन्य उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल गोरखपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 45वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने 85 मेधावी विद्यार्थियों को कुल 172 पदक प्रदान किए।
4: अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से अनुसंधान, नवाचार और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की अपील की। इससे पहले वह HPV से बचाव के लिए विश्वविद्यालय में चल रहे निशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में भी पहुंची। वहां उन्होंने टीकाकरण करवाने वाली बच्चियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने छात्राओं से HPV से बचाव के टीकाकरण के साथ साथ बेटियों की शिक्षा और नशा मुक्त युवा अभियान की महत्ता के बारे में भी चर्चा की। GN चौबे, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
0: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक जन आंदोलन में बदल गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर हैं। उन्नाव में गंगा और बाराबंकी में घाघरा नदी कल खतरे के निशान को पार कर गई। वहीं अमरोहा में भी पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा

0: दी उफान पर है।
1: पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण अमरोहा में तिगरी गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे घाटों पर पानी भर गया है और पुरोहितों की झोपड़ियां डूब गई हैं। खादर क्षेत्र के खेतों में भी पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज से लेकर आगामी 9 अगस्त तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को लेकर जारी किया वीडियो संदेश। आज हैंडलूम से खरीदारी करने और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की। स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबर धन योजना को दी मंजूरी। घुमंतू समाज द्वारा लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विमुक्त जातियों को सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। और प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियां उफान पर। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल हो स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
4: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है जानकारी, मनोरंजन और रोचकता से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

श्रोताओं, आज की सुबह बेहद खास है क्योंकि आज 7 अगस्त का दिन अपने साथ लाया है हमारे देश की परंपराओं के रंग, खेल का गौरव, शब्दों और सुरों की महक से महका कर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में खास आपके लिए। तो आज इस खास कार्यक्रम में आपका बेहद स्वागत है और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ फरीना। श्रोताओं, 7 अगस्त 2021 का वो स्वर्णिम दिन देश कभी नहीं भुला सकता, उसकी यादों में हमेशा ये दिन ताज़ा है जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया था। तब से इस गौरवमयी उपलब्धि की स्मृति और युवाओं को इस खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए देश की इस स्वर्णिम जीत के अवसर को हम भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। श्रोताओं, समय के साथ साथ नीरज चोपड़ा की सफलता का सफर भी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसका जीता जागता सबूत है हाल ही में हुए राष्ट्रीय मंडल खेल, जहां उन्होंने रजत पदक जीतकर एक बार फिर से दुनिया को अपनी प्रतिभा और जज्बे का परिचय दिया है। श्रोताओं, स्वर्ण पदक हो या रजत पदक, नीरज चोपड़ा का हर प्रदर्शन हमारे देश का गौरव बढ़ाता है और हम देश के ऐसे हर खिलाड़ी को सलाम करते हैं। श्रोताओं, बात करते हैं देश के हुनर, रंग

और परंपरा की। श्रोताओ, 7 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, जो बयां करता है हमारे देश के बुनकरों की हर धागे में छिपी मेहनत और हुनर को, हर बुनाई में बुनी कहानी को और हमारी लोक परंपराओं की जिंदगानी को। कहीं बनारसी की शान है तो कहीं कांजीवरम की पहचान है, कहीं पश्मीना की नज़ाकत है तो कहीं पैठनी की मनमोहक रंगत है, कहीं बांधनी की अनूठी छटा है तो कहीं इक्कत की अनमोल विरासत है। देश के कोने कोने में हमारे बुनकरों और उनकी अद्भुत शिल्प कला को सम्मान देने और साल 1905 में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने की याद में हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। श्रोताओं, आज का ये दिवस हमें इस क्षेत्र से जुड़े हर कारीगरों और उनकी लोक कला पर गर्व करना सिखाता है, क्योंकि धागों पे मेहनत रंगों में पहचान होती है, धागों में मेहनत रंगों में पहचान होती है, हर बुनावट में भारत की मुस्कान होती है। आइए इन कुशल हुनर को और इन हाथों को सलाम करें, आइए इन कुशल हुनर और हाथों को सलाम करें जो अपने हर हुनर से भारत का नया सपना बुन रहे हैं।

श्रोताओं, आइए आप चलते हैं फिल्मी सफर पर, जहां हम बात करेंगे आपसे सुरेश वाडेकर और गुलशन बावरा के बारे में। श्रोताओं, सुरेश वाडेकर एक ऐसे फनकार जिनकी आवाज में सादगी भी है, मिठास भी है, तो साथ ही दिल को छू लेने वाला मधुर अंदाज है। 7 अगस्त 1955 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में जन्मे महान गायक सुरेश वाडेकर आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनकी आवाज की मधुरता और भावुकता से साल 1977 में आई पहली फिल्म पहली से आप अपने पहले गीत से ही सबके दिलों पर राज करने लगे, और इसके बाद साल 1978 की गगन फिल्म के गीत सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस गीत से आपने सब पर अपना रंग जमा दिया। इसके बाद प्रेम रोग, चांदनी, दिल, राम तेरी गंगा मैली और माचिस जैसी फिल्मों को अपने फन से आपने खूब रोशन किया। कई पुरस्कारों से सम्मानित सुरेश वाडेकर को भारत सरकार ने साल 2021 में

0: पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनके जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार उनको ढेरों शुभकामनाएं देता है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: श्रोताओं, जहाँ आवाज का जादू होता है वहाँ लफ्जों का भी कमाल होता है। और जब एक मधुर आवाज को मिले ऐसे लफ्ज जो अपने जादू से दिल के हर कोने कोने को छू जाएं, तो हर गीत अमर हो जाता है। और ऐसे ही जादू रचने वाले रचनाकार थे गीतकार गुलशन बावरा। श्रोताओं, एक डिस्ट्रीब्यूटर ने आपके लुक को देखकर आपको कहा था गुलशन बावरा, जबकि आपका नाम था गुलशन कुमार मेहता। आपने उनकी बात का जरा भी बुरा नहीं माना और अपना नाम रख लिया तभी से गुलशन बावरा। 7 अगस्त 2009 को हमारा साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने वाले गुलशन बावरा के गीत के लफ्जों को जज्बातों में पिरोकर ऐसी खुशबू भर देते थे कि हर गुलशन महक उठता था। आपके गीतों की महक का सिलसिला साल 1959 में चंद्रसेना फिल्म से शुरू हुआ, लेकिन करियर को चमक मिली साल 1968 की फिल्म उपकार और जंजीर से। इसके लिए आपको दिया गया फिल्म फेयर अवार्ड। 250 से अधिक गीत और कुछ फिल्मों में अभिनय करने वाले गीतकार गुलशन बावरा ने अपने अल्फाजों से कभी दोस्ती को गर्माहट दी तो कभी देशभक्ति को चमक दी, कभी इश्क की रूहानी मिठास दी, कभी उनकी कलम से एक एक शब्द दिल में उतरता चला गया। उनकी आवाज, उनके शब्दों में बुने कई गीतों की लिस्ट हमारे पास है, लेकिन हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गीत जिसमें आपने खुद ही अभिनय किया था। तो सुनिए ये गीत फिल्म जंजीर से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिस पर गुलशन बावरा ने अभिनय भी किया और इस गीत को लिखा भी।

श्रोता, गुलशन बावरा के गीत पर नज़र डालने के बाद आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट यानी तिथि विशेष की तरफ।

अब जान लेते हैं इतिहास के पन्नों में छिपी 7 अगस्त से जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिन्होंने देश दुनिया में नई नई इबारतें लिखी और इस तिथि को जन्म लेने वाली नई रोशनियों और उन महान आत्माओं की, जो आज ही के दिन हमारी यादों में हमेशा हमेशा के लिए बस गए। श्रोताओं, पहले के समय में बड़ी बड़ी गणनाओं का जोड़ गुणा भाग यानी कैलकुलेशन करना काफी कठिन हुआ करता था। धीरे धीरे कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ, जिसने गणनाओं की गणना को आसान बना दिया। 7 अगस्त 1944 में ही 51 फीट लंबा, 8 फीट ऊंचा और 5 टन के वजन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का निर्माण हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। 7 अगस्त 1947 को बॉम्बे नगर निगम ने बॉम्बे विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन कंपनी को अधिग्रहण किया था, जिसे बेस्ट यानी बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट की स्थापना की गई। 7 अगस्त 1974 को फ्रांसीसी कलाकार फिलिप पेहिट ने न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 टावरों के उच्च तारों पर चलकर इतिहास रच दिया था। उनका ये साहसिक कारनामा उनकी डॉक्यूमेंट्री मैन ऑफ वायर में दर्शाया गया है। श्रोताओं, हमारे देश में जब भी बिलियर्ड्स खेल का जिक्र होता है तो गीत सेठी की बात होना लाजमी है। आज ही वो तिथि है जब साल 1985 में गीत सेठी ने विश्व एमेच्योर बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। अब बात करते हैं आज के दिन जन्म लेने वाली नई रोशनियों की। हिंदी

0: सिनेमा के बेमिसाल हास्य कलाकार जिनका नटखटपन और नशीला अंदाज हर किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दिया करता था। 7 अगस्त 1925 को जन्मे केशव मुखर्जी ऐसे ही हास्य कलाकार थे। चाहे चुपके चुपके हो, गोलमाल हो, अमर अकबर एंथनी हो या फिर शोले फिल्म हो, आपकी अदाकारी और फनकारी ने सबका खूब मनोरंजन कराया। भारतीय कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के अग्रदूत एमएस स्वामीनाथन का जन्म भी 7 अगस्त को ही हुआ था। 1925 में जन्मे कृषि विज्ञान क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत स्वामीनाथन ने किसानों की खेती को बढ़ाने और उसे उन्नत दिशा में ले जाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय चित्रकार और लेखक अविंद्रनाथ ठाकुर, जिन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी, इनका जन्म भी 7 अगस्त 1871 को हुआ। आपको सबसे ज्यादा आपकी प्रसिद्ध रचना भारत माता के लिए याद किया जाता है। श्रोताओ, याद रहे आप भारतीय राष्ट्रीय गान के निर्माता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के भतीजे थे। और संयोग की बात देखिए कि इसी तिथि को गीतांजलि जैसी अमर कृति की सौगात देने वाले गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर 7 अगस्त 1871 को हम सबकी आंखें नम कर गए थे। 7 अगस्त ही वो तिथि है जब साल 1980 में भारतीय सिनेमा के प्रमुख लेखक, गीतकार, कवि और निर्देशक प्रजेंद्र गौड़ जिंदगी का साथ छोड़ गए और अपने पीछे छोड़ गए हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, शिकारी, रेशम की डोरी और प्यार का सागर जैसी फिल्मों का अनमोल सागर।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: श्रोता, इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव यानी आज के अखबारों की सुर्खियों पर। तो जान लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियाँ क्या क्या कहती हैं। दैनिक जागरण कहता है 2000 से ज्यादा लेन देन पर शुल्क संभव, यूपीआई से होने वाले भुगतान पर अब शुल्क लगाने का रास्ता साफ दिख रहा है, लेकिन इस शुल्क से ट्रांजैक्शन से जुड़े 71% राशि मुक्त रह सकती है। सूत्रों का कहना है कि 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगेगा, वहीं पर्सन टू पर्सन के बीच होने वाले यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आगे दैनिक जागरण लिखता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में गंगा नदी पर तैयार हुआ पुल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना में RVNL ने गंगा नदी पर 125 मीटर स्पान का पुल तैयार कर दिया है, जो टिहरी से पौड़ी जिले को रेल लाइन से जोड़ेगा। फुल प्रूफ परीक्षाओं के लिए NTA में होगा रेगुलर प्रोफेशनल कैडर, ये खबर भी दैनिक जागरण से है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद से ही क्षमता पर उठ रहे सवालों के बीच NTA ने परीक्षाओं को फुल प्रूफ तरीके से कराने के लिए अब अपनी प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता को सशक्त बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए भर्ती की तैयारी कर ली है। नजर डाल लेते हैं अमर उजाला पर, 12 अगस्त को पूर्ण सूर्य ग्रहण का सीधा प्रसारण करेगा नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा 12 अगस्त को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण का सीधा प्रसारण करेगी। भारतीय समय अनुसार रात 10:45 पर इसका प्रसारण शुरू किया जाएगा। पहाड़ों पर रास्ते बंद, NCR में जाम। अमर उजाला कहता है कि उत्तर पूर्वी भारत में लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों पर भूस्खलन ने मुसीबतें बढ़ा दी है। उत्तराखंड में 132, हिमाचल में 120 समेत 250 से अधिक

के बंद हो गई हैं। अब नजर डाल लेते हैं हिंदुस्तान अखबार पर। युवा विकास के लिए आयोग बनेगा योगी। हिंदुस्तान ने इस खबर को मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के समग्र विकास के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। दावा निपटान में देरी पर हर्जाना मिलेगा। हिंदुस्तान आगे कहता है कि सरकार ने बीमा दावे की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और आसानी से भुगतान करने के लिए अहम बदलाव किए गए हैं। इससे बीमा कंपनियों को बैंक दर के साथ 2% की ब्याज दर के साथ भुगतान करना अनिवार्य कर दिया गया है। और खेल जगत की खबर हिंदुस्तान से ही। आशीष धरणीधरन अमानत ने फाइनल में जगह बनाई। 3 भारतीय युवा एथलीटों ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियन के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनमें भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धरणीधरन के साथ चक्का फेंक खिलाड़ी अमानत कंबोज शामिल हैं। आप सभी को जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोताओं, खेल का मैदान हो या जिंदगी का, कोशिशें, लगन और सच्ची मेहनत बेहद जरूरी होती है, क्योंकि यही हमें कामयाबी देती है। और जब जिंदगी में इन सब का साथ हो तो आप जिंदगी की हर जंग जीत जाते हैं।

श्रोताओं, जिंदगी का आसमान कितने भी रंग बदले, लेकिन आपको अपने हौसले और विश्वास और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहना है। इसी कामना के साथ आपकी राहें हमेशा उजाले से भरपूर रहें, आपकी हर कोशिश सफलता की नई इबारत लिखे और आप जीवन में मुस्कुराहटों का संगीत यूं ही गुनगुनाते रहें। फिलहाल दीजिएगा इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी और कार्यक्रम में।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। प्रातः के 8 बजने को है, थोड़ी देर में सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
7: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
6: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
8: सरकार का उद्देश्य

0: उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। Sports, industry, maritime expert together on one platform.
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ

0: और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय

0: सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। सेंटर नोटिफाइज एक्ट पेविंग वे फॉर रिजर्वेशन फॉर एसटी कम्युनिटी इन गोवा असेंबली। लोकसभा पासेस बिल टू ऑथराइज गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स टू लेवी चार्जेस ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस। Prime Minister Narendra Modi calls upon people to celebrate National Handloom Day today, showcasing India's rich and diverse handloom heritage and promote handloom products. Protesting Jharkhand students form 11-member team to hold talks with state government. US President Donald Trump signs 2 executive orders aimed at restricting birthright citizenship and curbing birth tourism. And in badminton, Tanvi Sharma to face compatriot Rakshita Ramraj in the women's singles quarterfinal of Korea Masters in Assam today. The Centre has notified the implementation of the readjustment of the representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the State of Goa Act 2025, paving the way for reservation of assembly seats for scheduled tribes in Goa. We have more details from a correspondent.
2: According to the notification published in the Gazette of India, the Act came into force from 6th August 2026, fulfilling a long-pending demand of the state's tribal communities and enabling the process of constituency readjustment and reservation. Welcoming the development, Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant described it as a promise fulfilled. In a social media post, he said the Act marks a decisive step towards ensuring long-overdue justice and political representation for the scheduled tribe. Dr. Sawant thanked Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah for making the legislation a reality, saying it reflects the spirit of Sabka Saath Sabka Vikas. Mahesh Sopre, Akashwani News, Panji.
1: Lok Sabha has passed a bill to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, authorizing the government to permit banks and other service providers to levy charges on payments made through the Unified Payments Interface UPI and other notified electronic payment modes. The government's approach aims to levy small charge on digital payment services for consumers and small businesses while ensuring a sustainable revenue model for banks, payment service providers, PSPs and payment infrastructure firms that drive the digital payments ecosystem. The amendment passed by the House seeks to remove the existing legal provision that prevents banks and payment service providers from charging merchant discount rate MDR on notified electronic payment modes. While real-time payments made through RTGS and NEFT already attract service charges, UPI transactions have so far remained exempt from such fees. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence and people from all walks of life united and fought a historic battle against the British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Further, Prime Minister highlighted the importance of strengthening these small and economically disadvantaged weaving families to build a self-reliant country.
3: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं हैंडलूम

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकज ने गोवा असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल की खातिर रिजर्वेशन की राह हमवार करने के लिए कानून नोटिफाई किया है। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को चार्ज लगाने की इजाजत देने के लिए सरकार को अख्तियार देने वाला बिल मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत की मालामाल और मुतनव्वे हथकरघा विरासत के इजहार और हथकरघा मसनूआत को फरोग देने के लिए आज हथकरघा का कौमी दिन मनाएं। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं जिनका मकसद पैदायशी शहरियत के हक और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। और बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकज ने रियासत के असेंबली हलकों में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी को असरेनो तरतीब देने से मुतालिक गोवा एक्ट 2025 के निफास को नोटिफाई किया है, जिससे गोवा में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए असेंबली सीटों में रिजर्वेशन की राह हमवार हो गई है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: भारतीय गजट में शाया करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक 6 अगस्त 2026 से ये कानून नाफिज होगा, जिससे रियासत की कबायली बिरादरियों की देरीना मांग पूरी होगी और हलके की असर नौ तरतीब और रिजर्वेशन के अमल को यकीनी बनाया जा सकेगा। इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे पूरा किया गया वादा करार दिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ये एक्ट दर्ज फहरिस्त कबायल बिरादरियों के लिए देरी ना इंसाफ और सियासी नुमाइंदगी को यकीनी बनाने की जानिब एक फैसला कुन कदम है। डॉक्टर सावंत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का इस कानून को हकीकत बनाने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे सबका साथ सबका विकास की अक्कासी होती है। पणजी से महेश चोबड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: लोकसभा ने अदायगी और तस्फिया निजाम से मुतालिक एक्ट 2007 में तरमीम के लिए एक बिल को मंजूरी दी है। इस तरमीम के तहत हुकूमत को बैंकों और दीगर अदायगी खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूपीआई और दीगर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर फीस या सर्विस चार्ज वसूल करने की इजाजत देने का इख्तियार दिया गया है। हुकूमत के इस इकदाम का मकसद सारिफीन और छोटे कारोबार पर मामूली सर्विस चार्ज आयद करते हुए बैंकों, अदायगी फराहम करने वाले इदारों और डिजिटल अदायगी के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता इदारों के लिए पायदार आमदनी का एक निजाम कायम करना है, ताकि डिजिटल अदायगी के निजाम को मजबूत किया जा सके। लोकसभा से मंजूर होने वाले इस तरमीमी बिल का मकसद मौजूदा कानूनी शक को खत्म करना है, जो बैंकों और अदायगी के खिदमात फराहम करने वाले इदारों को यूनिफाइड इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के जराए पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR वसूल करने से रोकती है। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में वाकई मरबूत आजमाइशी मरकज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का कामयाब तजुर्बा किया। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम कामकाज और तकनीकी पैमाने दुरुस्त साबित हुए। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान ने अंजाम दी है। वजारत ने मजीद कहा है कि ये कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और अहम संगमील है।

0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस कामयाब मिशन के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमान और डीआरडीओ को मुबारकबाद दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्क का दिफा करने के अज़्म का एआदा किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर शहरी पर जोर दिया है कि वो आज हथकरघा का कौमी दिन जोशोखरोश और खुशी के साथ मनाए। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत की जद्दोजहद आज़ादी के एक हिस्से के तौर पर स्वदेशी तहरीक का आगाज किया गया था और जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता लोगों ने मुत्तहिद होकर बरतानवी राज के खिलाफ तारीखी जद्दोजहद की थी। उन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की कि वो उन गरीब बुनकर कुनपों और फनकारों की मदद करें जो अपने हाथों से कपड़ा तैयार करते हैं।
1: मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे, हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है बुनकर परिवार। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध कर। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें।
0: हथकरघा का कौमी दिन 1905 में इसी दिन स्वदेशी तहरीक के आगाज के याद में हर बरस 7 अगस्त को मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत आज हथकरघा का 12वां कौमी दिन मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में कौमी तकरीब का इनेकाद करेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इसमें मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगी, जबकि टेक्सटाइल्स के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह और वजीर ममलुकत पवित्रा मार्गरेटा भी इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। टेक्सटाइल की वजारत ने कहा है कि इस तकरीब का मकसद भारत की मालामाल हथकरघा विरासत का जश्न मनाना है और मुल्क की सकाफती और इक्तसादी तरक्की में हथकरघा बुनकर बिरादरी के तआवुन को तस्लीम करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: तकरीबात की एक अहम खसूसियत, साल 2025 के लिए संत कबीर हैंडलूम अवार्ड की पेशकश होगी। भारत की हैंडलूम रिवायत के तहफ्फुज में उनकी कारकर्दगी, जिद्दत, तराजी और ताउन के एतराफ में बुनकरों को कुल 22 अवार्ड दिए जाएंगे, जिनमें 3 संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स और 19 नेशनल हैंडलूम अवार्ड शामिल हैं। इस मौके पर मुल्क की मालामाल और मुतनवे हैंडलूम बुनाई की रिवायात का जश्न मनाने के लिए 4 यादगारी डाक टिकट जारी किए जाएंगे। तकरीब के दौरान 2 मतबूआत अर्थ रूट थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हैंडलूम अवार्ड्स बुक 2025 का भी इजरा अमल में आएगा। अवार्ड याफ्ता हैंडलूम मसनूआत के अलावा शायकीन को रिवायती कनी बुनाई और वॉल हैंकिंग बुनाई के लाइव मुजाहरे देखने का भी मौका मिलेगा, जिससे भारत की हैंडलूम रिवायात के तनव्व और बेहतरीन कारीगरी की एक झलक देखने को मिलेगी। 1905 में इसी दिन शुरू की गई स्वदेशी तहरीक की याद में हर साल 7 अगस्त को कौमी हैंडलूम डे मनाया जाता है। टेक्सटाइल की वजारत के मुताबिक 2015 में अपने आगाज के बाद से ये दिन मुल्क के हैंडलूम बुनकरों के फन, महारत और लगन का जश्न मनाने का एक खास मौका फराहम करता है। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में एहतजाज कर रहे तलबा ने मामले को हल करने की खातिर रियासती हुकूमत के साथ बातचीत के लिए एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों में एहतजाज अहम मरहले में दाखिल हो गया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: रांची में JPSC और JSSC भर्ती इम्तिहानात में मुबीना बेजब्तगियों के खिलाफ एहतजाज का आज 14वां दिन है, जबकि 6 तलबा अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। कल शाम उम्मीदवारों ने रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से एक फ्लैशलाइट एहतजाजी मार्च किया। बाद में रांची सदर के SGM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने एहतजाज कर रहे तलबा से मुलाकात की। नामा निगारों से बात करते हुए SGM रजत कुमार ने कहा कि इंतजामिया अपने नौजवानों से बात करने आई है ताकि मुस्तकबिल की उनकी तैयारियों में मदद पर बातचीत हो सके। तलबा लीडरों ने कहा, कल शाम तक रियासती हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए बाजाब्ता तौर पर मदु नहीं किया गया था, ताहम वजीर आला हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद की बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तलबा ने एक 11 रुकनी टीम तश्कील दी है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज साहिली कर्नाटक, मशरकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम और माहे, ओडिशा और जनूबी अंदरूनी कर्नाटक के हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज शिमाल मशरक के हिस्सों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार जजायर, गंगा के तराई वाले मगरबी बंगाल,

0: कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी औसत से शदीद बारिश का इम्कान है। इस साल आसाम में सैलाब के सबब मजमूई हलाकतों की तादाद बढ़कर 97 हो गई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रियासत के 15 अजला में 1,68,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। 480 से ज्यादा गांव सैलाब से मुतासिर हैं, जबकि हजारों अफराद इमदादी कैंपों में रह रहे हैं और इमदाद तकसीम करने वाले मराकज से मदद हासिल कर रहे हैं। सैलाब के बाद कार्रवाई के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत ने सेहत की देखभाल से मुतालिक कैंप लगाने में तेजी पैदा कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दो एग्जीक्यूटिव अहकाम पर दस्तखत किए हैं, जिनका मकसद पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करना और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाना है। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए जनाब ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार करते हुए इसे एक अफसोसनाक फैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया अमरीका के इमिग्रेशन निजाम की मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पहले एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में ऐसे गैर मुल्की शहरियों के बच्चों की मुख्तलिफ अकसाम की निशानदेही की गई है जो सुप्रीम कोर्ट की तस्लीमशुदा इस्तिस्नाई सूरतों के तहत पैदाइश की बुनियाद पर अमरीका की शहरियत के अहल नहीं होंगे। दूसरे एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे में महकमा खारजा और दाखिली सलामती के महकमे को हिदायत दी गई है कि वो बर्थ टूरिज्म का खात्मा करे। बर्थ टूरिज्म का मतलब वो अमल है जिसमें गैर मुल्की शहरी अपने बच्चों को अमरीकी शहरियत दिलवाने के मकसद से अमरीका का सफर करते हैं। मगरबी बंगाल सरकार पहली मरतबा मरकजी हुकूमत की हर घर तिरंगा मुहिम में बाजाबता तौर पर शिरकत करने के लिए तैयार है। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कल यौम आजादी की तकरीबात से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का ऐलान किया, जिनमें रियासत भर में 70,00,000 कौमी परचम तकसीम करने का मंसूबा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत हर घर तिरंगा मुहिम में मुल्क मुकद्दम और हुब्बुल वतनी के नजरिए को बुनियाद बनाकर शामिल हो रही है। भारत और सिंगापुर ने जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी के रोडमैप के तहत तय किए गए 8 शोबों में दो तरफा तआवुन की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत और सिंगापुर की वजारत खारजा सतह की मुशावरत का 19वां दौर कल नई दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की मुश्तरका सदारत वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन और सिंगापुर की वजारत खारजा में पॉलिसी के मुस्तकिल सेक्रेटरी लूक गोह ने की। तरफैन ने इलाकाई और आलमी हालात वाकयात पर तबादला ख्याल किया और इस बात का इरादा किया कि मुश्तरका चैलेंजों से निपटने के लिए आसियान समेत बैन अल-अक़वामी और इलाकाई फोरम्स में करीबी तआवुन और बाहमी राब्ता निहायत अहम है। बैडमिंटन में आज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला उनकी हमवतन खिलाड़ी रक्षिता रामराज से होगा। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी हमवतन खिलाड़ी श्रेयांशी वलीशेट्टी को हराया था, जबकि रक्षिता जापान की मनामी सुइजू को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। इस दौरान अश्मिता चालिहा एक दूसरे खवातीन सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जापान की आला दर्जे की खिलाड़ी हिना अकेची का सामना करेंगी। खवातीन एशिया कप 2026 के सबसे अहम मुकाबले में 5 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने 28 अगस्त से दुबई में होने वाले खवातीन टी20 एशिया कप 2026 की तारीखों का ऐलान किया है। 28 अगस्त को पहला मैच थाईलैंड और हांगकांग के दरमियान होगा, जबकि फाइनल मैच 13 सितंबर को खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शहसुर्खी है, पार्लियामेंट में जारी तातुल खत्म करने की कोशिशें तेज। इस्मत दरी केस में साफी तरुण तेजपाल को 10 साल कैद की सजा, ये खबर भी अखबारात में नुमाया है। अखबार प्रताप ने आरबीआई के जरिए पॉलिसी सूद की शरह 5.25% पर बरकरार रखने से मुतालिक खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने दिल्ली एनसीआर में बारिश से मुतालिक खबर को भी सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात की अहम बैन अल-अक़वामी खबरें इस तरह है, आबनाए हुरमुज पर ईरान और ओमान के दरमियान इत्तेफाक, वादों पर अमल करने के अमरीका के मुस्बत इशारे, अमरीकी सदर वजीर दिफा पर सख्त बरहम, हथियारों की कमी पर जवाब तलब किया।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। مرکز نے گوا اسمبلی میں درج

एक फूल दो माली। इस फिल्म में आप सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफी को। रवि के संगीत निर्देशन में इस गीत की रचना की थी प्रेम धवन ने। आइए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में, लेखनीबद्ध किया है आनंद बख्शी ने, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह। श्रोताओं, जब मोहब्बत में शरारत घुल जाए और बातों में आंख मिचोली का रंग बन जाए, तो फिर तो मुस्कुराहटों से गीत और चुलबुले अंदाज खिलखिलाते हुए एहसासों में बन जाता है एक खूबसूरत सा गीत, जिसमें अपनापन भी होता है, प्यार भी होता है और साथ निभाने का एहसास भी होता है।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: हर पल चंदन का एहसास।
1: श्रोताओ, समय सुबह के 8:58 और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। तो चलिए फिर चलते हैं सुनहरे गीतों के सफर पर। श्रोताओ, प्यार जिंदगी में अक्सर दस्तक देकर नहीं आता, कभी कभी अनजाने में, कभी कभी मुस्कुराते मुस्कुराते और कभी कभी नाना कहते कहते ही दिल किसी का हो जाता है। दिल की जुबां भले ही टाल दें, लेकिन नजरें और धड़कनें सच ही कह दें।

चप चप फूल खिले। इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर को। धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार थे आनंद बख्शी। आइए आप सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी के लिखे गीत को आशा भोसले के स्वर में फिल्म दो बदन में। श्रोताओं, मौसम का जब अपना मिजाज बदलता है तो हवाओं के साथ यादों की खुशबू भी हमारे दामन में महक उठती है। ठंडी हवाओं का एक झोंका कभी कभी चेहरे को छू जाता है और याद दिलाता है किसी पुरानी याद को, किसी अपने को। आइए ऐसे ही मौसम की नज़ाकत और प्यार के एहसास में बुना ये गीत सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में।

श्रोताओं, ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत की मंजिल हर किसी को मिल जाए। किसी की मोहब्बत पूरी हो जाती है और किसी की अधूरी रह जाती है। लेकिन जो दिल से सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी अपने चाहने वाले का बुरा नहीं चाहते। हर हाल में उसके लिए खुशियों की दुआ करते हैं। आइए, ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवाते हैं, जो अपने चाहने वाले की खुशी के लिए खुश होकर उसको बस खुश रहने की दुआएं दिए जा रहा है।

मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिल्म खिलौना में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गुलशन बावरा के लिखे गीत, कल्याण जी आनंद जी के संगीत में रचे गीत जिसको आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है उपकार। श्रोताओ, आपका और हमारा रिश्ता बहुत प्यारा है और दूरियाँ इस मोहब्बत के रिश्ते की मोहताज नहीं है, इसलिए हम हमेशा यही दुआ करते हैं कि आप जहां भी रहें खुश रहें और मुस्कुराते रहें, सुनते रहें हमारे कार्यक्रम को। तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:15 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए बस्ती और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार सिंह का।
2: बस्ती के एक युवा की पहल ने केवल ऐतिहासिक नदी को नया जीवन देने का प्रयास किया बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बन गई। बस्ती के आकाश गुप्ता की यह उपलब्धि आज जिले के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बस्ती जिले के हरैया तहसील के लजघटा गांव के युवा आकाश गुप्ता को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। भगवान राम के प्रतिष्ठित यज्ञ स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक मनोरमा नदी के संरक्षण के लिए किए गए उनके अभियान को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सराहा था और अब उन्हें 15 अगस्त के समारोह में आमंत्रित किया गया है। बस्ती जिले के युवा आकाश गुप्ता ने अपने 7 साथियों के साथ मिलकर ऐतिहासिक मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। लगातार 4 महीने तक श्रमदान कर टीम ने करीब 400 मीटर तक नदी की सफाई और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया। आकाश और उनकी टीम के इस प्रयास की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनके कार्य की सराहना करते हुए जन भागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण बताया था। इसके बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए आकाश गुप्ता को आधिकारिक निमंत्रण पत्र पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों ने सौंपा। इसके बाद आकाश गुप्ता की टीम के साथ गांव में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। इस संबंध में आकाश गुप्ता ने बताया कि
3: जब हमने ये सफाई का अभियान शुरू किया था तब से लेकर आज तक हमें 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 134वें एपिसोड में हमारी नदी सफाई अभियान का उसने जिक्र किया और राष्ट्रपति जी ने भी हमें एट होम रिसेप्शन में इन्वाइट किया। उसके लिए हमें दिल से धन्यवाद देते हैं और उन्होंने हमारे इस काम की सराहना करते हुए इतना हमारे लिए किया, हमारे लिए गर्व की बात है और हम लोग चाहेंगे हम लोग ऐसे ही और आगे काम करते रहे और अपने देश का नाम रोशन करते रहे।
2: बस्ती के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बस्ती जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड और इमरजेंसी वार्ड समेत एक्सरे विभाग का भी निरीक्षण किया। वार्ड में भर्ती मरीजों का मंत्री ने हाल भी जाना। इस दौरान श्री शाही ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की, साथ ही साथ विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि बस्ती चिकित्सालय में लैब आम आदमी को निशुल्क जांच की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अस्पताल की व्यवस्था और बेहतर हो सके। बस्ती जिले की पुलिस ने 165 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि सर्विलांस सेल द्वारा लगातार चलाए गए अभियान के तहत विभिन्न कंपनियों के कुल 165 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इनकी अनुमानित कीमत करीब 35 लाख रुपए आकी गई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से कटान भी तेजी से हो रही है। नदी किनारे लगे कई पेड़ नदी में समाहित हो गए हैं। गांव वालों ने चिंता व्यक्त की है। दर्जनों गांव बाढ़ की जद में आ सकते हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी कृतिका जोशना ने सदर तहसील के ग्राम एहतमाली और बैराड़ी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए और राहत बचाव कार्यों में प्राथमिकता के साथ संचालित किया जाए। नाव राहत शिविरों और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संसाधनों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल राहत पहुँचाई जा सके। उन्होंने बाढ़ विभाग के तटबंधों और संवेदनशील स्थानों की नियमित निगरानी करने का निर्देश देते हुए जल स्तर बढ़ने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। बस्ती जिले के बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर पर कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सावन के पहले सोमवार को बस्ती जिले के प्रसिद्ध भदेश्वरनाथ धाम सहित जनपद के तमाम शिव मंदिरों पर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। बस्ती में कांवड़ यात्रा को लेकर 7 अगस्त की शाम से 11 अगस्त की शाम तक राष्ट्रीय राजमार्ग 28 बंद कर दिया जाएगा, जबकि कांवड़ियों के ठहरने खाने पीने के साथ समुचित व्यवस्था की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था हेतु 12

0: जनपदों के साथ स्थानीय पुलिस पीएससी लगाई गई है। जिलाधिकारी बस्ती कृतिका ज्योत्सना ने भदेश्वरनाथ मंदिर का निरीक्षण किया और तैयारी को लेकर जानकारी देते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ मेले को लेकर प्रशासन सजग है और व्यापक व्यवस्था की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका ज्योत्सना ने बताया कि
1: कांवड़ यात्रा को लेकर के प्रशासन पहले से ही सजग है, तो निरंतर हमारी व्यवस्था चल रही है। जहाँ जहाँ पे हमें कमी मिलेगी उसको हम तुरंत के तुरंत ठीक का काम कराएंगे।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
3: श्रद्धा साधना शिव भक्ति में सावन का महीना शुरू होते ही शिव मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन माह के प्रथम सोमवार को जनपद के प्राचीन संगमेश्वर, पतालेश्वर, मनासेश्वर, मतंगेश्वर शिव मंदिरों में भक्त सुबह से भक्तों का सैलाब मोड़ते हुए लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बेल पत्र, चावल, घी, धतूरा, फल, शहद, दूध, जल से जलाभिषेक और पूजन अर्चन किया। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को अगले 5 वर्षों तक यानी 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाए जाने पर जनपद हमीरपुर का किसान खुशी जाहिर की है, क्योंकि खेती में निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, जोखिम कम होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, किसानों की आय बढ़ेगी। किसानों को प्रत्येक वर्ष 3 किस्तों में 6,000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 4 मई में 2,000 रूपए की किस्त दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के विषय में जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रमोद कुमार कहते हैं कि
4: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अब तक 2,13,460 किसानों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। और किसान भाइयों से यही अपील रहेगी कि जिसका लैंड रिकॉर्ड की लैंड सीडिंग नहीं हुई है उसको पूरा करा लें। आपके जैसे पत्नी दोनों पा रहे हैं तो उसमें से एक का सरेंडर कर दें और अगला फिर वो चालू हो जाएगा। उनका आधार सीडिंग करवा लेंगे तो आपके वो डेटा बिल्कुल सत्य हो जाएगा और आपकी जो रुकी हुई किस्त आने लगेगी।
3: जनपद हमीरपुर में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड की स्थापना दिवस के अवसर पर सुमेरपुर ब्लॉक के दरियापुर गांव में जिला ग्राम उद्योग की ओर से जागरूकता शिविर का आयोजन कर पारंपरिक माटी कला व्यवसाय से जुड़े कारीगरों को आधुनिक तकनीकों, विभागीय योजनाओं तथा रोजगार से जुड़े नए अवसरों की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि सदर विधायक मनोज कुमार प्रजापति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पारंपरिक कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने को लेकर लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी मनोज शुक्ला कहते हैं कि
5: वर्ष 2017 में इसका बोर्ड का गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसका नवा स्थापना दिवस भी अभी मनाया गया है। इसमें जनपद प्रशासन स्तर से जो भी आवंटित होते हैं, जो विद्युत चालित चार, ये इस बार 25 का टारगेट आया हुआ, 20-25 का टारगेट आता है। हम लोग की जो राज्यता में कमेटी गठित होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी प्राप्त होते हैं उनको निःशुल्क चार 25 का टारगेट है, 25 वितरित किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग समय समय पर जिनकी ट्रेनिंग निर्धारित है, हमारे यहाँ जनपद कालपी में ट्रेनिंग सेंटर है, तो आधुनिक वर्तनों का निर्माण कराना, जागरूक कराना, हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, इस पे हम लोग आने जाने का भय देते हैं, निःशुल्क स्टॉल आवंटित कराते हैं, तो सोसाइटी का गठन कराते हैं, ये भी निःशुल्क हम लोग दिलाई जाती है।
3: कार्यक्रम के अंत में माटी कला उत्पादों का प्रदर्शन कराया गया और प्रचार सामग्री वितरित की गई। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों का मानदेय 7,000 से बढ़कर 17,000 प्रतिमाएं किए जाने और कैशलेस सुविधा मिलने से क्षेत्रों में तैनात अनुदेशकों में खुशी की लहर है। अनुदेशकों का कहना है कि इस बढ़े हुए मानदेय और एरियर से उनके सपनों को उड़ान मिलेगी, क्योंकि पहले सीमित मानदेय के कारण घर का खर्च चलाना बेहद कठिन था, अब मानदेय बढ़ने से बड़ा संबल मिला है। जनपद हमीरपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य आयोजन किया गया, जहां 160 जोड़ों ने विधि विधान के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ जीवन बिताने का प्रण लिया। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने आशीर्वाद प्रदान करते हुए सुखी जीवन की मंगल कामनाएं की। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अत्यंत कमजोर गरीब परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना है जो सामरिक समरसता को सुदृढ़ करती है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
6: ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है धरती गाती है कार्यक्रम। धरती गाती सुन रहे सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धरती गाती है, जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से ही आपको एहसास हो जाता है कि ये धरती की उस मधुर आवाज का सफर है जो लोकगीतों और रागनियों के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी गूंजती चली आ रही है। इनमें मिट्टी की सौंधी खुशबू है, लोक जीवन की सादगी है, रिश्तों की गहराई है, अनुभव की गर्माहट है। तो आइए आज के इस धरती गाती है कार्यक्रम में सुनते हैं कुछ रागनियां योगेंद्र पाल के स्वर में।

श्रोताओं, समाज की सच्चाइयों को सरल शब्दों में सामने रखना ही लोक साहित्य की पुरानी परंपरा रही है। आइए सुनवाते हैं आपको अगली रागनी, जो हमें कृष्ण और सुदामा के जीवन के रिश्तों को बयां करती है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम धरती गाती है आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं योगेंद्र पाल के स्वर में कुछ रागनियां। श्रोताओं, रिश्तों का महत्व क्या होता है, ये बात लोकगीत और रागनियों में बड़े मार्मिक ढंग से कही जाती है। उनकी यही संवेदनशीलता उन्हें पीढ़ियों तक जीवित रखती है। लोक कथाएं और लोक पात्र केवल कहानियों का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वो अपने साथ जीवन के अनुभव, संस्कार और सीख भी लेकर आते हैं। हर रागनी, हर लोकगीत में अपने भीतर एक कथा होती है, कहीं संघर्ष, कहीं त्याग और कहीं जीवन का गहरा संदेश। तो आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक ऐसी ही रागनी।

0: श्रोताओं, योगेंद्र पाल की इसी रागनी के साथ आज का धरती गाती है कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हमने आपको सुनवाई योगेंद्र पाल के स्वर में कुछ रागनियां। सुबह के 10 बज रहे हैं। पेश है आपके पत्रों और व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारे। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम गीत तुम्हारे में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम की सौगात को लेकर आपके साथ मैं हूं फरीना और मेरे साथ है
1: नसरीन जैदी।
0: तो कार्यक्रम का सफर शुरू करने से पहले हम वो रास्ता बता देते हैं जिसके जरिए आप हमसे जुड़ेंगे। तो कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर बता देते हैं 9457078288। और श्रोताओं, आप पत्रों के माध्यम से भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और उसके लिए हमारा पता है
1: कार्यक्रम गीत तुम्हारे द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद पिन कोड 246763।
0: तो कार्यक्रम का पहला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसके लिए फरमाइश हमें भेजी है आप हैं कन्वीर हाउस भूचो कैंचिया भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन अभिजोत।
1: और ये फरीना, इसके लिए हम एक और ये पत्र ले लेते हैं अपना जो हमें पहले से प्राप्त हो चुका है। ये पत्र हमें मिला है इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शाही मार्केट सिहारा से। इसको लिखा है आसिफ चौधरी, अराफात चौधरी, आदित चौधरी और कादिर चौधरी ने।
0: ये मैसेज हमें भेजा है पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर बिजनौर से मोहम्मद ताहिर इदरीस हिलाल जैन। उनके साथ हैं देहरादून से उनके दोस्त। और ये मैसेज हमें भेजा है,
1: ये मैसेज हमें मिला है मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं अभिजीत गवहाड़कर, सरिता गवहाड़कर, प्रिंस एकांश गवहाड़कर। और यही हमें मुंबई से मिला है, बदलापुर मुंबई से। मैसेज भेजने वाले हैं प्रणीता गवहाड़कर, सिद्धांत गवहाड़कर, अर्जुन गवहाड़कर। और अगला मैसेज कहाँ से आ रहा है फरीना?
0: ये मैसेज हमें किया है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और कुमारी ध्वनि ने। ये मैसेज हमें भेज रहे हैं आप हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले आरती जोंधले नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: और ये मैसेज हमें दिख रहा है अपने स्क्रीन पर, ये मैसेज हमें मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती पतेही खालसा से। लिखा है मोहम्मद आलम सिद्दीकी, इरफान मोहम्मद सीफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया सिद्दीकी, अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, मोहम्मद यासीन अंसारी ने।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। और ये मैसेज भेजा है असम से हितेंद्र दास ने।
1: अगला मैसेज हमें मिला है मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी का। ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं ग्राम लसूडिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ से। लिखा है गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी ने।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है बोरखेड़ा पीतरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुनत नेहा जैन दीपक मयंत मुनन और चेतन नहटा ने। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिजा फिल्म में उदित नारायण अलका याग्निक को गुलजार के लिखे इस गीत की धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओं, इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे।
2: और कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं वो हमने लिया है फिल्म मेरा गांव मेरा देश से, जिसको आवाज दी है लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ने, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है और गीत रूप दिया है आनंद बख्शी ने। और इस गीत के लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप सभी, जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशलाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी राखी और तृप्ति जायसवाल।
1: और ये एक खत शामिल कर लेते हैं हम फरीना अपने इस कार्यक्रम में। ये खत हमें मिला है गणेशपुर गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। लिखा है मोहम्मद फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम ने।
2: लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं रामजी साहू, जीवन लाल, रजक निम्मी, शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू।
1: और एक खत और हम शामिल कर लेते हैं। ये हमें मिला है ग्राम बगबुड़वा पथरिया से। लिखा है नरेन नेताम और कुसुम नेताम ने।
2: आदर्श नगर मलौट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से आप हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर।
1: और ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं जिसको भेजा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने।
2: अगला मैसेज हम ले रहे हैं, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन और उनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ये अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। स्वागत है श्रोताओं आपका। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा, पूनम गंगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा का
2: ये मैसेज भेजा है हमें जिला बिजनौर से गीता वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, अनीता वर्मा, मेधा वर्मा, छवि वर्मा और कंचन वर्मा ने।
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है आर्य नगर कोहका भिलाई से। लिखा है उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदली जंगेल ने।
2: शाही मार्केट सिहरा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अदीप चौधरी, कादिर चौधरी और उनके परिवार के सदस्य।
1: ये हमें मैसेज मिल रहा है मोहल्ला धर्मदास नजीबाबाद से। लिखने वाले हैं गुलाम हसन।

0: नसरीन जी,
1: जी फरियाना,
0: ये वक्त भी तो हमसे कुछ कह रहा है कि हम अपने श्रोताओं को कुछ याद दिला दें।
1: हाँ, आज का हमारा एक विशेष कार्यक्रम है जिसके बारे में आप बताने जा रहे हैं ना फरियाना?
0: हाँ, हमारा आज का जो कार्यक्रम है गीत तुम्हारे, वो आधे घंटे का है और उसके बाद हमारे श्रोता हमसे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे कार्यक्रम जिसका नाम है
1: जागरूक श्रोता।
0: और जागरूक श्रोता में आप हमसे बात करेंगे, जिसके लिए हमने आज टॉपिक लिया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भूलिएगा नहीं हमें कॉल करना हमारे उसी नंबर पर जो है 9457078288। तो जरूर कॉल कीजिएगा। चलिए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, जिसको हमने लिया है फिल्म वारिस से। वर्मा वली मलिक के शब्दों में इस गीत को संगीतबद्ध किया है उत्तम जगदीश ने, स्वर है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर का। फिल्म का नाम है वारिस, जिसके लिए फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं आप सभी।
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने।
1: फरीना, ये खत हम शामिल कर लेते हैं अपना। ये हमें भेजा है मोहल्ला अफगनान शेरकोट बिजनौर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी, अलमीर, जन्नत और उनके सभी परिवार के लोगों ने।
0: कृष्णा पार्क दिल्ली से आप हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा और सिटी दीवाना, ये मैसेज हमें भेज रहे हैं। जेल रोड जालंधर से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत, फातिमा कौर।
1: और अपने खत के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावींद्र कुमार वर्मा,
0: राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात, आयशा, साइना, महविश, मोहम्मद अफान, अदीना नूर, ग्राम जुझेला, थाना शिवाला किला कला बिजनौर से हमें ये फरमाइशी मैसेज भेज रहे हैं।
1: और ये खत हम ले रहे हैं कोटवा नारायणपुर से बाबा पट्टी बलिया, लिखने वाले हैं ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय और हैप्पी रॉय।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी ने।
1: दूबिहा नेवादा गाजीपुर से लिखा है ये हमें प्रतीक, रोशनी और प्रांजल ने।
0: मध्य प्रदेश से आप हैं मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, विमल, आशा, राधिका और पूरा श्रीवास्तव परिवार।
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है लाला माता सुदाम नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, और मैसेज भेजने वाले हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा, मनोहर, बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी।
0: और ये मैसेज हमें भेजा है खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से उनके साथ हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविक सिक्का।
1: ये मैसेज हमें मिल रहा है कस्बा गुन्नौर यूपी से, इस मैसेज के साथ हमारे साथ जुड़े हैं फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा।
0: ऊपर कोट बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान, अब्बासी परिवार। और ये कार्यक्रम का अंतिम मैसेज जो ले रहे हैं वो हमें भेजा है दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती साहू, इंद्राणी, माया साहू, चर डोगरी पिपरिया, जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से। तो आइए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर को फिल्म वारिस में।

0: श्रोताओं, इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम को समापन करने की अपनी दोस्त फरीना
1: और नसरीन जैदी को
0: दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।

0: गीत तुम्हारे। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता। आज के इस सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, जहां एक बार फिर आपके साथ मैं हूं फरीना
1: और मैं हूं नसरीन सैदी।
0: श्रोताओं, जहां इरादे अटल हों वहीं जन्म लेते हैं आंदोलन, जहां इरादे अटल हों वहीं जन्म लेते हैं आंदोलन, जहां देश सबसे ऊपर हो वहीं गूंजता है विजय वंदन। त्याग साहस और एकता का था जो अनुपम संगम, त्याग साहस और एकता का था जो अनुपम संगम। आइए याद करें हमारे देश का भारत छोड़ो आंदोलन। श्रोताओं, कल 8 अगस्त है और इस दिन वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया था। इस ऐतिहासिक आंदोलन की कल 84वीं वर्षगांठ है। ये अवसर केवल इतिहास को याद करने का नहीं बल्कि उन वीरों के साहस, त्याग और प्रेम को नमन करने का भी है, जिनके संघर्ष ने भारत को स्वतंत्रता की नई राहें और नई दिशाएं दी। इसलिए तो नसरीन जी, हमने आज अपने इस कार्यक्रम का विषय चुना है,
1: हमने विषय चुना है भारत छोड़ो आंदोलन। और श्रोताओं, अगले 30 मिनट तक हम आपसे इस आंदोलन के इतिहास, इसके महत्व और इससे मिलने वाली प्रेरणा पर बात करेंगे और जानेंगे आपके विचार भी।
0: और हम चाहेंगे कि आप भी इस चर्चा का हिस्सा बने और इस आंदोलन से जुड़े अपने विचार, अपनी जानकारी या अपने क्षेत्र के किसी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृतियां हमसे साझा कीजिएगा, जिसके लिए हमारा नंबर है।
1: आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर है 9457078288। एक बार नंबर फिर से नोट कर लीजिएगा, 9457078288।
0: तो जल्दी से जुड़ जाइएगा अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जागरूक श्रोता। और नसरीन जी, देखिएगा ना, नंबर बताते से पहले ही कॉल आनी शुरू हो गई थी
1: जी।
0: तो देखते हैं पहली कॉल किसकी है। हेलो जागरूक श्रोता। हेलो, हेलो जागरूक श्रोता, हेलो
1: शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है।
0: कोई बात नहीं, हमारे श्रोता हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो हम तब तक हमारे अन्य श्रोता हमको कॉल करते हैं, तब तक हम ही उनको इस विषय पर आगे कुछ जानकारी दे देते हैं। श्रोता, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है तो हमें कई आंदोलन की याद आती है और सबसे ज़्यादा याद आती है वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की। आगे भी आपसे इसकी जानकारी साझा करेंगे और देख लेते हैं कि अगले कॉलर कौन है।
2: हेलो,
0: हेलो, हेलो जागरूक श्रोता, हेलो,
3: हेलो,
0: हेलो,
3: हेलो, नमस्कार, हेलो, नमस्कार,
0: नमस्कार जी, नमस्कार। हम जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोता जो हमसे बात कर रहे हैं उनका नाम क्या है।
3: जी, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला।
0: अच्छा जी, राकेश जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। तो
3: जी, धन्यवाद
0: राकेश जी। जैसा कि आज हमने टॉपिक लिया है और जाहिर सी बात है आप कार्यक्रम से जुड़े हुए होंगे तो आपको पता भी होगा कि आज हमारा टॉपिक क्या हमने लिया है।
3: जी जी, भारत छोड़ो अभियान जो आपने टॉपिक लिया है, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। जो अंग्रेजों को जो ये जो कहा गया है भारत छोड़ो अभियान जो आंदोलन
0: जी,
3: तो जी जी
0: जी, तो
3: ये टॉपिक है
0: जी जी, बताइए आप, बोलिए
3: जी। मैं इस टॉपिक के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अक्सर जो है ये

0: इसके बारे में बहुत सुना है कि जो जब अंग्रेजों को जब ये बताया गया था कि भारत छोड़ो, क्या बोलते अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन जो मुझे महात्मा गांधी जी का एक एक याद आया था, उन्होंने एक एक बात कही थी, करो या मरो।
1: जी जी जी जी
0: जी, एक बात उन्होंने कही थी, करो या मरो। तो इसीलिए मैं आज की जो जागरूक होता है, तो आज भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमें अंग्रेजों को भगाया है, इस तरह से आज भी हमारे भारत के ऐसे भी हैं हमारे जो हैं दुश्मन, इस तरह से हमें भगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो आर्मी हैं, हमारे फौजी हैं जो बॉर्डर पे रह रहे हैं, उनका हमें उत्साह बनाना चाहिए। जब वो अभी थोड़ी सी बात में इसमें ऑपरेशन सिंदूर को देना चाहता हूँ, ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया था, तो फिर हमने जितने भी युवा थे, हमने कितना हमने मनोबल बढ़ाया था हम अपनी सेना का। लेकिन हम ये कर सकते हैं, भले हम बॉर्डर पे नहीं जा सकते, अगर हम अपने सेना का मनोबल बढ़ाएंगे तो फिर हमारे जो है उनकी जो है हमारा मनोबल हमारा इनका जो है इनकी हमारी ताकत बन जाए। अगर हम उनको हौसला देंगे हमारे वीर जवानों को, तो उनकी जो है शक्ति बन जाती है। जो अब हर 140 करोड़ का आशीर्वाद अगर हमारे फौजियों को मिल जाएंगे, तो उनकी वो शक्ति बन जाती है, तब जाके हमारे देश के दुश्मन को हम कड़ा जवाब दे सकते हैं और देते भी हैं और आगे भी देते रहेंगे।
1: हाँ, लेकिन राकेश जी, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे जो सेना के सिपाही हैं वो देश के बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते हैं, लेकिन देश सेवा केवल बॉर्डर पर रहने वाले सिपाही नहीं कर सकते, हम देश के अंदर रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे अपने देश को साफ रख के, पर्यावरण प्रदूषण जो फैल रहा है उसको दूर करके, बहुत सारे सामाजिक काम है कि आपस में भाईचारा प्रेम फैलाकर भी हम देश की सेवा कर सकते हैं।
0: जी, ये भी कर सकते। तो मैं यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि साफ सफाई, पर्यावरण को बचाना, और सबसे बड़ी बात है अपने देश के साथ ईमानदारी से पेश आना। और सबसे बड़ी बात है इसमें मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि हमें लड़कियों का महिलाओं का सम्मान भी करना चाहिए। देखो, जिस देश के लिए हमारे वीर जवान अपनी जान को कुर्बान करते हैं, अगर इस देश में हम महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर उनकी जो है बलिदान जो है व्यर्थ चला जाएगा। देखिए, इसलिए सबसे पहली बात है महिलाओं का सम्मान भी, ये भी हमारे देश भक्ति का प्रावधान है, क्योंकि हम हर माता बहनों का सम्मान करना चाहिए, ताकि हमारे जो वीर जवान भी देखे कि हाँ, हम इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, क्योंकि हमारा देश माताओं बहनों का भी सम्मान करता है और साफ सफाई का भी करता है, पर्यावरण का भी करता है। ये चीज हमें जरूर करनी चाहिए।
1: जी जी, जैसे हमारे जो देश के आज़ादी के सिपाही थे, उन्होंने अपनी जान तक कुर्बानी करने में मतलब पीछे नहीं हटे, और आज के जो युवा हैं, कुछ ऐसे हैं जो राह भटक गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों तक को ठीक से निभा नहीं पाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो वीर सेनानी थे, उनसे प्रेरणा लें और अपने देश के लिए कुछ करें। तो मतलब राकेश जी, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप ये जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन था, अगर उस वक्त आप होते, तो आप उसमें क्या भूमिका निभाते?
0: जी जी जी, तो अगर सौभाग्यवश अगर मैं इस समय मैं होता, तो मैं अपने देश के लिए मैं कुछ भी कर सकता, लेकिन देखो प्राणों की जान का प्राणों की।
1: हेलो हेलो, लगता है हमारे श्रोता से हमारा कनेक्शन टूट गया, लेकिन हमें राकेश जी अभी भी सुन रहे होंगे। राकेश जी, आपने जो भी जानकारी हमारे अन्य श्रोताओं से और हमसे साझा की, और जो भी प्रेरणा भरे संदेश दिए, उस हेलो
0: हाँ जी, हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है?
1: हाँ जी, ये तो बहुत ही मतलब इत्तेफाक है कि आपकी कॉल दोबारा हमसे कनेक्ट हो गई है।
0: जी, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं अगर मैं उस समय मैं होता, तो मैं अपने देश की युवा को मैं जागरूक करता, और अपने में पूरी पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी मेहनत के साथ मैं अपने देश के लिए खड़ा होता। उस समय में अगर मैं भारत छोड़ो अभियान में शामिल होता, उस समय अगर मैं पैदा हुआ होता।
1: अच्छा, तो राकेश जी, हम आपसे ये कहेंगे कि आप आज भी कोशिश करिएगा कि अपने देश के लिए, अपने घर में रहकर, अपने समाज में उन बुराइयों को दूर करें जो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है।
0: एक बात मैं आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड हूँ कि मैं अपने देश के लिए इतना जज्बा रखता हूँ कि मैं अपने देश के लिए तब भी मैं दृष्टि बाधित हो कि भी मैं कुछ कर सकता। ऐसे मैं जरूर प्रयास करूंगा कि मैं और तो नहीं तो मैं अपने युवा को मैं जागरूक कर सकता हूँ घर बैठे।

0: क्योंकि इसमें मेरी कोशिश ये रहेंगी।
1: कोई बात नहीं राकेश जी, अगर आप देख नहीं सकते लेकिन आप अपनी मन की आंखों से ही देख सकते हैं और अपने देश की जो सुंदरता है उसको महसूस कर सकते हैं। कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद।
1: तो हमारे श्रोता राकेश जी ने हमसे बहुत अच्छी अपनी बातें साझा की और अच्छा लगा कार्यक्रम में जुड़े। तो नसरीन जी, देख लेते हैं अगले कॉलर हमसे कौन जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, जागरूक श्रोता, लगता है कनेक्शन फिर टूट गया है। चलिए कोई बात नहीं, हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
2: और अपने श्रोताओं को थोड़ा सा इस आंदोलन के बारे में बता देते हैं। श्रोताओं, हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में कई ऐसे मोड़ आए जिन्होंने इतिहास की धारा में ही बदल दी। लेकिन अगस्त 1942 का वो महीना कुछ खास था, जब पूरे देश में एक ही गूंज थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बता रहे हैं 1942 की उस ऐतिहासिक दौर में, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया।
1: और नसरीन जी, ये भारत छोड़ो आंदोलन जो था हमारे आज़ादी के संग्राम का वो निर्णायक मोड़ था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को ये संदेश दे दिया था कि अब भारत को गुलाम बनाकर रखना जरा भी संभव नहीं है। और ये वही आंदोलन था जिसने देश के कोने कोने में आज़ादी की अलख जगाई और जन जन को स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ का सहभागी बना दिया। तो देख लेते हैं हमारे अगले श्रोता सहभागी जो बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम के, वो कौन है। हेलो जागरूक श्रोता, हेलो,
3: जी नमस्ते, प्रेम
1: नमस्कार नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं।
3: सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
1: जी प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में आपका प्रेम भरा स्वागत है। और प्रेम जी, आप हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं।
3: हाँ जी, मोबाइल ऐप पर सुन रहा हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप जानकारी दे रहे हो। हाँ, उस समय की बात है जब हमारे भारत देश गुलाम था, और आपको बताऊँ काफी समस्याओं का और उन लोगों ने काफी प्रताड़ित किया था हमारे भारतवासियों को। तो उनको तो मतलब खदेड़ के यहाँ से भगा दिया, भारत छोड़ छुड़वा दिया उनसे। लेकिन उस समय पे जितने भी मतलब क्रांतिकारी थे, या यूँ कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन में जो लोग शहीद हुए हैं, उनको मतलब कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।
1: जी जी सही बात है। तो आप बता सकते हैं हमें कि हमारे एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि ये आंदोलन क्यों हुआ था।
3: ये आंदोलन आपको बताऊं सबसे पहले इसलिए किया गया तो कि भारत में जो विदेशी हुकूमत चला रहे थे लोग, और भारतीयों को मतलब काफी प्रताड़ित किया उन्होंने, बहुत ही परेशान किया। उन लोगों से परेशान होके उन लोगों को मतलब यहाँ से अपने भारत से दूर भगाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था।
1: हाँ प्रेम जी, और जब उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजी सरकारें भारतीय नेताओं की सहमति के बिना ही उन्होंने मतलब भारत को इस युद्ध में शामिल कर लिया था, देश में असंतोष तो बढ़ ही रहा था और इसी दौरान क्रिप्स मिशन भी आया था, आपको याद होगा। लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीयों ने नकार दिया था, यानी उनका ये मिशन नाकाम हो रहा था। तो अच्छा ये बताइए कि अभी हमारे हमसे जो पहले श्रोता जुड़े थे राकेश जी, उन्होंने बताया था कि इस आंदोलन में गांधी जी ने एक महत्वपूर्ण नारा दिया था, क्या नारा था वो।
3: गांधी जी ने नारा दिया था, तुम हमें नहीं, शायद वो वाला नहीं दिया था, एक नारा था तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, शायद वो इसका तो नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नारा दिया था उन्होंने।
1: उन्होंने नारा दिया था, अगर आपको याद नहीं है हम बता देते हैं, उन्होंने नारा दिया था करो या मरो।
3: हाँ जी, सोचिए, बिल्कुल याद था, बस कंफर्म याद था, लेकिन क्या है ने? जब से कॉल लगाया ना एकदम से ऐसे
1: अच्छा
3: घबराहट
1: अच्छा
3: हो रही
1: नहीं
3: कि मैं भूल गया।
1: हाँ नहीं, ये तो मतलब एक नॉर्मल सी बात है, हम इंसान लोग हैं, कभी कभी माइंड में कोई चीज टच करती है लेकिन जवाब पर नहीं आ पाती।
3: जी बिल्कुल, ऐसा होता है ना, क्योंकि जब किसी आकाशवाणी केंद्र में या फिर कहीं पर भी ऐसे सवाल जवाब होते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है।
1: कोई बात नहीं
3: याद
1: कोई बात
3: होता है,
1: नहीं,
3: बिल्कुल याद होता है, लेकिन एकदम से बोलने में थोड़ी हो जाता है वो।
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं। अच्छा मतलब ये नारा जो

0: आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है, इसका
1: बिल्कुल
0: मतलब
1: बिल्कुल
0: क्या होता है? इस नारे का आप अर्थ बता सकेंगे कि ये नारा जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दिया था, इस नारे का अर्थ क्या था? मतलब इसमें
1: जी,
0: क्या सार छिपा था?
1: एक बार फिर से बताइए नारा आप मुझे।
0: करो या मरो।
1: जी, करो या मरो, इसका नारा का मतलब अर्थ ये था कि हमें अपने डेट का सामना करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं कि पीछे हट जाए और हम पे जो अंग्रेजी हुकूमत चल रही थी या ऐसे था ना, वो हम पे हावी हो जाए, तो अगर हमने सामने आ भी जाए ना तो उसे कि तो खत्म करो या फिर खुद खत्म हो जाओ।
0: जी जी जी हाँ, इसका अर्थ लगभग यही था कि आज़ादी के लिए कुछ भी कर गुजर जाना है, चाहे इस कोशिश में अपनी जान भी चली जाए।
1: जी बिल्कुल,
0: और
1: पीछे नहीं
0: देखिएगा,
1: हटना है।
0: जब ये आंदोलन हुआ था, और हुआ ये था कि 8 अगस्त को जब ये आंदोलन मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुआ था, जहाँ कांग्रेस
1: जी
0: का
1: जी
0: अधिवेशन हो रहा था, तो
1: जी
0: महात्मा
1: बिल्कुल
0: गांधी ने ये संदेश दिया था, और अंग्रेज इससे इतना डर गए थे कि अगले दिन यानी 9 अगस्त की सुबह में ही उन्होंने सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।
1: जी हाँ।
0: तो आपके आसपास कोई, आपके मतलब आस पड़ोस में कोई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी या आपके क्षेत्र में हुए हैं जी, जो मतलब आपको याद हो?
1: जी बताना चाहेंगे, ऐसे तो बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी हुए हैं, होंगे भी सही, लेकिन फिलहाल जो पन्नों में दर्ज हो चुके, इतिहास में दर्ज हो चुके, वो ही याद है, बट ऐसा कोई जनरल याद नहीं है मुझे।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी थैंक यू सो मच।
0: नसरीन जी, इसे जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेज हमारे देश भारत को छोड़ जाएं, है ना?
2: जी
0: और इसके लिए हमारे नेताओं को जब गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये आंदोलन सिर्फ नेताओं का नहीं था, इसके अगले दिन ही अंग्रेजों की सरकारों की जड़ें हिल गईं, जब उन्होंने देखा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जनता में, चाहे वो बच्चे हों, छात्र हों, महिलाएं हों, किसान हों, मजदूर हों, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बन गए, और इस
2: जी
0: आंदोलन को उन्होंने सफल बनाने में अपनी जान की बाजी तक लगा दी। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
2: और देख लेते हैं ये हमें अगली कॉल किसकी आ रही है। हेलो,
0: हेलो हेलो हेलो, जागरूक श्रोता, हेलो,
2: शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही है।
0: अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो जागरूक श्रोता, हेलो
2: हेलो
3: हेलो हेलो, जागरूक श्रोता।
2: हेलो,
3: हाँ जी,
2: हमारे कौन श्रोता बोल रहे हैं?
3: मैं ग्राम दोनों जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
2: अच्छा, मदन गिरी साहब बोल रहे हैं आप। आप
3: हाँ
2: हमारा
3: जी
2: कार्यक्रम सुन रहे हैं?
3: जी सुन रहा हूँ।
2: जी, तो आपको
3: कम से ही
2: हमारा विषय भी
3: बताया।
2: मालूम होगा।
3: हाँ जी, कम से ही बताया आपसे, नहीं कम से ही बताया।
2: जी, तो
3: लेकिन थोड़ा सा मेरा मेरा अनुरोध है कि कम टाइम दिया करो, और भी श्रोता लाइन पर है, थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे।
2: जी,
3: हाँ जी, मैं भारत छोड़ो आंदोलन का जिक्र करना चाहूंगा।
2: जी बिल्कुल
3: देखिए,
2: कीजिएगा।
3: ये ऐसा आंदोलन था जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में नारा दिया गया था, करो या मरो और अंग्रेज भारत छोड़ो,
2: जी
3: और बहुत ही निर्णायक मोड़ था भारत की आजादी का, और इसमें सभी वर्गों ने, सभी धर्मों के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि अंग्रेज भारत छोड़ो और जो है यहाँ से चले जाओ, हमारा देश हमें आजाद करो। तो इसमें इसमें महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। 8 अगस्त 1942 में
2: जी
3: ये आंदोलन शुरू हुआ था,
2: जी
3: और इसी की वजह थी कि हम निर्णायक मोड़ पर, हमारा जो युद्ध था, हमारा जो आंदोलन था, लड़ाई थी स्वतंत्रता के लिए, वो निर्णायक मोड़ पर पहुंची और अंग्रेज हमारा देश छोड़ने पर मजबूर हो गए।
0: जी
3: यही मेरा
0: हाँ
3: कहना है इस आंदोलन के विषय में।
2: जी
3: और कुछ पूछना चाहते हैं
2: जी
3: पूछिए।
2: जी मदन गिरी जी, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, क्या इस आंदोलन में हिंसा की

0: अनुमति थी? क्या
1: जी
0: इस आंदोलन में हिंसा की अनुमति थी?
1: ये आंदोलन में देखिए,
0: जी
1: आंदोलन में हिस्सेदारी,
0: नहीं, मैं मतलब ये पूछना चाह रही हूँ कि आंदोलन हुआ था ना, तो उस आंदोलन
1: जी
0: में क्या हिंसा की अनुमति थी? क्योंकि आंदोलन
1: नहीं,
0: गांधी जी का
1: हिंसा
0: शुरू किया
1: की
0: हुआ था ना।
1: इसलिए क्या, गांधी जी हमारे नेता थे जो
0: जी
1: हिंसा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते थे,
0: जी
1: और अगर हिंसा होती थी आंदोलन में उनके
0: हाँ
1: तो वे तत्काल आंदोलन समाप्त कर देते थे,
0: जी जी जी
1: उसकी प्रायश्चित करने के लिए व्रत रखते थे, उसका हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए,
0: जी
1: तो
0: और
1: कभी जो है हिंसा का आंदोलन का समर्थन नहीं करते थे।
0: तो मदन गिरी जी, आप एक बात हमें बताइएगा कि इस आंदोलन का एक और नाम था, क्या आपको याद है वो नाम?
1: क्या कौन सा जी?
0: जी, भारत छोड़ो आंदोलन का एक दूसरा नाम भी था, क्या आपको याद है? या
1: मरो या मरो।
0: नहीं, वो तो इसका नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, इस आंदोलन को और जिस मैदान में ये हुआ था, तो मतलब इसका दूसरा नाम भी था, तो क्या आप उसके बारे में जानते हैं या हमें बता पाएंगे?
1: बताइए, मैं बताऊंगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा।
0: चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं बता सकते तो हम बता देते हैं कि ये आंदोलन हुआ था मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में, जिसको आज अगस्त क्रांति मैदान कहते हैं और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो कार्यक्रम में मदन गिरी जी, आप हमसे जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, तो उसके लिए
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।
0: हेलो हेलो, जागरूक श्रोता, हेलो हेलो, श्रोताओं, अभी हमसे मदन गिरी जी ने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की और ये बताया हमें कि इस आंदोलन में देश के हर नागरिक ने अपनी भागीदारी दी थी, और ये आंदोलन केवल वाकई में नेताओं का आंदोलन नहीं था, इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि इसमें देश के हर नागरिक ने हिस्सा लिया, इसलिए इस आंदोलन को जन आंदोलन भी कहा गया।
2: श्रोताओं, इस आंदोलन में युवाओं और महिलाओं की भूमिका अभूतपूर्व थी। अरुणा आसफ अली ने मुंबई के गवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर साहस की नई मिसाल कायम की। वहीं श्रोता उषा मेहता और उनके सहयोगियों ने सीक्रेट कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की, जिससे अंग्रेजों की सेंसरशिप के बावजूद देश भर में आज़ादी का संदेश फैलाया गया। सतारा, बलिया और तामलुक जैसी जगहों पर जनता ने अपनी समानांतर सरकारें तक बना ली।
0: श्रोताओं, आज हमारा देश स्वतंत्र है। भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को तो हमारे देश से दूर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में हैं, उन्हें हमें छोड़ना है, जैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक बुराइयाँ, आपस में नफरत, पर्यावरण का नुकसान, बुरी आदतें, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अगर छोड़ दें तो ये हमारी सच्ची देशभक्ति का सबूत हो सकती हैं। तो नसरीन जी, कार्यक्रम में अगले कॉलर्स को जोड़ लेते हैं, कौन है वो? हेलो हेलो
3: हेलो।
0: हेलो, कौन कौन श्रोता बोल रहे हैं?
3: मैं साबिर अली, जिला मुरादाबाद,
0: साबिर अली बोल रहे हैं जी। सर साबिर अली जी, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ना?
3: हाँ,
0: जी
3: तो वैसे लगे
0: जी सर, तो हमें कुछ बताएंगे आप हमारे आज के इस जागरूक श्रोता के अंतर्गत, जो हमारा विषय है भारत छोड़ो आंदोलन?
3: हाँ, पता है साहब,
0: जी बताइएगा।
3: 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, बड़ी मेहनत से हमारे देश के महत्वपूर्ण लोगों ने कुर्बानियां दी, जब जैसे हमें आजादी मिली।
0: जी सर, तो साबिर जी बताइएगा कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देश के महान व्यक्तित्वों ने त्याग किया हमारे देश के लिए।

0: तो उनका ये त्याग हमारी आज की पीढ़ी को क्या संदेश देता है?
1: हमारी पीढ़ी को ये संदेश देता है कि किसी भी चीज में हार नहीं माननी चाहिए और लगे रहना चाहिए। अहिंसा हमारा देश सिखाता है, हिंसा नहीं
0: जी
1: होता, अहिंसा से कोई भी काम हो सकता है।
0: तो आप अपनी फैमिली में अपने छोटों को क्या सीख देते हैं जो हमारे देश के सेनानियों ने हमारे देश को जो ये आज़ादी दी, जो आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, उनका उनका जो मतलब उनके लिए हम सम्मान किस तरह से उनको सम्मान दे सकते हैं? सिर्फ मतलब 15 अगस्त पर उनको फूल चढ़ाकर या फिर कुछ और करके?
1: सर मैम जितना भी करो उनके लिए थोड़ा ही थोड़ा है।
0: जी,
1: हम तो अपने बच्चे को भी बताते हैं, हमें आजादी मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ये दिया, कुर्बानी दी, हंसते हंसते फांसी पे चढ़े।
0: जी हाँ, लेकिन आप देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी मेहनत से देश को आज़ादी दी और देश के राष्ट्रीय त्योहारों पर बच्चों में जो बच्चों की स्कूल की संख्या होती है इस त्योहार पर बहुत कम देखने को मिलती है, जहाँ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को इतना समय दिया, तो क्या हम अपने देश को इतना भी समय नहीं दे सकते कि हम इन त्योहारों पर अपने इन राष्ट्रीय निर्माताओं और स्वतंत्रता सेनानियों और महान व्यक्तित्व को सम्मान दे दें?
2: हाँ फरीना,
1: हाँ
2: ये
1: सर
2: त्योहार
1: आप
2: तो हमारे अपने होते हैं,
0: हाँ
2: ये
1: सही
2: तो
1: कह रहे
2: हमारे
1: हैं।
2: अपने होते हैं, और तो सब रिलीजन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन ये त्योहार हमारे अपने होते हैं, इसको सभी को मनाना चाहिए।
0: और पूरा
1: ये
0: देश
1: तो हर
0: मिलकर इन
1: हिंदू
0: राष्ट्रीय त्योहार को मनाता है ना?
1: जी ये तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, जो
0: जी हाँ,
1: हिंदुस्तान में
0: हम
1: किसी
0: के
1: को
0: ना हिंदू
1: नहीं,
0: हैं, ना मुस्लिम हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई
1: हिंदू
0: हैं,
1: मुस्लिम की तो
0: हम
1: मैम
0: सब
1: कोई बात ही नहीं
0: हिंदुस्तानी
1: आती।
0: हैं।
1: हम हिंदुस्तानी, हिंदू मुस्लिम को मैम कोई बात ही नहीं आती।
0: जी, मज़हब से बढ़कर हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के हर स्वतंत्रता सेनानी, हर शहीद को सम्मान दें। कार्यक्रम में
1: जी
0: साबिर जी, आपका जुड़ने का बहुत बहुत।
1: मैम एक बात कहनी थी मुझको।
0: जी, कहिए।
1: मैं ये कह रहा था कि आप बात का टॉपिक शुरू में ले लेती हैं, शुरू में ले ले कर 5 मिनट वेट करते रहते हैं, हम कॉल हमारी कट जाती है, लगती नहीं है, आप बीच में बात करते हैं।
0: ये तो मतलब कनेक्टिविटी पे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने आप से ही मतलब आपको कनेक्ट नहीं करते, कॉल कनेक्ट हो जाती है तो हम कर लेते हैं।
1: नहीं तो हम मैंने कई बार कॉल लगाई, बात चल रही थी तो लगी नहीं, बड़ी मेहनत से कॉल लगी थी। तो
0: इत्तफाक
1: 5 मिनट
0: हो सकता है,
1: पहले ले लिया करिए सर, ये मैम ये कह रहा हूँ मैं, 5 मिनट
0: ऐसा
1: पहले बात
0: पॉसिबल नहीं
1: करिए।
0: है कि हम प्रोग्राम देते हुए आपकी कॉल को रिसीव कर ले। लाइव प्रोग्राम है और इसमें अगले कॉलर की कॉल नहीं ली जा सकती, ठीक
1: नहीं
0: है?
1: वो तो है, मैं मेरे मतलब नहीं समझी आप मैम। ठीक है मैम, धन्यवाद।
0: ठीक है, धन्यवाद। हेलो जागरूक श्रोता, हेलो जागरूक श्रोता, लगता है नसरीन जी अब कनेक्शन नहीं हो पा रहा, और कार्यक्रम का समय भी हमें इजाज़त नहीं देता कि हम और ज़्यादा बात करें।
2: जी
0: और श्रोता, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन एक संदेश है हमारे देशवासियों को कि आप अपने देश के लिए अपने किसी भी क्षेत्र में पूरा प्रयास करते रहें, अगर आपके प्रयास में जिम्मेदारी है, लगन है, तो आप अपनी मंजिल को जरूर पालेंगे। तो नसरीन जी, कार्यक्रम में जाते जाते अपने श्रोताओं को बस यही कहते जाते हैं।
2: जी नमन उन कदमों की जो बेड़ियों से टकरा गए,
0: नमन उन हौसलों को जो हर डर से ऊपर जा गए,
2: आओ हम भी अपने कर्मों से ये प्रण निभाएं।
0: अपने देश भारत को और ऊंचा ले जाएं। तो इसी के साथ कार्यक्रम जागरूक श्रोता अब यहीं पर संपन्न होता है। दीजिएगा इजाजत मुझे यानी फरीना,
2: और मुझे नसरीन जैदी को।
0: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक सजीव फोन इन कार्यक्रम जागरूक श्रोता, आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर सवेरे के 11 बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम चित्रपट संगीत में। और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म कल हो न हो। आवाज है अलका याग्निक और शान की। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की है शंकर ईसान लॉय ने।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
0: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।

और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए फिल्म चाइना गेट से अलका याग्निक, शंकर महादेवन, विनोद राठौड़ की आवाज में ये गीत, जिसको लिखा है समीर ने और धुन तैयार की है अनु मलिक ने।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। सवेरे के 11:10 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी है राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार

0: महान समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामयी अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसआर खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन एंड वी एक्सटेंड आवर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंडलूम डे। The Ministry of Textiles, Government of India, is celebrating the 12th National Handloom Day today with the national function at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, New Delhi. The function celebrates India's rich handloom heritage and recognizes the contribution of the handloom weaving community to the nation's cultural and economic development. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom Awardees and National Handloom Awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives, and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall-hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu aaj Rashtriya Hathkarga Divas samaroh ke dauran pratishthit Hathkarga puraskar pradan karengi. Is samaroh mein Kendriya Vastra Mantri Shri Giriraj Singh, varishth ganmanya vyakti, Hathkarga udyog ke pratinidhi, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में

0: उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार, इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you are absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement which launched on the 7th of August 1905 that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest sources of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, we celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations, unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris

0: have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Maraniye Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी का विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देश भर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देश भर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देश भर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
0: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड टुडे द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कन्फर द संत कबीर हैंडलूम अवार्ड्स 2025 टू टू अवार्डीज, द कमला देवी चट्टोपाध्याय संत कबीर हैंडलूम अवार्ड 2025 टू वन अवार्डी एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स 2025 टू 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to 2 awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to 2 awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to 2 awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to 1 awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also interact with the Honorable President. And in just a short while from now, we shall be taking you over.

दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, members of the handloom fraternity, industry leaders, development partners, devyon aur sajjanon, main is 12ve rashtriya hathkarga divas par maniye rashtrapati ji ka swagat karti hu। main swagat karti hu desh ke sabhi बुनकर भाइयों और बहनों का। इट इज अ प्रिविलेज टू जॉइन यू ऑल इन सेलिब्रेटिंग द 12th नेशनल हैंडलूम डे, एन ओकेजन दैट ऑनर्स द एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियाज वीविंग कम्युनिटी एंड रीअफर्म्स नेशंस कलेक्टिव कमिटमेंट टू स्ट्रेंथन द स्पिरिट ऑफ Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, grameen rozgar ka sadhan, mahilaon ke aage rakhe hue development ka sutradhar aur sustainable production ki dhuri, yeh 35 lakh weavers aur usse jude hue logon ko support karta hai। मंत्रालय अपनी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में हैंडलूम डेवलपमेंट की द्विपक्षीय या दो तरीके की ऑब्जेक्टिव्स पर काम करता है, जहां पर प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन के साथ साथ कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट और फ्यूचर रेडी हैंडलूम इकोसिस्टम की भी हम बातचीत करते हैं। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम और रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब हेलो हेलो देख रहे हो। आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
0: 0.5 lakh weavers have been onboarded onto the India handmade e-marketplace. Handloom hearts, cottage, kunj have been repositioned as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta

0: और ग्लोबल बाजार के अनुरूप तैयार किए गए डिजाइन वाइल्ड डिजिटल कैटलॉगिंग एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आर कनेक्टिंग लूम्स इन रिमोट विलेजेस डायरेक्टली टू कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. QR based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress. With technology as an enabler and weavers at the heart of journey, it is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada un bunkar behnon aur bhaiyon ko जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे. थैंक यू. जय हिंद.
1: थैंक यू मैम फॉर दिस वार्म वेलकम एड्रेस. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब 12वें राष्ट्रीय
1: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ.
2: माननीय राष्ट्रपति
1: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा से श्री राम मेहर. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए. आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी. मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर. हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी. आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी.

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबस्त श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्ना मलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनवा बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sari, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbast Shwetambari Tissue Jamdani Sari. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Sri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Sri Kumaran Balaraman. Sri Ganji Venkatesh of Telangana got the National Handloom Award for Ikat Sari, Sri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jamdani Sari, Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sari, Sri Manzoor Ahmed Hajam and Sri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Sri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari, Sri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari, and Sri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
0: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with this special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Post, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict

0: is a proud moment for all our citizens who are involved with the handloom sector. And the Honorable President has also released two publications. The first one, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and another coffee table book, the Handloom Awards Book 2025. And as we mentioned today, that the Honorable President of India presented Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees from Odisha and Uttar Pradesh, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to Srimati Runima Chetia Chaudhary.
1: All right, Assam. Time to get and one NRI task done. What?
0: And,
1: you think I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganchi Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat sari. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half sari. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani sari. We have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra
2: Margarekar. आपकी सादगी संविधान शीलता आओ जन सभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, pichle barsh Rashtriya Hastshilp Puraskar Samaroh ke apne sambodhan mein aapne GI Tech ke mahatva par bhi vishesh bal diya tha aur अधिक से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई पहचान दिलाने का आह्वान किया था. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दो दिन पहले ही जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का सफल आयोजन किया गया, जिसने जीआई इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने की भी दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है. साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है. द ट्रू क्रेडिट फॉर द एंड्यूरिंग लेगेसी एंड ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट ट्रेडिशंस बिलोंग फर्स्ट टू आवर जनरेशंस ऑफ वीवर्स एंड आर्टिजंस हु हैव प्रिजर्व्ड दिस प्राइसलेस हेरिटेज फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अंडर द कॉन्स्टेंट गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary Textile DC Handlooms and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antatah, aiye hum sab milkar ye sankalp lein ki hamare bunkaron ko samman, pehchan aur naye avsar nirantar milte rahe tatha hamare bunkaron dwara buna gaye pratyek dhaga vikshit Bharat ke sapne ko aur adhik sashakt kare. Dhanyawad, Jai Hind.
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद. और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को. माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं। मैं जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी

मीडिया सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12 में हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश

होनी आवश्यक है कि शारीरिक शोषण ये चाइल्ड अब्यूज इसके शिकार सिर्फ लड़कियां नहीं होती है, बहुत बार लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लड़कों को भी ये बातें सिखाएं, उनको समझाएं। कोई भी उनको छू नहीं सकता, चाहे वो दादा हो, मामा हो, चाचा हो, भाई बहन हो या आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो। किसी को भी ये हक नहीं है कि एक बच्चे को गलत तरीके से छुए या गलत चीजें उनको दिखाएं। दोस्तों, बहुत बार बच्चे डरते हैं ये सब बताने से, या फिर जो इंसान आपके बच्चे के साथ गलत करता है वो बच्चे को सिखाता है कि ये सारी बातें किसी से मत कहना, ये कहकर कि ये हमारी आपस की बात है या फिर राज की बात है। और ऐसी सारी बातें बहुत जरूरी है कि बच्चे माता पिता से आकर कहें। यहाँ पे मैं माता पिता से अनुरोध करूंगी कि घर का वातावरण बच्चों के लिए फ्रेंडली या कंफर्टेबल बनाए, ताकि बच्चा औरों से ज्यादा आप पर भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके और सारी बातें आपसे शेयर कर सके। बच्चे कभी कभी इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि वो खुद शर्म महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं और खुद भी समझें कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ये शारीरिक शोषण में बच्चों का कसूर नहीं होता है। चाहे बच्चे कैसे भी कपड़े पहने हों, कहीं भी जाए, किसी से भी बात करे, ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान का कसूर होता है जो ये गलत हरकत करता है। और साथ ही बच्चों को सिखाइए कि तब तक बच्चे ऐसी बातें बताने की कोशिश करते रहें जब तक कोई इंसान उनकी बात सुनता नहीं है, क्योंकि बहुत बार हम बड़े लोग बच्चों की बात सुनते ही नहीं और उनकी बातों को टाल देते हैं। बच्चे को सिखाइए कि तब तक बताते रहो जब तक कोई आपकी बात नहीं सुनता है, और अगर फिर भी कोई उनकी बात नहीं सुन रहा, बच्चों को सिखाइए कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 1098 जिसपे बच्चा खुद या कोई भी फोन कर सकता है और वहां से 1 घंटे के अंदर आपको मदद जरूर मिलेगी। और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

तो दोस्तों आगे कुछ चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं अपने आप को इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए। और बहुत बार हो सकता है बच्चे इन चीजों को रोक नहीं सकते क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, पर कुछ चीजें हैं अगर सावधानी बरतेंगे तो अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं। तो पहली बात, आपका बच्चा कभी भी किसी बड़े के साथ अकेला ना हो। कोशिश करें कि आपका बच्चा किसी पड़ोसी या अंकल के साथ अकेला ना हो, क्योंकि गलत करने वाला इंसान हमेशा इस मौके की तलाश में होता है। बच्चे को सिखाइए कि अगर कोई आपके बच्चों के साथ गलत करता है तो पहली चीज बच्चे को चीखना, चिल्लाना और वहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, अगर बच्चे ऐसा कर सकते हैं तो। अब अगर आपका बच्चा आपको बताता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो माता-पिता होने के नाते आपको क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों कई बार ये सब सुनकर समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माता-पिता अपने बच्चों की बात ध्यान से सुने। दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की बात को तसल्ली के साथ पूरी बात को सुने, बिना कोई सवाल किए, बीच में ना टोके, सवाल ना करें, क्योंकि जब तक आप पूरी बात नहीं सुनेंगे तो ये निर्णय नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में चाइल्ड अब्यूज था भी या नहीं। एक और बात, अगर आपने अपने बच्चों की बात सुन ली है तो प्लीज अपने बच्चे को यकीन दिलाइए कि वो अब सेफ हैं और आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। बच्चे को ये आश्वासन दिलाइए कि आपके बच्चे ने ये बात आपको बताकर बिल्कुल सही किया है, क्योंकि इस वक्त बच्चे डरे हुए होते हैं। आप उन्हें यकीन दिलाइए कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है आपको बताकर, और अगर आप उनके माता-पिता हैं तो उन्हें गले से लगा लें।

यकीन मानिए वे बहुत ही सुरक्षित महसूस करेंगे। और दोस्तों, बच्चों के सामने समाज के बारे में, भविष्य के बारे में प्लीज ये सारी बातें ना करें। माना कि आप माँ बाप हैं, आपको चिंता है, भविष्य के लिए डर है, पर बच्चे के सामने ये सब ना बोलें, क्योंकि वे ये सब सुनकर उन्हें लगेगा कि उनसे कुछ गलत हुआ है और हो सकता है वो कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। बच्चे अगर काफी छोटे हैं तो वे कॉन्फिडेंस लूज करेंगे और अपने आप को गिल्टी फील करेंगे। और एक बात का ध्यान रखें, बच्चे को उस इंसान का सामना करने की या उस इंसान से मिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, ऐसा करने से बच्चा बहुत डर सकता है। माना कि उस इंसान से अपने बच्चे को दूर रखना मुश्किल हो सकता है अगर वो आपका रिश्तेदार हो, घर में उठने बैठने वाला व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी अच्छा ये होगा कि आप ऐसे इंसान से सारे रिश्ते नाते तोड़ दें। आप खुद सोचिए कि आपके साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आप ऐसे इंसान से मिलना चाहेंगे? तो आपका बच्चा उस इंसान से क्यों मिले? सोचिए क्या असर पड़ेगा उस बच्चे पर, और आप खुद सोचिए कि आपके लिए कौन ज्यादा महत्व रखता है, वो गलत करने वाला इंसान जो शायद आपका रिश्तेदार है पर उसने रिश्तेदारी तो नहीं निभाई, या आपका बच्चा? जी हाँ दोस्तों, आपका बच्चा आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसकी परवरिश ज्यादा महत्व रखती है। और साथ में आप 1098 कॉल करिए, ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, वो आपकी मदद करेंगी कि आपको अगला कदम क्या उठाना चाहिए, कैसे आपके बच्चे को काउंसलिंग मिलनी चाहिए और क्या कदम उठाएं कि गलत करने वाले व्यक्ति को सजा मिल सके। और ये बहुत जरूरी है कि आपके बच्चे को न्याय मिले और वो इंसान किसी दूसरे बच्चे को शिकार ना बनाए।

दोस्तों, आज हर दूसरा बच्चा शारीरिक शोषण या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का शिकार है। चुप रहने से या इसे इग्नोर कर देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। तो अगर आपके साथ या आपकी जानकारी में किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो प्लीज चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में कॉल करें और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को फैलाएं।

0: तो श्रोताओं, आशा करती हूँ आज के कार्यक्रम से आप जागरूक हुए होंगे।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमारी पेड़ियाँ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के एक बजने को है, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। लोकसभा ने इसे आज मंजूरी दी। राज्यसभा ने सोमवार को इस विधेयक को पारित किया था। इस बीच संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन, चर्चा, संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों और हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को एक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायालय की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के पद से इस्तीफा देने मात्र से कथित बेहिसाब संपत्ति के मामले में उसकी आपराधिक जवाबदेही समाप्त नहीं हो जाती। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दो सप्ताह से अधिक समय तक जारी रहने के बाद ही राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मुसलसल बारिश की वजह से अमरोहा में तिगरी गंगा का पानी की सतह बढ़ गई है, जिसकी वजह से घाटों में पानी भर गया है। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने आज से 9 अगस्त तक मशरकी उत्तर प्रदेश में कुछ मकामात पर मूसलाधार बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुईं।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रही हैं। दिन के 1:15 हो रहे हैं। अब हमारी बहनें सुनें अपना कार्यक्रम घर संसार।

हारे से मिलने चले आते हैं घर संसार कार्यक्रम के माध्यम से। और बहनों, तुम सब ये भी जानो हो कि आज है 7 अगस्त और आज के दिन हम मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों के योगदान का सम्मान करना, उनकी आजीविका को बढ़ावा देना, साथ ही हाथों द्वारा बनाए कपड़े को बढ़ावा देना है और उनको प्रोत्साहित करना है। और जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ जाए कि हथकरघा में हाथों से कपड़ा बुनना होता है। और हम थारे को बताए दें कि हाथों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ, कलात्मक और पारंपरिक पहचान लिए हुए हैं बहनों। और हमारे बुनकर हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए हैं। साड़ियां, दुपट्टे, गमछे, शॉल, इन सभी वस्त्रों को हाथों से हमारे बुनकर तैयार करते हैं और देश की कला और अर्थव्यवस्था, इन दोनों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो बहनों, जब हमारे बुनकर कड़ी मेहनत कर हमारी भारतीय संस्कृति की विरासत को बचाए रखने में अपना पूरा पूरा योगदान दें, तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम हथकरघा उत्पादों को खरीदें, साथ ही उपहार स्वरूप भी हम उन्हें भेंट करें, क्योंकि इससे हमारी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं हमारे बुनकरों को समर्थन मिलता है। तो इसलिए हम उनको उपहार के रूप में भेंट करें, उनका समर्थन करें, तभी हम सच्चे अर्थों में अपने देश की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि ये हथकरघा द्वारा जो बनाए गए वस्त्र होते हैं, जैसे साड़ी है, दुपट्टा है, गमछे हैं, शॉल हैं, ये हमारी आन बान शान है। क्योंकि हमारे देश के जब ये बने हुए होते हैं, अब इन्हें हम अगर भेंट करते हैं, इन्हें हम अपने जरूरत में उपयोग में लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की शान बढ़ती है। तो हमें इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में लोकल ही खरीदना चाहिए, जिससे हमारे देश की उन्नति हो। तो बहनों, आप सभी को हथकरघा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बढ़ते हैं आगे और सुनवाते हैं आपको कुछ जरूरी संदेश।

0: इन संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम घर संसार में। और बहनों, इन दिनों हम मना रहे हैं स्तनपान सप्ताह, जो कि हर बार 1 से 7 अगस्त तक मनाया जावे है। और उद्देश्य यही कि स्तनपान के महत्व को जाने, जागरूक करें औरों को, और नवजात शिशु के बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देवे। और तुम सभी जानो कि जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध, जिसे हम कोलेस्ट्रम कह दें, ये बहनों शिशु के लिए अमृत के समान होता है। और ये दूध बच्ची की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो आइए कुछ इसी संदर्भ में थारे को सुनवाते हैं भेंटवार्ता। स्तनपान का महत्व इस विषय पर डॉक्टर जयवंती से जानकारी लेते हैं। आपसे भेंट कर रही है हमारी बहन नीतू अग्रवाल। तो आइए सुनते हैं ये जानकारी, स्तनपान का महत्व।
1: बहनों, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। क्यों जरूरी है स्तनपान, और माँ और शिशु दोनों की सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं बाल चिकित्सक डॉक्टर जयवंती। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्ते,
1: आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। स्तनपान क्यों करवाना चाहिए, और ये माँ और बच्चे दोनों के लिए कितना लाभकारी है?
2: देखिए, स्तनपान जो होता है वो अमृत समान होता है। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ही लाभ इसका प्राप्त होता है। जो बच्चे होते हैं उनको अच्छे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स जो भी चाहिए

0: वो सब मिलते हैं इसमें। फ्यूचर में जैसे बच्चों को डायबिटीज, हार्ट की जो बीमारियां होती हैं वो कम होती हैं, ब्लड कैंसर भी कम
1: जी
0: होने की संभावना रहती है। और माँ को जो इसका लाभ मिलता है, माँ को भी स्तन और ओवेरियन जो कैंसर होते हैं वो भी कम होते हैं, जो माँ अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाती हैं 6 महीने तक। और
1: जी
0: माँ में जो खून, जो पोस्टपार्टम हिमरेज जिसको हम बोलते हैं आफ्टर डिलीवरी, वो भी काफी कम हो जाता है।
1: जी स्तनपान करवाने से कितनी देर बाद माँ को स्तनपान शिशु के लिए शुरू कर देना चाहिए?
0: 1 घंटे के भीतर ही बच्चे को स्तनपान शुरू कर देना चाहिए, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है। जो शुरुआती पीला गाढ़ा दूध जिसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए शुरुआती जो दूध होता है वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए।
1: जी, और डॉक्टर साहब, अगर जैसे ऑपरेशन से शिशु जन्मा है तो क्या तभी भी माँ सामान्य रूप से स्तनपान करवा सकती है?
0: बिल्कुल, माँ को 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना चाहिए। अगर माँ का ऑपरेशन जो है वो बेहोशी में हुआ है, तो जब तक माँ सतर्क ना हो तब तक
1: जी
0: स्तनपान ना करें। जैसे ही माँ सतर्क होती है, अपने होश में आ जाती है, तो स्तनपान कराना शुरू कर दें।
1: जी डॉक्टर साहब, अच्छा, नवजात को कितने घंटे के अंतर से स्तनपान करवाना चाहिए? जैसे कहा जाता है कि जब बच्चा रोए तभी दूध पिलाना चाहिए।
0: बच्चे को 24 घंटे के भीतर 10 से 12 बार स्तनपान कराएं। यूजली जो बच्चे हैं वो 2 से 3 घंटे में दूध की डिमांड करते हैं और तब उनको दूध पिलाया जाता है।
1: जी
0: अगर कोई बच्चा प्रीमेच्योर हुआ है, जो जिसका वजन कम है, वो बच्चे दूध की डिमांड नहीं करते हैं। तो ऐसे
1: जी
0: में बच्चे को ऐसा नहीं कि सोते रहने दें आप, बच्चे को 3 घंटे के बाद स्तनपान करा दें। और अगर बच्चे का वजन ठीक है, बच्चा पूरा मेच्योर हुआ है, तो बच्चा ऑन डिमांड फीडिंग कर सकता है, जब भी वो मांगे माँ उसको दूध पिला दे। पर 4 घंटे से ज्यादा नवजात शिशु में वेट नहीं करना चाहिए, 4 घंटे के भीतर बच्चे को दूध पिला दे।
1: जी ऐसा नहीं कि बच्चा रोए नहीं तो दूध ना पिलाया जाए,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: बिल्कुल,
1: बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो सोते ही रहते हैं,
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल।
1: ना? अच्छा, अगर माँ को कोई बीमारी हो तो क्या वो स्तनपान करवा सकती है?
0: बिल्कुल, माँ स्तनपान ना छोड़े अगर माँ बीमार भी हो। इसमें ये है कि माँ से बच्चे में कुछ एंटीबॉडीज आती हैं जब माँ बीमार होती है, तो इससे
1: जी
0: बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। माँ अपना हाथ धुलती रहे जब भी बच्चे को छुए, मास्क का इस्तेमाल कर सकती है अगर माँ को कुछ खांसी जुकाम है, और जो भी माँ का इलाज चल रहा है वो अपना इलाज जारी रखे और दूध बच्चे को केवल अपना ही पिलाए।
1: जी जैसे अगर एड्स वगैरह ऐसी कोई परेशानी है, दूध
0: अगर, हाँ
1: पिलाना
0: जी
1: जारी रखें?
0: बिल्कुल, इसमें ये है कि अगर माँ को जैसे टीबी की बीमारी है, तो माँ का इलाज चल रहा है तो साथ में बच्चे को अपना दूध पिला ले, मास्क का इस्तेमाल करे और अपने हाथ धुले और बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। अगर माँ हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव है, तो भी माँ अपना दूध पिला सकती है। उसमें ये वायरस दूध के जरिए से नहीं फैलता है। HIV अगर माँ पॉजिटिव है और उसके टाइटर्स भी उसके हाई हैं, तो फिर दूध ना पिलाए, क्योंकि HIV का जो वायरस है वो माँ के दूध में मिलता है, जिससे बच्चे को भी HIV होने की संभावना होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारी बहनों को कि अगर माँ को कोई भी समस्या है, कोई बीमारी है, तो भी वो मास्क लगाकर बच्चे को स्तनपान करवा सकती है।
0: बिल्कुल
1: और अगर बच्चे को कोई, जैसे छोटे बच्चे को पेट की समस्या हो जाती है, कोई तबीयत खराब है, तो बच्चे को स्तनपान करवा सकती है?
0: बिल्कुल, बच्चे को माँ अपना ही दूध पिलाए, स्पेशली बीमारी में। जैसे बच्चा अगर दूध डायरेक्टली माँ की छाती से ना पिए, तो माँ उसको कटोरी में निकाल के और चम्मच से बच्चे को पिला सकती है, पर दूध पिलाना ना छोड़े कि बच्चा बीमार है या सुस्त है, नहीं पी रहा है, तो ऐसे में स्तनपान ना छोड़े बिल्कुल भी, स्तनपान कराती रहें अपना।
1: जी डॉक्टर साहब, और जैसे आपने कहा कि बच्चे को आप कटोरी में दूध लेके पिला सकते हो, तो बहुत बार होता है कि समय पूर्व बच्चा जन्मा या उसे जन्म से कोई परेशानी है और उसे माँ से दूर रखा जा रहा है, कहीं किसी और जगह, अस्पताल में या कहीं भी, बच्चा माँ से दूर है, तो फिर स्तनपान कैसे कराया जा सकता है? और उसमें क्या माँ के दूध को फिर बोतल में भर के, किसी भी बर्तन में भर के, हम कब तक स्टोर किया जा सकता है?
0: देखिए, अगर बच्चा माँ से दूर है, अस्पताल में भर्ती है, तो माँ अपना दूध को निकाले, कटोरी में निकाल ले या बोतल में रख ले, वो सामान्य तापमान पर 4 घंटे के लिए रख सकती है और वो सही रहता है। अगर फ्रिज में रखा हुआ दूध है, तो वो

0: के लिए ठीक रहता है। अगर पूरा वो जमा हुआ दूध है फ्रीजर में आपने रखा है तो वो दूध 6 महीने तक सही रहता है, तो उसका उपयोग करा जा सकता है। आजकल जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, उसमें ह्यूमन मिल्क बैंक भी खुले हुए हैं, जिसमें कई माएं अपना दूध डोनेट कर देती हैं, जो कि काम आता है, जो बच्चे अस्पताल में भर्ती होते हैं उनके काम में आ जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, अच्छा आजकल एक धारणा सी बनती जा रही है कि स्तनपान करवाने से माँ की जो शारीरिक बनावट है उसमें अंतर आता है, इस पर आप क्या कहेंगे?
0: बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सुंदरता में कुछ फर्क पड़ जाता है या फिर कुछ मोटापा ज्यादा हो जाता है अगर आप अपना दूध पिलाते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है इसमें, ये बल्कि ये है कि जो माएं अपना दूध पिलाती हैं उनका वजन बहुत तेजी से घटता हुआ देखने को हमें मिलता है। एक जब तक बच्चा 1 साल का होता है माँ का
1: जी
0: वजन कम होता है और वो मोटापे की शिकार भी बहुत कम होती हैं जो महिलाएं केवल अपना दूध पिलाती हैं बच्चे
1: देखो,
0: को।
1: जब माँ अपना दूध पिलाती है तो माँ के दूध के साथ घुट्टी, शहद, ग्राइप बाटर, पानी ऐसा कुछ दे सकते हैं या सिर्फ माँ के दूध पर बच्चे को रखना चाहिए?
0: सिर्फ बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए, ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा ये घुट्टी शहद या कुछ और चीज या निप्पल बच्चे को आपने पेसिफायर दे दिया तो वो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं।
1: और अगर किसी कारणवश माँ को दूध नहीं आ रहा, कम आ रहा है कि बच्चे का पेट नहीं भर पा रहा है, तो आप बताएंगे कि माँ किस प्रकार का अपना खान पीन करे पहले तो, कि क्या आप उसको दवाइयाँ देते हैं, किस प्रकार से माँ अपना दूध बढ़ा सकती है?
0: देखिए, पहले तो हम कोशिश करेंगे माँ का दूध अगर कम है तो माँ का दूध बढ़ाया जाए, बेहतरी इसी में है कि माँ का दूध ही हम बढ़ाएं। इसमें माँ का जो खान पान है वो पूरा बैलेंस डाइट खाए, ऐसा नहीं कि दूध नहीं पी रही है, चाय पी रही है या फिर ऑपरेशन हुआ है ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल बैलेंस डाइट खाए, खूब प्रोटीन रिच डाइट ले जिसमें दालें हो गई और प्रोटीन में एग या फिर कुछ जो भी

गिरियाई कारी पैतरिया, बरसे आधी रात बरसे आधी रात। जी हाँ बहनों, अभी आपने प्यारी सी मधुर सी आवाज यानी नयन तारा की आवाज में सुना ये प्यारा सा सावन गीत। सच बहनों मजा आ गया, और अपनी परंपरा अनुरूप वर्षा गीत वाकई में सभी को अपनी ओर खींचे है। और देखो, हम महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कार्यक्रम के शुरू में यानी हथकरघा के विषय में, तो क्यों ना आज हम थोड़ी सी बात इस विषय पर भी कर ले कि रोजगार किस तरह से आप अपने घर पर कर सके हैं। क्योंकि अगर रोजगार हम अपने घर पर करते हैं तो आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में हमारी बहनें अपना पूरा सहयोग दे सके हैं। तो चलिए बहनों, थारे से बात करते हैं आज घर के रोजगार के संदर्भ में, क्योंकि ये हम सभी का कर्तव्य बने हैं कि अपने परिवार को खुशहाल रखा जाए। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसमें पूरा पूरा सहयोग दिया जावे, क्योंकि जब बच्चे हमारे साथ होते हैं तो उनका दायित्व, उनकी पूरी जिम्मेदारी हम सभी को निभानी होती है। गाड़ी के दोनों पहिए यदि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा परिवार खुशहाल रूप से आगे बढ़ता है। अब बात यह आती है कि हमारी बहनें कौन कौन से ऐसे कार्य कर सकती हैं घर पर रह करके, जिससे उन्हें कोई परेशानी भी ना हो और आर्थिक रूप भी से भी मजबूत हो, साथ ही आराम से वो कार्य कर सकें। तो जैसे सिलाई कढ़ाई, अगरबत्ती बनाना, पापड़ अचार, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, ट्यूशन और हस्तशिल्प, ये सब कार्य हमारी बहनें घर पर रह करके बहुत अच्छे से कर सके हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके। लेकिन बात यहीं आके ना रुक जावे, इसके लिए हमारी बहनों को अपना कौशल भी पहचानना होगा, उसके लिए प्रशिक्षण भी लेना होगा। चाहे छोटी पूंजी से शुरुआत करें, पर अपनी रुचि को बहनों जरूर पहचानें, क्योंकि अगर अपनी रुचि के अनुसार आप व्यवसाय करती हैं तो उसे आगे बढ़ाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो आपकी रुचि का है, उसे आप शौक से कर रही हैं, तो उसे ही उस रोजगार को चुने। साथ ही प्रचार के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय बाजार का भी सहारा लें। और ध्यान रखें बहनों कि काम छोटा नहीं होता, मेहनत और सीखने की इच्छा हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसीलिए हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना रोजगार करना चाहिए और अपने परिवार में आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए। तो बहनों ये तो थी थोड़ी सी अपने घर में रोजगार कैसे करें। और अब देखो घड़ी की सुइयां हमसे कहवे की और बात ना, लेकिन चलने से पहले थारे को बतावेंगे अपना पता। तो पता नोट करें, कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र देशा का आकाशवाणी निजी बाबाद, पिन 2467633। तो बहनों इस पते पर जरूर चिट्ठी पत्री डालियो, क्योंकि थारी चिट्ठी पत्रियों के माध्यम से ही हम थारे अनुरूप इस कार्यक्रम को बना पावे हैं। और साथ ही हमारा उत्साह भी तो बढ़े कि हमारी बहनें हमें चिट्ठी लिख रही हैं, और साथ में हमें ये पता चले है कि हमारी बहनें इस कार्यक्रम को पसंद कर रही हैं। लेकिन कंजूसी बहुत करो हो आप, तो हम बार बार यही कहेंगे कि चिट्ठी पत्री जरूर डालो, और हम तक पहुंचे तो हम थारी चिट्ठियों के साथ आपके जो सुझाव हैं उन्हें पढ़ें, और आपको भी खुशी और हम भी खुश। तो आप अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहन अंजना को दे अनुमति। बहनों राम राम।

अभी हमारी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 1:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक धारा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र सिंह चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत जौनसारी लोकगीत, और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र सिंह चौहान के गाए जौनसारी लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम के साथ जो है और उसके बाद उन्हें बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली

0: बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
1: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परम्परा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आंकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: में कितना बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, की एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरल

0: माहे दक्षिण आंध्री कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.5 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिड्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखेर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते

0: आता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है मावली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि मावली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम मावली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व तो नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं। हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के बाहर एक बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओं, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच मावली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। मावली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
2: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल

0: पहले वे सोचने लगीं,
1: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
2: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ।
0: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
0: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
0: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
2: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
0: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
3: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
0: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
2: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
0: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
3: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
0: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
0: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
3: नाना जी पुरातत्वेता किसे कहते हैं?
2: हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
4: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है, देखो पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
3: अच्छा,
4: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
2: मामा जी।
5: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: अच्छा अच्छा, तो ये बात है, आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
5: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष?
5: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है, इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे, हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
5: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा,
5: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है, हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
5: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है, उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारी

0: जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा,
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख? अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, आपको एक बार फिर से याद दिला दी हम आज के विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। आज रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा और 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब यहीं पर समाप्त होते हैं। शाम 5 बजे अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। नमस्कार श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नजीबाबाद और मैं हूं आपका रेडियो साथी राजवीर सिंह और आप सुन रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। साथियों, जब भी हम एक उन्नत और विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो हमारे दिमाग में तकनीक, बुलेट ट्रेन और ऊंची ऊंची इमारतें आती हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक घर के बुजुर्ग सम्मान और आत्मनिर्भरता से ना जिए। श्रोताओं, जिस समाज में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं वही देश असल मायने में तरक्की करता है। आज भारत सरकार भी बुजुर्गों के इसी सपने को सच करने के लिए कई बेहतरीन कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी दो बड़ी योजनाओं की जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों का सहारा बन रही हैं और सबसे ज़रूरी बात ये कि इन योजनाओं का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, इस बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए पहले बात करते हैं एक बिल्कुल आधुनिक और नए ज़माने की पहल की और इसका नाम है सेज, यानी सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। श्रोताओं, इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आज के समय में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे काम के सिलसिले में दूसरे शहरों या फिर विदेशों में रहते हैं, जिस वजह से उन बुजुर्गों को अकेले रहने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे दवाइयाँ मंगवानी हो, डॉक्टर्स के पास जाना हो या घर की साफ सफाई और घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी हो। सेज योजना इसी का एक समाधान है। इस योजना के तहत सरकार एक ऐसा वन स्टॉप पोर्टल बना रही है जहां बुजुर्गों की ज़रूरत के उत्पाद और सेवाएं एक जगह पर मिल सके। सरकार उन स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है जो बुजुर्गों के अनुकूल व्हीलचेयर, स्मार्ट हेल्थ गैजेट्स या उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए विशेष परामर्श सेवाएं तैयार करते हैं। अगर आप एक बुजुर्ग हैं या फिर आपके घर में वरिष्ठ नागरिक हैं जिन्हें इन आधुनिक सेवाओं की ज़रूरत है, या फिर आप एक स्टार्टअप हैं जो बुजुर्गों की ज़रूरत के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपको सेज के आधिकारिक पोर्टल जो है sage.dosje.gov.in पर आपको जाना होगा और यहाँ बुजुर्ग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रजिस्टर्ड स्टार्टअप की सेवाएं चुन सकते हैं। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मुख्य वेबसाइट पर जाकर भी इसकी पूरी जानकारी ली जा सकती है, पूरी डायरेक्टरी आप देख सकते हैं वहाँ पर। श्रोताओं, तकनीक का ऐसा प्रयोग जो अपनों की परवाह करे, यही तो है हमारे सपनों का उन्नत भारत, है ना? श्रोताओं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। बढ़ती उम्र के साथ जब उन्हें देखने, सुनने या फिर चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है तो अधिकतर पैसों की कमी के कारण वे अपने लिए ज़रूरी उपकरण भी नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे ही बुजुर्गों के लिए एक बेहद कल्याणकारी योजना है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को चलने के लिए बैसाखी, व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, कानों के लिए सुनने वाली मशीन, आँखों के लिए चश्मा और कृत्रिम दांत जैसी चीज़ें मुफ्त में दी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस योजना का लाभ हमारे गरीब बुजुर्ग लोग कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए पहली शर्त तो ये है कि बुजुर्ग की आयु जो है वो 60 वर्ष या फिर उससे ज़्यादा हो, यानी 60 वर्ष से कम ना हो। दूसरी शर्त ये कि वे गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL श्रेणी में आते हों या फिर उनकी मासिक आय बहुत ही सीमित हो, जैसे कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन मिलती हो उसके रूप में जो बनती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 46,080 से कम है अगर वार्षिक आय की बात करें। और अब बात अगर करें ज़रूरी दस्तावेज़ों की, तो आवेदन के लिए बुज़ुर्गों का आधार कार्ड,
आयु प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट और बीपीएल कार्ड या फिर आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। साथ ही एक पासपोर्ट साइज का फोटो और मोबाइल नंबर होना भी जरूरी है। अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे करें। तो साथियों, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम की आधिकारिक वेबसाइट ALIMCO.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC या ज़िला समाज कल्याण कार्यालय में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। इसके बाद सरकार द्वारा जगह जगह स्थानीय शिविर लगाए जाते हैं, जहां पर सभी आवेदकों को पूर्व में ही सूचना दे दी जाती है और वहीं पर उन्हें सहायक अंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो साथियों, सेज योजना जहां तकनीक से बुजुर्गों का भविष्य संवार रही है, तो वहीं राष्ट्रीय वयोश्री योजना समाज के कमज़ोर बुजुर्गों को सीधा सहारा दे रही है। लेकिन उन्नत भारत का यह सपना तभी पूरा होगा जब हम और आप जागरूक होंगे। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे इन उपकरणों की ज़रूरत है, तो कृपया करके उसे इन यंत्रों का लाभ दिलाने में, उनका रजिस्ट्रेशन कराने में उनकी मदद कीजिए और उनकी दुआएं लीजिए, क्योंकि बुज़ुर्गों की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 5:10 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

संसद समीक्षा रात 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद पेश किया जाएगा रात 9:30 पर। रात के हम सफर फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर। किसान भाइयों की खेती और पशुपालन संबंधी समस्याओं पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान पेश किया जाएगा शाम 6:05 पर कृषिगत कार्यक्रम में। और इन दोनों ही फोन इन कार्यक्रम में से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स 9457078288 और 01341230105 पर। आज शाम 7:32 पर सुगम संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात। विविधा के अंतर्गत हुनरबाज श्रृंखला में आज शाम 6:45 पर आप सुनेंगे हमारे प्रतिभाशाली मेहमान पंकज लोचन गोस्वामी से शोभित शर्मा की बातचीत। और हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:15 पर। तो श्रोताओं ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। और अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर।

राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती कल रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस सप्ताह संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा कल रात 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इस सप्ताह विधानमंडल में हुई कार्रवाई की समीक्षा हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल रात 8:20 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर सुनिएगा सुमन कल्याणपुर के गाए भजन। विविध क्रम में कल शाम 6:45 पर अपर्णा चौहान की वार्ता का विषय होगा भारत के इतिहास में काल विभाजन का प्रश्न। कल कृषिगत कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 6:05 पर क्रम रहेगा हेलो लोकमंजरी। हमारे युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी पेश किया जाएगा कल शाम 5:15 पर। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में कल शाम 5 बजे श्रोताओं

जानकारी देंगे। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों, व्यापारियों और स्वनियोजित के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में, सुमित्रा रावत और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। लोक संगीत के एक अन्य कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत कल प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे विविध कलाकारों की आवाजों में रोहेलखंडी लोकगीत। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल प्रातः 9:15 पर। ज्ञान, मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ की सजीव प्रस्तुति होगी कल प्रातः 7:31 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव आप सुनेंगे कल दोपहर 12:05 पर। महिला जगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल अपराह्न 1:15 पर। फिल्म संगीत आप हमारे केंद्र से सुन सकते हैं कल प्रातः 8:45 पर गोल्डन हिट्स में। 10:00 गीत तुम्हारे कार्यक्रम में। पूर्वाहन 11:00 चित्रपट संगीत के अंतर्गत। दिन में 2:30 पर एक ही कलाकार क्रम में। शाम 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत के अंतर्गत और कल रात 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के 5:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: विश यू अ वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में और मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त उज्मा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ यूसुफा जैरी। और हाँ, क्या जोश बरकरार है ना, क्योंकि ज्यादातर तो ये हो रहा है कि 15 अगस्त की तैयारी में सभी लोग जो है नगमे और जी स्पीचेस की प्रैक्टिस करते करते अपने गले को खराब करे बैठे हैं। जैसे कि उज्मा की आवाज से आपको अंदाजा हो ही रहा
0: मुझे
1: होगा।
0: लग ही रहा था यूसुफा कि तुम कोई ना कोई टॉन्ट मेरे ऊपर जरूर कसोगी, और ये लो आपने कर ही दिया।
1: खैर उज्मा, इस बात को हम बाद में डिस्कस करते हैं, फिलहाल अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या है।
0: बिल्कुल, तो दोस्तों जैसे कि आज है फ्राइडे।

0: स्टोरी में आज का आखिरी एपिसोड लव स्टोरी का, और देखेंगे कि अंजाम आज की मोहब्बत क्या क्या होगा, कि क्या किसी को कोई मिल गया या फिर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
1: बिल्कुल, या फिर इस स्टोरी का कुछ और ही एंड होगा। लेकिन अगर आपको जानना है कि स्टोरी में, यानी कि लव स्टोरी में आखिर क्या होने वाला है, तो उसके लिए तो आपको लव स्टोरी का ये लास्ट एपिसोड सुनना ही पड़ेगा ना।
0: जी, और इसी के साथ आज आप सुनेंगे आपका सितारा सेगमेंट, जिसमें होगी राशि की मानवी से बातचीत।
1: और ये दोनों क्या बातें करेंगे, ये भी सुनने के बाद ही पता चलेगा। और आज है एक और खास प्रोग्राम जिसका नाम है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें आज आप सुनेंगे प्रीतिलता वाडेदार के बारे में।
0: मगर उससे पहले हम आज से पूछते हैं एक सवाल, क्योंकि सेगमेंट है बूझो तो जाने का
1: बिल्कुल,
0: सवाल।
1: और सेगमेंट है बूझो तो जाने, तो आपसे कुछ ना कुछ तो पूछना पड़ेगा ही ना। तो दोस्तों, आज बूझो तो जाने के अंतर्गत हमारा आपसे सवाल है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? और इसका सही जवाब आपको देना है हमारे
0: फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर, तो तब तक आप भर दीजिए उस कमेंट सेक्शन को फुल, और हम आपको एंजॉय कराते हैं आज की शाम की ये खूबसूरत गजल, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नवा।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोटपोट,
2: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
3: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
4: जी हाँ, मजा आ गया।
5: पूरे दिल में इसके तो भाई धुआं ही धुआं भरा।

0: पता नहीं क्या ही फूका इस इंसान ने। अरे नर्स जरा मुझे कैची तो उठा के दो।
1: सर आप ठीक तो है ना?
0: हाँ ठीक हूँ, और क्या इसमें मैं तुम्हें खराब लग रहा हूँ क्या कुछ?
1: लेकिन सर आप इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसे हंस कैसे सकते हैं?
0: अरे भाई तुम भी हंस सकती हो, तुम्हें किसी ने मना थोड़ी करा है।
1: सर ये हार्ट सर्जरी चल रही है, ओपन हार्ट सर्जरी, और सर आप हंस रहे हैं।
0: हाँ मैं हंस रहा हूँ क्योंकि हंसना अच्छी बात है, आप भी हंसो।
1: लगता है सर आपने ना बंक मार लिया होगा जिस दिन आपकी ये वाली क्लासेस हुई होंगी।
0: बंक मार लिया होगा? कैसी उठपटांग बातें कर रही हो आप?
1: तो सर आप इतना हंस क्यों रहे हैं?
0: अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, पहली बार मौका मिला है दिल खोल कर हंसने का।
2: जी हाँ मजा आ गया।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: दोस्तों आज है 7 अगस्त और आज पूरे देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है।
0: इस दिन का मकसद है हमारे देश के लाखों हाथ से काम करने वाली कारीगरों की मेहनत, कला और उनके योगदान का सम्मान करना। हाथ से बुने हुए कपड़े सिर्फ पहनने की चीज नहीं, वो एक स्वभाव है बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और कारीगरी की पहचान है। और वो ही होता है कि ये होता है ना कि अगर हमें कोई एक स्वेटर बुन के देता है तो फिर हमें उसके पीछे बहुत सारी यादें रह जाती हैं, है ना?
1: बिल्कुल, मुझे लग रहा है यूसुफा ने तो जरूर किसी न किसी के हाथ की बनी हुई स्वेटर जरूर पहनी है, क्यों यूसुफा?
0: बिल्कुल।
1: और हम ये जो हमारी आज है हमारा जो हैंडलूम डे है, इसमें जो ये हमारे कारीगर अलग अलग इतने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से कपड़े बनाते हैं, जैसे बनारसी सिल्क, चंदेरी, काजीवरम और पश्मीना और अन्य हैंडलूम वस्त्र दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान रखते हैं, है ना यूसुफा?
0: बिल्कुल, जैसे कि बनारसी साड़ी हमारे यहाँ की इतनी फेमस है कि बिल्कुल बस क्या ही कह रहे उसके। तो 7 अगस्त दोस्तों, 7 अगस्त की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि देखिए कैलेंडर तो बहुत पूरा 12 महीने का भरा हुआ था, लेकिन हमने 7 अगस्त ही क्यों चूज किया? उसकी वजह है कि 1905 को ये शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर दिया, मना कर दिया कि जी हम तो आपका कोई सामान नहीं लेंगे, भारतीय हाथ से बने हुए कपड़े ही पहनेंगे। और उन्होंने ये संकल्प लिया कि हम अपने देश को सपोर्ट करेंगे।
1: बिल्कुल, और अपने ही देश में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि जब हम हाथ से बने उत्पाद खरीदते हैं तो हम केवल एक कपड़ा या एक चीज नहीं खरीदते बल्कि किसी बुनकर के परिवार के रोजगार और उनकी कला को भी समर्थन देते हैं।
0: तो दोस्तों आइए इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर हम सभी यह संकल्प ले कि जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, हाथ से बने भारतीय उत्पादों का ही अपनाएं और उन्हीं को यूज करें, और किसी को अगर गिफ्ट भी देना है तो वो ही दे।
1: बिल्कुल, क्योंकि जब हम हथकरघा अपनाते हैं तो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि अपने देश की कला, संस्कृति और लाखों बुनकर परिवारों की उम्मीद बनते हैं।
0: देखिए उनका घर भी तो इन्हीं चीजों से चलता है ना।
1: बिल्कुल वाकई,
0: फिर वो घर ही नहीं चलता, फिर उसमें वो प्रेम चलता है, वो जो प्रेम हमारे यहाँ से ट्रांसफर होके वहां जाता है, फिर वो ऐसे चलते चलते चलते पूरा साइकिल होता है, तो फिर हर तरफ जो है ना एक खुशी का माहौल होता है।
1: बिल्कुल, और एक कलाकार को हिम्मत मिलती है अपनी कला को और आगे बढ़ाने की।
0: जी, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट की हमारे देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है।
1: बिल्कुल, तो दोस्तों अब रुख करते हैं अपने अगले स्पेशल प्रोग्राम की ओर, यानी के 80वें स्वतंतरता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम की ओर, जिसका नाम है
0: मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इसके अंतर्गत हम आपको मिलाएंगे भारत की एक ऐसी वीरांगना से जिनके साहस और देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान से स्वतंत्रता संग्राम में
1: बिल्कुल इन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, आज हम बात होगी महान क्रांतिकारी प्रीतिलता वाडेदार की, और हम जानेंगे कि हमारे जो यूथ्स हैं यानी कि हम लोग हैं, आखिर हम इनके बारे में कितना जानते हैं।
0: उसी के लिए हम स्टूडियो से बाहर जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आखिर हमारे यूथ इन्हें कितना जानते हैं।
7: वेलकम बैक लिसनर, 80वें स्वतंत्रता दिवस के रन अप पर विशेष कार्यक्रम हाजिर है और मैं हूँ सुपर जैदी, मेरे साथ है उज्मा, और शुरू हो चुका है हमारा सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिस सेगमेंट का मकसद है कि हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपने युवाओं से जानकारी लेंगे, आखिर वो उनको कितना जानते हैं। जैसे कि आज हम

0: जानेंगे।
1: प्रीति लता वाडेदार, जी हाँ बिल्कुल, आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश की बहुत ही बहादुर बेटी, एक ऐसी वीरांगना जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में देश के सम्मान और आजादी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। प्रीति लता वाडेदार के बारे में,
0: तो उसी के तलाश में हम निकल पड़े हैं स्टूडियो से बाहर और ढूंढ रहे हैं अपने किसी साथी को कि आखिर वो जानते हैं प्रीति लता वाडेदार को या उनके बारे में कुछ भी।
1: और हमें हमारी एक प्यारी सी साथी मिल भी गई है, तो सबसे पहले उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इनके बारे में। हेलो, क्या आपके पास 2 मिनट है?
2: हेलो, है बिल्कुल है, बताइए।
1: क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम नेहा है।
1: नेहा जी, क्या करती हैं आप?
2: मैं स्टूडेंट हूँ।
1: स्टूडेंट है नेहा जी, क्या आप इतिहास में रुचि रखती है?
2: जी हाँ, थोड़ी बहुत रखती हूँ।
1: थोड़ी बहुत रखती है नेहा जी, क्या आपने प्रीति लता वाडेदार का नाम सुना है?
2: हाँ, मैंने नाम तो सुना है पर उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती मैं।
1: आपको क्या लगता है, क्या वो कोई खिलाड़ी थी, वैज्ञानिक थी या आजादी की लड़ाई लड़ने वाली थी?
2: वो तो स्वतंत्रता सेनानी थी, हमारे देश के लिए काफी उन्होंने कुछ किया है, मतलब लड़ाई की है अंग्रेजों से, वो थी।
1: बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों, हमें हमारी पहली ही ऐसी साथी मिल गई है जो हमारी जो स्वतंत्रता सेनानी है प्रीति लता वाडेदार, उनके बारे में उन्हें थोड़ी जानकारी है। और क्या जानती हैं आप उनके बारे में?
2: और तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती, बस उनका नाम और ये पता था कि वो स्वतंत्रता सेनानी है।
1: नेहा जी, क्या आप जानती हैं जो प्रीति लता जी थी, उन्होंने बहुत कम उम्र में, बहुत ज्यादा कम उम्र में देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है?
2: जी ये तो पता है, उन्होंने बहुत कम उम्र में दिया था बलिदान, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं पता कि मतलब कितनी कम उम्र थी, उनकी एज कितनी कम थी।
1: जी बिल्कुल, उनकी वाकई बहुत ही कम एज थी, उनकी एज सिर्फ 21 साल की थी। बंगाल की एक पढ़ी लिखी और बेहद साहसी लड़की थी वो। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ देश की आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और देश के लिए ना अद्भुत साहस दिखाया।
2: सच में ये जानकर तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है कि उन्होंने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है और इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम किया है उन्होंने।
1: बिल्कुल,
2: इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है हम आज जैसे युवाओं को।
1: तो मतलब किस तरीके की प्रेरणा हम उनसे ले सकते हैं, उनसे क्या सीख हम सीख सकते हैं?
2: हम उनसे काफी कुछ सीख सकते हैं, देशभक्ति, हिम्मत, और जैसे मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये सब उन्होंने मतलब अंग्रेजों से लड़ते टाइम अपने मतलब जो हिम्मत थी वो बिल्कुल नहीं हारी थी, तो हमें भी मुश्किल समय में बिल्कुल भी नहीं हिम्मत हारनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने जितनी भी बातें कही बिल्कुल सही कही, तो नेहा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: आपका भी शुक्रिया, थैंक यू।
1: अब बढ़ते हैं सेगमेंट में और आगे और मिलते हैं अपने और भी बहुत से दोस्तों से, और हमें हमारे एक साथी मिल भी गए हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम।
0: जी तो क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम सैफ है।
1: सैफ, क्या करते हैं आप?
3: मैं एक स्टूडेंट हूँ।
1: स्टूडेंट हैं।
0: तो सैफ आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में?
3: थोड़ी बहुत।
1: तो सैफ मैं आपके सामने एक नाम लेने जा रही हूँ, आप मुझे बताइएगा आप उन्हें कितना जानते हैं। सैफ आप प्रीति लता वाडेदार के बारे में जानते हैं?
3: नहीं।
1: नहीं जानते?
3: मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है।
1: चलिए कोई बात नहीं, पहली बार सुना है और हमें अपने दोस्तों से यही जानना है कि वो उनके बारे में कितना जानते हैं और जानते भी हैं या नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ, सैफ जो प्रीति लता वो सिर्फ 21 साल की और हमारे देश के लिए अंग्रेजों से लड़ने वाली बहुत ही कम उम्र की एक जो थी साहसी लड़की थी, हमारे देश की बेटी थी, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इवन उन्होंने अंग्रेजों के हाथों मरना भी पसंद नहीं किया था, अंग्रेजों के हाथों उन्हें मरना भी पसंद नहीं था, उन्होंने अपने प्राण खुद ही दे दिए थे। सैफ प्रीति लता जो थी वो चटगांव आंदोलन से जुड़ी हुई थी और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बहादुरी के कदम उठाए, उनसे लड़ी, हमारे देश की आजादी में योगदान दिया। आज के युवाओं को उनसे क्या सीखना चाहिए?
3: जहाँ तक मुझे लगता है हमें उनकी हिम्मत के बारे में सीखना चाहिए।
1: बहुत ही बेहतर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सैफ आप, हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे यही सीखना चाहिए कि कैसे अगर कोई मुश्किल घड़ी आए तो उसमें पीठ ना दिखाकर और उन मुश्किलों से डर के ना भागकर हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो सैफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू।
3: थैंक यू।
1: तो हमें हमारी एक और साथी मिल गई है और ये हमारी बड़ी क्यूट सी साथी है, तो जान लेते हैं, मुझे लगता है इनका नाम भी बड़ा क्यूट सा होगा, तो इनका नाम भी जान लेते हैं सबसे पहले। तो क्या नाम है आपका?
4: हिफ्जा।
1: हिफ्जा, हिफ्जा क्या करती हैं आप?
4: कॉलेज पढ़ रही हूँ।
1: वैसे जैसे मैंने कहा था नाम क्यूट होगा, नाम तो वाकई क्यूट है। आप कॉलेज जाती हैं?
4: जी।
1: हिफ्जा आप इतिहास में रुचि रखती हैं?
4: जी बिल्कुल।
0: तो आप प्रीति लता वाडेदार के बारे में क्या जानती हैं? सुना है आपने पहले कभी नाम?
4: सुना है मैंने इनके बारे में, और स्कूल में और कॉलेज में इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, मतलब
1: मतलब आप कहना चाह रही हैं कि स्कूल और कॉलेजेस में इनके बारे में अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए?
4: जी बिल्कुल
1: बिल्कुल। इफ्जा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इनके बारे में स्कूल और कॉलेजेस में बहुत अच्छे

0: बहुत इनकी जो है पूरी डिटेल्स बताई जानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हमें आजादी मिली है और हम हर जगह अपने देश में आजादी से घूम सकते हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: तो हिफ़्ज़ा, आपको क्या लगता है कि हमें अपने इन अपनी इस देश की बेटी से क्या सीखना चाहिए?
1: जो भी इन्होंने अपनी जिंदगी में कराया है हमें वे सभी सीखना चाहिए इनके बारे में, जो भी अपने देश के लिए करा है।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है, अपने जीवन में और हमारे देश के लिए जो योगदान दिया है, हमें वो सब बातें इनसे सीखनी चाहिए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: हिफ़्ज़ा, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
1: वेलकम। तो दोस्तों, ये तो था हमारा सेगमेंट मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें हमने बातचीत की आज अपने दोस्तों से प्रीतिलता वाडेदार के बारे में, और उनसे जाना कि आखिर उनको कितना ज्ञान है इस बात का। देश तो आज़ाद हो गया, और आज़ाद कराने वाले जो लोग हैं, जो उसमें सहयोगी हैं, वो उनको कितना जान पाए हैं या नहीं जान पाए हैं वो तो हमने जान लिया। ऐसे ही हम फिर कल हाजिर होंगे इसी सेगमेंट के साथ, एक दूसरे स्वतंत्रता सेनानी के नाम के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम युवा।
0: तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आपका सितारा, और जिसमें आज आप सुनेंगे स्टूडियो में आमंत्रित प्रतिभाशाली युवा से उनकी प्रतिभा के विषय में बातचीत। जी हाँ, आज आप सुन सकेंगे और हम भी आपके साथ में सुनेंगे राशि की मानवी सागवान से बातचीत। तो चलिए आइए सुनते हैं।
2: दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और कहते हैं ना, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी राशि त्यागी, और दोस्तों आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट आपका सितारा। कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाते हैं उन सितारों को जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और ज्ञान से एक अलग ही पहचान बनाई है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी प्रतिभाशाली युवा मौजूद हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो धीरे धीरे आपको सुनने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं उनसे उनका नाम। आपका नाम?
3: मेरा नाम मानवी सांगवान है, मैं जनपद मेरठ के गाँव कलंजरी से संबंध रखती हूँ।
2: अच्छा मानवी, आपने ऐसा क्या अचीव किया है जिसे हम अपने दोस्तों से कह सकें कि मानवी ने ये अचीव किया है?
3: जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैं रिसर्च कर रही हूँ एक माइक्रो एल्गी पे, जिसका नाम है स्प्यूरिलिना, जिसके अंदर हमारे जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो उनको कंज्यूम करके जो हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं साइंस के हेल्प से जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ।
2: अच्छा मानवी, आप स्कूलिंग कहाँ से हुई है?
3: मेरी स्कूलिंग BIT ग्लोबल स्कूल से हुई है।
2: अच्छा, ये मेरठ में बताया आपने?
3: जी, NH 58 पे।
2: तो उसके बाद आपने क्या क्या किया है कि आप इस रिसर्च के क्षेत्र तक पहुंच पाई?
3: 12th तक मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं रिसर्च में जाऊंगी। मेरा जो इंटरेस्ट था वो टीचिंग में ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं टीचर बनूंगी, क्योंकि मेरे सराउंड में जो मेरी टीचर्स हैं या मेरी फैमिली में भी बहुत सारे टीचर्स हैं, तो उन्हें देख के मुझे उसी चीज़ के लिए मोटिवेशन मिलती थी।
2: अच्छा, तो मानवी आपकी स्कूलिंग तो हो गई, उसके बाद आपने क्या किया है? मतलब आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है या फिर आप अभी क्या कर रही हैं?
3: मेरी ग्रेजुएशन मेरठ कॉलेज से हुई है, जो मैंने मेरे पास सब्जेक्ट्स थे केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जूलॉजी। मैंने ये सब्जेक्ट इसलिए चूज़ किए क्योंकि तब तक मुझे क्लियरेंस नहीं थी, मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी सभी सब्जेक्ट्स को, सभी फील्ड्स को, इक्वलर इंटरेस्ट कहाँ है।
2: अच्छा, तो फिर उसके बाद आपको फिर इन तीनों सब्जेक्ट्स में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा सब्जेक्ट लगा, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में?
3: बॉटनी हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। प्लांट्स हमारे अराउंड है, वो हमसे बात नहीं करते लेकिन फिर भी हमें इतना कुछ दे देते हैं।
2: तो अभी आप फिलहाल में क्या कर रही हैं?
3: फिलहाल मैं MSc बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ।
2: अच्छा, तो आपने जो BSc की है वो नॉर्मल की है?
3: जी,
2: प्लेन BSc जिसको बोल सकते हैं।
3: हाँ,
2: फिर उसके बाद आपने बायोटेक चुना, तो ऐसा क्यों कि आपने बायोटेक ही चुना? क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद जो कि हम चेंज कर सकते हैं या फिर हम ले सकते हैं, फिर आपने बायोटेक ही क्यों लिया?
3: जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस दौरान मैंने बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, मैंने बहुत एक्सप्लोर किया कि मुझे क्या करना चाहिए, और तभी मुझे फील हुआ कि साइंस सिर्फ लेबोरेटरीज तक लिमिटेड नहीं है। साइंस एक ऐसा फील्ड है जो हम बाहर लेके जा सकते हैं, हम सोशल इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके लिए बायोटेक एक बहुत अच्छा कोर्स है जो साइंस को सोशल से कनेक्ट करता है।
2: अच्छा, तो आपको जो सोशल इश्यूज हैं उन पे भी आपको वर्क करना पसंद है, आपको प्लांट्स पसंद है, आपको बॉटनी सब्जेक्ट इसीलिए पसंद है क्योंकि आपको प्लांट्स पसंद है। तो ऐसी क्या चीज है आपको जो स्टडी, तो देखिए इम्पोर्टेंट है, स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट आपको ऐसा कौन सा फील्ड है जो आपको पसंद है, सिंगिंग, डांसिंग?
3: सिंगिंग डांसिंग तो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के गाने सुनना पसंद है।
2: अच्छा, तो आपको किस कल्चर के सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद है?
3: ऑफ कोर्स हिंदी सॉन्ग सबसे ज्यादा पसंद।
2: तो आप हमारे दोस्तों से कैसे कह पाएंगे कि उनको भी प्लांट से प्यार करना चाहिए या उनको भी रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहिए? आप उनको किस प्रकार मोटिवेट करेंगे कि उनको भी बायोटेक करना चाहिए?
3: देखिए, बायोटेक एक ऐसा फील्ड है जो हमें एप्लीकेशंस दिखाता है। हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, हमें शायद इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जब हम फील्ड वर्क करते हैं, जब हम डायरेक्ट प्लांट से कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपना कंप्लीट प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद उनसे अटैच होते चले जाते हैं। ये जो हम सांस ले रहे हैं, जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है ऑक्सीजन, वो हमें प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो हमारा फूड है, हमारे अर्थ पे जितना भी फूड है वो हमें प्लांट्स के थ्रू मिल रहा है, तो वो इतने इम्पॉर्टेंट एक क्रिएचर है हमारी लाइफ में। अगर हम उनके बारे में पढ़े तो शायद हम बस पढ़ते ही रह जाएं।
2: देखिए, आज के युवा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो हमारे सोसाइटी के जो इश्यूज हैं उनके बारे में सोच रहा है, क्योंकि इश्यूज के बारे में सोचना बेहद जरूरी है। केवल अपनी लाइफ के बारे में सोचकर ही हम उन इश्यूज को आगे लेकर जा सकते हैं। तो मानवी, एक बात बताइए मुझे कि हर सफलता के पीछे ना कोई सपना जरूर होता है। आपका क्या सपना है कि अगर मैं सक्सेसफुल हुई तो मैं ये करूंगी या मैं ये करूंगी?
3: जैसे हम जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उनको इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देते हैं। तो मेरा सपना है कि मैं एक रिसर्चर बनूं, साइंटिस्ट बनूं और इस फील्ड में कुछ ऐसे काम करूं जिससे हम ह्यूमंस जो हैं प्लांट को कंजर्व कर पाएं, हमारे नेचर मदर अर्थ को हम कंजर्व कर पाएं, पॉल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं।
2: कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मान लिया ऐसा हो जाता है कभी कि हमें किसी ने किसी की बहुत अच्छी जॉब लग गई और हम सोचते हैं कि शायद तूने गलत स्ट्रीम चुन लिया, तूने गलत रास्ता चुन लिया है, और अगर मैं ये वाला सब्जेक्ट लेती या मैं इस चीज में ज्यादा कोशिश करती तो मेरी ज्यादा अच्छी जॉब लग सकती थी। तो कभी आपने ऐसा सोचा है?
3: जी, ऐसा सबको फील होता है, मुझे भी बहुत बार हुआ है अपने फ्रेंड्स को देख के, अपने कलीग्स को देख के कि शायद मैं ये कर लेती तो मुझे कुछ और बेटर चीजें मिलती। लेकिन ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ, तो मैं मेडिटेट करती हूँ, मैं कुछ पॉडकास्ट सुनती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देखती हूँ और फिर बैक टू वर्क।
2: फेवरेट साइंटिस्ट कौन है?
3: मेरे फेवरेट साइंटिस्ट मेरी फील्ड के नहीं है एक्चुअली, आप जानते होंगे एक रिसेंट उनकी एक डेथ हुई थी, सर स्टीफन हॉकिंग।
2: बिल्कुल बिल्कुल, उनको कौन नहीं जानता
3: है। तो मैं उनसे बहुत एडमायर होती हूँ, उनकी बुक्स पढ़ती हूँ। एक बहुत बेसिक बुक है, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो सर चार्ल्स डार्विन की है। वो आपको बताती है कि आप किस तरीके से यहाँ पे हो, आप किस तरीके से, सिर्फ आप नहीं जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं सब लोग किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हमारा एवोल्यूशन हुआ, वो सब चीज़ हमें बताती है। हमारी खुद की हिस्ट्री हमें पढ़ने को मिलती है उस बुक के थ्रू।
2: तो मानवी, आप अंत में हमारे दोस्तों से क्या कहना चाहती हैं कि जो उनकी लाइफ को चेंज कर दे?
3: मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हम जेंजीज हैं, अब हमें नेक्स्ट सब कुछ हमारे ऊपर है, तो हम प्लीज कुछ ऐसा काम करें जो हमारे नेचर को कंजर्व करे, हमारी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करे, साथ में ही हम एक सोशल स्टेबिलिटी बना के अपनी कंट्री को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बना दें।
2: बहुत ही शानदार बातचीत रही आपसे। आपने अपने बहुत सारे अनुभव, संघर्ष और अपने सपनों के जो सैलाब को था आज हमारे साथ साझा किया। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को भी जरूर छुएंगी। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू।
4: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
5: हो जाओगे एहसास कर लोट पोट,
4: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
6: और डोज में क्या है?
5: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
7: अरे चुनमुन, आज तो तू बड़ी अच्छी लग रही है।
6: हाँ, तो मैं तो हूँ ही अच्छी। अच्छी आज क्या, मैं तो रोज अच्छी लगती हूँ। और तुझे कुछ काम नहीं है क्या, 24 घंटे बस सड़क पे खड़े होके ऐवी लोगों पे चलते फिरते कमेंटबाजी करना?
7: अरे अरे, इतना गुस्सा मत हो, जरा थोड़ा सबर रख। इतना जरा जरा सी बातों पे गुस्सा क्यों कर जाती है तू? वैसे एक बात बता, मैंने सुना है तेरी मुस्कान पे लोग मरते हैं।
6: हाँ, तूने सही सुना है, मेरी मुस्कान है ही ऐसी, कोई भी कभी भी मर जाता है, मैं क्या करूं?
7: जरा टाइम निकाल के आ तो सही एक बार।
6: क्यों?
7: अरे वो क्या है ना, घर में एक चूहे ने एक हफ्ते से परेशान कर रखा है, उसे मरवाना है।
6: मुन मुन।
5: जी हाँ, मजा आ गया।
6: तो दोस्तों आपको मुझे लगता ही है कि प्रोग्राम में मजा आ रहा है, चलिए इस मजे को और दुगना कर देते हैं। हमने आपसे पूछा था बूदू तो जाने का सवाल, जिसका सवाल था कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जिसका सही जवाब है
7: उत्तराखंड। और सही जवाब देने वालों के नाम है सुदर्शन शाह, सुरेश खुराना, भगवत चौबे, मोहम्मद रफीक पवार।

0: आर जॉन डी कैस्ट्रो, आर सी कांबड़े, और हमारे अगले साथी हैं राहुल पाल, हीरामन गंगा सिंह रावत, राष्ट्रपाल गजबे, दिनेश वर्मा, सुधीर, मशरूर हसन, मोहम्मद सईद अब्बासी, विष्णु, राम कुमार रेवाड़, बबलेश पवार, आर्यन राज, बलवंत कुमार और नंदन कुमार सिंह। और हमारे और भी साथी हैं जिन्होंने हमें जवाब दिए हैं, और जिनका हमारे अगले साथी हैं सुरेश राठौड़, धर्मेंद्र छीपा, बी आई धाकड़, निसार सलमानी, उमेश कुमार, दिग्दर्शन गौड़, महाराज कीर्तन पुरी गोस्वामी, तुलसी मस्कीन, और हमारे अगले साथी हैं मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद असलम शफीक, ताज अंसारी, रवि कुमार राहुल, आफताब अंसारी, संजय डींगिया, राजकुमार दूदी, नवी हसन अब्बासी, जाकिर मंसूरी, शेख मूसा हुकुम, और हमारे अगले साथी हैं राजेश वर्मा, सदाशिव थोरात, बीपी गौतम, मुजफ्फर अली खान, जगदीश धाकड़, फागुराम यादव, मोहम्मद यासीन अंजान, मोहम्मद हुसैन पवार, और हमारे अगले साथी हैं विठल सुरेशे, गजानन हेले, देवशंकर तामुरिया, सुरेश गंगनेजा, शमसुल कमर, मोहम्मद जाहिद अली, और हमारे अगले साथी हैं धीरज भाई राबड़ी, और हमारे अगले साथी हैं शाहरुन नूर अंसारी।
1: तो इन्हीं सभी ने दिया है हमें बिल्कुल सही आंसर, और इसी बात पर इनके लिए एक नज्म है जो कि है फहमीदा रियाज की, और उसकी दो लाइनें मैं आपके लिए कह देती हूँ कि हम जो यूं फिर रहे हैं घबराए, आखिरी बार उनसे मिलाएं, यूं गले लग के हुए वो रुखसत, अनकही बात की मिटी हसरत, है ना। ये नज़म जो है ये आपको किस तरफ इशारा कर रही है, ये मेरे ख्याल से आप समझ गए सेगमेंट लव स्टोरीज की तरफ, और उसका आखिरी एपिसोड आज आप सुनेंगे, देखते हैं उसमें क्या होता है, तो सुनिएगा।
2: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि
3: धड़कने लगे,
2: है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे,
3: हाँ तड़पने लगे,
2: आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
4: आज ये टाइम है मयंक और मीरा की प्रेम कहानी की आखिरी कड़ी को जोड़ने का, जिसके फोर्थ एपिसोड में आपके पास कुछ सवाल बचे थे कि आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या हुआ, क्या मयंक और मीरा के पेरेंट्स एक दूसरे को समझ पाए। तो आइए कहानी को बढ़ाते हैं आगे और जानते हैं इनकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ। कुछ पल तक मीरा के पापा दरवाजे पर खड़े मयंक के पेरेंट्स को देखते रहे। मयंक के पापा ने बेहद नरमी से कहा, हम आपसे मीरा और मयंक के रिश्ते के बारे में बात करने आए हैं। और मीरा के पापा ने एकदम सख्त लहजे में जवाब दिया, इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हम तो बस, मीरा के पापा ने उनकी बात काट दी और बोले, हमने अपनी बेटी की शादी तय कर दी है। मयंक की माँ ने कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार बस आप, नहीं हमें कुछ नहीं सुनना। मयंक के पापा फिर से बोलते हैं, हम समझते हैं कि आपको अपनी बेटी के लिए जो ठीक लगता है। मीरा के पापा ने इस बार भी उनकी कोई बात नहीं सुनी और बीच में ही बोलने लगे, तो फिर बस आप भी समझ जाइए, हम अपनी बेटी की शादी आपके बेटे से नहीं कराना चाहते, हमारे कल्चर अलग हैं, रिवाज अलग हैं, फैमिलीज अलग हैं, सब कुछ अलग है। मयंक के पेरेंट्स मीरा के पापा से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा के पापा कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर भी मयंक के पापा एक बार फिर से कहते हैं, एक बार आप सोच तो लीजिए, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए,

0: और इस दफा भी मीरा के पापा एकदम सख्त लहजे में बोलते हैं,
1: आप अपने बेटे को समझाइए, हम मीरा को समझा लेंगे, और हम नहीं चाहते आपका बेटा अब कभी भी हमारी बेटी से मिलने की कोशिश भी करे।
0: और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देते हैं। एक शाम मयंक ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा उसकी माँ कुछ ज्यादा ही खामोश थी। मयंक ने माँ के पास आकर पूछा,
1: माँ क्या हुआ है, आप मुझे परेशान लग रही हो।
0: माँ ने मयंक की बात टालने की पूरी कोशिश की और बोली,
2: कुछ नहीं बेटा, तुम थक गए होंगे, जाओ जाकर चेंज कर लो।
0: लेकिन मयंक ने उनका चेहरा गौर से देखा और फिर से पूछा,
1: माँ आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं ना, बताइए क्या हुआ।
0: माँ ने इस बार नजरें झुका ली और कोई जवाब नहीं दे पाई। मयंक ने कुछ देर चुप रहने के बाद अचानक से पूछा,
1: माँ आप मीरा के घर गई थी, माँ बताइए ना, पापा भी गए थे।
0: माँ की आंखों में आंसू आ गए और मयंक समझ गया जवाब हाँ था। उसने माँ से धीरे से पूछा,
1: क्या हुआ माँ, माँ प्लीज मुझे बताइए, क्या उन्होंने हमारी शादी से इनकार कर दिया।
0: मयंक चुपचाप माँ के पास बैठ गया और बोलता रहा पूछता रहा,
1: माँ कुछ तो कहिए, कुछ तो बताइए मुझे भी।
0: मयंक उन्होंने सिर्फ रिश्ते के लिए मना नहीं किया बल्कि हमसे बहुत सख्त लहजे में बात की।
1: उन्होंने साफ कह दिया हमारे मुंह पर, हम अपनी बेटी की शादी आपके घर में नहीं कराना चाहते, और ये भी कहा कि आप अपने बेटे को हमारी बेटी से दूर रखिए।
0: मयंक माँ की सारी बातें चुपचाप बैठकर सुनता रहा, उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं थे लेकिन अंदर से जैसे कुछ टूट रहा था। और इतनी देर में माँ ने फिर से कहा,
1: बेटा मयंक हम तेरी खुशी के लिए वहाँ गए थे, हमने बहुत कोशिश की थी लेकिन।
0: मयंक अपनी माँ को गले से लगा लेता है और एक गहरी सांस लेकर कहता है,
1: आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से आप दोनों वहाँ गए।
0: मयंक बेटा तुम्हारे पापा ने तो कहा था तुम्हें इस बात का पता।
1: नहीं माँ मुझे सब पता होना चाहिए।
0: मयंक की आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में एक अजीब सी खुददारी थी।
1: माँ मैं मीरा के पापा की बात को भूल सकता हूँ लेकिन आप दोनों की बेइज्जती कभी नहीं भूल सकता।
0: उस रात मयंक ने मीरा को फोन किया। काफी देर तक फोन की घंटी लगातार बजती रही। मयंक के कई बार फोन करने के बाद मीरा ने आखिर फोन उठाया और बोली,
1: हेलो मयंक आर यू देयर, क्या हुआ है।
0: और मयंक ने कहा,
1: मीरा तुम्हारे घर पर मेरे पेरेंट्स आए थे। क्या। हाँ मीरा वो हमारे रिश्ते की बात करने आए थे।
0: मीरा की आवाज में हैरानी थी और मीरा कहती है,
1: लेकिन मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता मयंक, मुझे भी नहीं पता था लेकिन अब पता चल गया है।
0: मीरा घबरा जाती है और घबरा कर मयंक से पूछती है,
1: मयंक क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, तुम्हारे पापा ने मेरे पेरेंट्स के साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, उन्होंने उनकी बेइज्जती की है।
0: मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने एकदम से कहा,
1: नहीं मयंक ऐसा नहीं हो सकता,
2: नहीं मयंक ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है।
1: अच्छा, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे मीरा। क्या उनकी आंखों में भी कोई गलत फहमी थी?
0: मीरा कुछ नहीं बोल पाई और मयंक लगातार बोलता रहा। मयंक ने फिर से कहा,
1: मीरा तुम्हारे पापा ने साफ कह दिया कि वो तुम्हारी शादी मेरे घर में नहीं करेंगे और मुझे भी तुमसे दूर रहने को कहा है।
0: मयंक, मैं पापा से बात करूंगी, मैं उन्हें सब समझाऊंगी, मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने ऐसा क्यों किया।
2: मयंक ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके सामने उसकी माँ के आंसू थे और पापा का झुका हुआ सिर था, और दूसरी तरफ मीरा जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, मयंक जो शायद नहीं कहना चाहता था वही कह दिया।
1: मीरा अब कुछ नहीं बदलेगा।
0: लेकिन मयंक मेरी बात तो सुनो, पापा की गलती की सजा मुझे मत दो।
1: काश बात सिर्फ तुम्हारे पापा की होती मीरा, लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता।
2: मीरा की आवाज अब कांपने लगी थी और वो कांपते कांपते बोलती है,
0: तो क्या हमारा प्यार हार गया मयंक?
1: शायद किस्मत ने हमारा साथ यहीं तक लिखा था मीरा।
0: मयंक प्लीज फोन मत रखना, प्लीज एक बार लास्ट मेरी बात तो सुन लो।
2: लेकिन मयंक ने फोन काट दिया।
1: मयंक, हेलो मयंक, मयंक।
2: मीरा फोन पर कहती रही लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने कई बार फोन किया लेकिन मयंक ने फोन नहीं उठाया। अगले दिन, हफ्ते, महीने मीरा ने मयंक से बात करने की पूरी कोशिश की लेकिन मयंक का फोन अब कभी नहीं उठा, और धीरे धीरे मीरा की आवाज़ उसके फोन की अनआंसर्ड कॉल्स में कहीं खो गई। दोनों के बीच पनपी वो खामोशी जिसे वक्त रहते तोड़ दिया जाता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। मोहब्बत थी मगर हालात भी कम नहीं थे, दो दिल थे मगर सवाल भी कम नहीं थे। एक तरफ इश्क था तो दूसरी तरफ खुददारी, और दरमियां खड़ी थी कुछ गलत फहमियाँ हमारी। वो एक दूसरे के होकर भी एक दूसरे के ना हो सके। ये थी मयंक और मीरा की कहानी।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: तो दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
2: इसके लिए आपको कैसे लगा लिखना होगा खत। खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से है। और इसी के साथ यूसुफा, जैदी और उज्मा को दीजिए कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति। नमस्कार, नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 6 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई है।
1: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इसराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम के प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर

0: उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोईकोट, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह की
0: राम राम। और प्रमोद भैया क्या हो रहा है?
1: भैया सब ठीक ठाक है, तुम अपने सुनाओ, सब ठीक ठाक तो?
0: भाई देखो झमाझम बारिश हो रही है और भाई बरसात के मौसम में अगर ऐसी बारिश हो ना
1: जी
0: तो भाई
1: जी।
0: किसान भाइयों के चेहरे तो वैसे ही खिल जाए।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। देखो अब जो हमें बरसात की जरूरत थी, पानी की जरूरत थी भैया, वो किसान भाइयों को मिल ही रहा। फसलें बहुत अच्छी खड़ी हुई है भैया।
0: बिल्कुल देखो भाई बात यू है,
1: हाँ
0: बारिश की ऐसी जरूरत है कि भैया जो हल्की हल्की बारिश हो गए और जो पौधे हैं उनके अंदर तक समावे।
1: बिल्कुल
0: धरती में समावे।
1: जी जी।
0: अब यूँ क्या थोड़ा बारिश पड़ गई और पानी सारा
1: पानी बह गया, वो किसी काम का ही ना।
0: बिल्कुल। तो हालांकि हमारे जो किसान भाई हैं वो बहने वाले पानी का भी उन्होंने इंतजाम कर रखा, लेकिन भैया जो मस्त मस्त बारिश हो रही ना इसने भैया बहुत फायदा कर दिया।
1: बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। देखो हमें जो है इस बरसात का स्वागत करना चाहिए। और एक बात और है भाई, जो हम बहुत दिनों से पानी के लिए तरस रहे थे, बरसात के लिए तरस रहे थे कि भैया बारिश नहीं हो रही, तो उसका भी विकल्प हमें ढूंढ कर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: पानी को बचा कर रखना चाहिए।
0: सही कह रहे हैं आप। देखो भाई पानी को तो हमें बचाना ही चाहिए। अब बात पानी की चली है तो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर और बात कर ले।
1: हाँ हाँ भैया।
0: भाई बात यह है कि सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई है, वो है स्वच्छ जल मिशन।
1: बिल्कुल।
0: और भाई हमारे किसान भाई जो है इसे कई नामों से जानते हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई जो है भैया इसे स्वच्छ जल मिशन के नाम से जाना है,
1: जी
0: जल जीवन मिशन के नाम से जाना है, कुछ हमारे किसान भाई हर घर जल के नाम से जाने हैं।
1: बिल्कुल। लेकिन भैया कुल मिलाकर ये योजना है बहुत बढ़िया।
0: बिल्कुल। देखो भाई इसका उद्देश्य यो है कि हर घर को स्वच्छ पेयजल मिले।
1: बिल्कुल। साफ सुथरा अगर हमें पानी मिलेगा तो भैया हम एकदम स्वस्थ रहेंगे, पानी से होने वाले जो रोग हैं वो हमें बिल्कुल नहीं होने के। और भैया देखो इस बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा सुना जाया करा है कि भैया पीलिया रोग हो गया, और अगर भैया हम साफ पानी पियेंगे, उबला हुआ पानी पियेंगे, तो भैया इन सब रोगों से हम बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल। देखो भाई बात यो आम तौर पर जो हम लोग बोरिंग कराते हैं ज्यादातर 100-125 फीट का।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: क्योंकि बहुत ज्यादा कराओगे तो खर्चा आएगा।
1: जी जी।
0: तो भैया गवर्नमेंट ने इतनी बढ़िया सोच रखी कि भैया हम एक बहुत गहराई तक बोरिंग करें,
1: हाँ,
0: और वहां से पानी ले और हर घर में जो है स्वच्छ जल पहुंचा में।
1: बिल्कुल।
0: तो भैया एक तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होगा, फिर वो दूषित नहीं होने का पानी बिल्कुल।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: और पानी से या पानी की गंदगी से जो बहुत सारे रोग होते हैं वो होने के
1: बिल्कुल नहीं होने के।
0: तो भैया देखो गवर्नमेंट की योजना तो बहुत अच्छी
1: हाँ,
0: है।
1: हाँ, हाँ।
0: लेकिन हमारा भी भैया कर्तव्य बनता। हमने देखा कि जिन गांव में भैया टंकी चल गई तो बस वो चल रही तो चल रही,
1: वो गलत है,
0: पानी निकल गया तो निकल गया, ये वाली बात नहीं होनी चाहिए।
1: देखो पानी की बर्बादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब भैया इस योजना को इसलिए भी लाया गया कि देखो अब हमारे जो किसान भाई बहन हैं या दूसरे और भाई बहन हैं, भैया सब अपने घरों में समरसेबिल करवा रहे हैं।
0: ठीक।
1: अब भैया समरसेबिल की तो आपने देखी है कहानी क्या है, बस बटन दबाया, पाइप पकड़ा और पानी बहता चला जा रहा बहता चला जा रहा। तो देखो पानी की बर्बादी को रोकने के लिए ये स्वच्छ जल मिशन लाया गया, हर घर पानी मिलता रहे, साफ पानी मिलता रहे, हम सब स्वस्थ रहें, हर घर में पानी मिलेगा, तो भैया देखो इस योजना को हम जरूर सार्थक।

0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो इसके जरिए हमें जो है पुरानी परंपरा भी हमारी याद आ, क्योंकि भैया ये तो समय साफ होगा पानी,
1: हाँ
0: तो फिर हम क्या करेंगे उसे रखेंगे भर के घड़े में,
1: हाँ,
0: भर के रखेंगे या और दूसरी चीज रखेंगे
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जैसे पहले रखे करते।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भैया एक अच्छा सोच जो हर एक में पैदा होगी, क्योंकि भैया पुरानी गांव में कहावत है कि आ बैठ पी पानी योग मोल को नालानी,
1: बिल्कुल
0: तो भैया
1: बिल्कुल
0: हर आदमी को जो है जल स्वच्छ मिल जा यो योजना कारगर होगी।
1: बिल्कुल ठीक बात है। और देखो भाई ये योजना कारगर हो भी रही है, बहुत सारी जगह तो भैया पानी पहुंच गया है, साफ सुथरा पानी उन्हें टाइम से मिल रहा, और भैया सब बढ़िया और स्वादिष्ट स्वच्छ पानी का आनंद ले रहे हैं।
0: ठीक है, तो भाई देखो आनंद तो हम लेंगे, और हम अपने किसान भाइयों को भी बता दें कि भैया आज है माह का पहला शुक्रवार, और
1: हाँ
0: पहले शुक्रवार को भैया हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है हेलो किसान।
1: बिल्कुल
0: तो किसान भाइयों की आज जो भी खेती किसानी बागवानी या पशुपालन से संबंधित समस्या हो, तो आप हमें सीधे फोन करके भैया बातचीत कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों के जवाब देने के।
1: बिल्कुल। और नंबर
0: और
1: हम बता रहे हैं भैया,
0: बिल्कुल नंबर बता दो पहले।
1: नंबर है 94-570-78-288, और भैया दूसरा हमारा नंबर है 01-3-41-23-01-05। इन दोनों ही नंबरों पर आप हमारे पास में फोन कर सकते हैं, और अपनी जो समस्या है, कोई जिज्ञासा है, वो आप हमसे शांत करा सकते हैं।
0: ठीक है भैया, तो देखो बातें बतेरी होगी, अब सुन लेते हैं जरा से संदेश।
1: ठीक है भैया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700001424।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
2: तो भैया, किसान भाइयों ने जरूरी संदेश सुने। और भाई, हम जैसे बात कर रहे थे कि आज माह का पहला शुक्रवार।
3: हाँ भैया।
2: और भाई, पहले शुक्रवार को हमारे किसान भाई इंतजार में रहते हैं अपने भैया फोन पर आधारित जो प्रश्न हैं वो पूछें, अपने फोन के माध्यम से प्रश्न पूछें। तो भैया, आइए शुरू करते हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है
4: हेलो किसान।

0: तो आज के सजीव फोन इन कार्यक्रम के साथ भैया मैं हूं आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया मैं हूं प्रमोद सिंह। हम दोनों भैया आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, चाहे वो खेती बाड़ी से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है, बागवानी से संबंधित है, तो भैया आप हमारे पास में सीधा फोन करके अपनी जिज्ञासा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम नंबर बता रहे हैं, नंबर है 94-570-78-288। और भैया दूसरा नंबर है 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5।
0: भैया देखो, आपसे लेकर और 6:45 तक हम आपके बीच में रहेंगे, और आपकी कोई भी खेती किसानी पशुपालन संबंधी समस्या हो तो आप हमें भैया फोन कर सकते हैं। और देखो ये एक फोन आ रहा है,
1: बिल्कुल
0: देखे किस भैया का।
1: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, हेलो किसान
2: जी, मैं मांगे राम बड़ापुर से बोल रहा हूँ।
1: जी जी मांगे राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए इस समय आपके यहाँ मौसम कैसा है, बरसात हो रही है आपके यहाँ?
2: हल्की फुल्की होती है जी, वैसे हवा चल रही है अच्छी।
0: अच्छा, तो इस बारिश से फायदा हो रहा है मांगे राम जी?
2: हाँ जी, फायदा बहुत हो रहा है।
0: क्या फायदा हो रहा है?
2: हल्का हल्का पड़ता है और वो सारा जमीन में चला जाता है, व्यर्थ नहीं पानी जाता।
1: बहुत अच्छी बात है। तो इस समय तो धान की फसल आपकी बहुत अच्छी खड़ी होगी मांगे राम जी।
2: ये हमने पूछना यही था, ये लेट बोई है PR13।
1: अच्छा,
2: तो ये बढ़िया हो जाए, इसे क्या डालना चाहिए?
1: जी जी जी,
0: PR13 आपकी है, देखो अच्छी मुंजी है, तो ये बताइए इसमें दिक्कत क्या आ रही है आपको?
2: भाई लेट बोई है, अभी ये भी दिया है एक एक कट्टा, एक एकड़ का 5 बीघे में एक कट्टा।
0: क्या

0: ये भी।
1: अच्छा, तो ये फिलहाल तो आपने इसकी मात्रा डाल दी है और कुछ समय के पश्चात इसमें यूरिया की मात्रा आप डाल दें। अच्छा, ये बताइए आपने पाटा लगाया था क्या इसमें?
0: पाटा नहीं लगाया इसमें, वो रूटावेटर से काट लगाता था।
1: नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कितने दिन हो गए इसे लगाए हुए?
0: इसे हो गए हैं लगभग 15-20 दिन।
1: 15-20 दिन हो गए। देखिए बड़ा अच्छा समय चल रहा है वैसे तो, और थोड़ा पहले कर देते तो अच्छा है। खेत में जैसा पानी भरा हुआ होगा आपके काफ़ी, है ना?
0: जी
1: तो पानी भरा और थोड़ा सा पानी भर लीजिएगा, और भरने के बाद एक कोई भी लिप्टिस का डंडा ले लो या बांस ले लो और उसे रस्सी दोनों तरफ बांध दीजिएगा, है ना? तो उसको लेके घुमा दें आप पूरे
0: ठीक
1: खेत
0: है
1: में, जैसे मेहड़ा लगाते हैं ना इस तरह से।
0: जी, समझ रहा हूँ।
1: हाँ, तो
0: हाँ
1: उससे होगा क्या कि पौधे पूरे झुक जाएंगे पानी में।
0: हाँ पहले जमाने में बैलों की गांड लगाया करे थे।
1: जी
0: हाँ
1: हाँ
0: जी जी
1: हाँ तो उससे फायदा ये होगा कि जो पौधा होता है ना उसकी जड़ में एक गांठ होती है, वो गांठ फूट जाती है। तो गांठ फूटने से क्या होता है कि कल्ले बढ़िया निकलते हैं, तो आपका जो है फ्री में ही जो है कल्ले फूटने का काम हो जाएगा। और दूसरे जो हानिकारक कीट आजकल पैदा होते हैं वो अपने अंडे ऊपर की तरफ छोड़ते हैं पत्ते पर, और जब वो पानी में मिल जाएंगे तो उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे, तो कीड़ा पैदा ही नहीं होगा। तो फ्री में आपका कीट नियंत्रण भी हो गया और कल्ले भी आपके सही फूट गए। ये काम आप करेंगे तो आपकी फसल जो बढ़िया होगी।
2: ठीक है मंगेराम जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान
0: तो
2: जरूर हुआ होगा।
1: जी
0: ये तो
1: जी
0: बासमती में बताते थे आप, मैं बासमती का भी सुनता रहता
1: नहीं
0: हूँ।
1: नहीं
0: ये है
1: देखिए बासमती हो या कोई भी मुंजी हो, उसमें प्रोसीजर एक ही रहेगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हेलो
2: और बहुत ही बढ़िया सवाल देखिए मांगेराम जी ने पूछा है गंगाराम भैया।
1: जी
2: और देखो अभी हमारे दूसरे कोई किसान भाई लाइन पर है, उनसे पूछते हैं।
1: जी
2: हेलो
1: हेलो,
2: हेलो,
1: शायद ये फोन संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेलो,
0: हेलो
1: हाँ जी, हेलो किसान
0: हेलो, आलोक कुमार जी को और प्रमोद सिंह को मेरी राम राम।
2: राम
1: जी।
2: राम जी, राम राम हमारी भी राम राम। आपको अपना नाम बता दीजिए, जगह का नाम बता दीजिए।
0: जी, मैं ग्राम घबरौना जिला हरिद्वार उत्तराखंड से मदन गिरी बोल रहा हूँ।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है मदन गिरी जी आपका, बताइए कैसे हैं।
0: ठीक है जी,
1: उत्तराखंड में
0: और
1: कैसा मौसम चल रहा है?
0: मौसम ऐसा है जी, कल तो बहुत बरसात थी,
1: जी
0: परसों भी बहुत बरसात थी,
1: अच्छा,
0: आज बूंदाबांदी हो रही है, राहत मिली है, फसलों को भी राहत मिली है और इंसानों को भी राहत मिली है,
2: जी
0: बहुत
2: जी
0: अच्छा
2: जी तो
0: मौसम हो रहा है।
1: ऐसे
0: बहुत
1: ऐसे
0: बढ़िया,
1: में देखिए जब बारिश ज्यादा हो रही है तो पशुओं के चारे का क्या इंतजाम कर रहे हैं
0: बस
1: कमर इनके?
0: ऐसा है जी, फिलहाल तो ऐसा है कि
2: हाँ
0: देखिए भूसा ही वो दाना मिश्रण में डाल के वही डालकर जो है भूसा ही डाल रहे हैं।
2: हाँ हाँ
1: बहुत
2: हाँ
1: बढ़िया जी।
0: हाँ जी, फिलहाल
1: तो और बताइए
0: तो
1: क्या
0: यही
1: पूछना
0: है।
1: चाह रहे हैं आप?
0: मैं पूछना चाह रहा हूँ कि धान के खेत में जो है वो उगाए हैं जो है बहुत ही
1: क्या
0: ऐसे ऐसे वो हैं धान के खेत में कि उनका
1: खरपतवार?
0: पौधा ऐसा है। हाँ
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: खरपतवार,
2: हाँ हाँ
0: हाँ
2: हाँ
0: जैसे खरपतवार ऐसे हैं कि जैसे धान का ही टिड्डा हो, धान का ही पौधा हो,
1: मतलब घास
0: ऐसे
1: ऐसी है।
0: ऐसे हैं। हाँ जी ऐसे हैं वे,
1: अच्छा
0: उनका जो है उनका ये लगाना, अनुमान लगाना कि ये धान के पौधे हैं या खरपतवार के, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है।
2: जी जी
0: अच्छा
2: जी
0: तो
1: अच्छा,
0: ऐसे
1: देखिए
0: में क्या करें।
1: बिल्कुल, देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपका है।
0: जी
1: तो देखिए इसमें होता ये है कि जब एक से दोनों पौधे हो जाते हैं तो हम मैन्युअली जब उखाड़ते हैं तो उसमें परेशानी आती है कि भाई वो असली है या नकली है।
2: हाँ हाँ
1: हालांकि
0: जी
1: जो मुंजी का पेड़ पौधा होता है, धान का जो होता है,
0: हाँ
1: उसकी
0: जी
1: जड़ थोड़ी चौड़ी होती है और ये वाली
0: हाँ जी
1: हल्की
0: बोलिए।
1: पतली।

0: यानी कि हाथ से उखाड़ने का ही काम करें तो बहुत बढ़िया है। और अदरवाइज अगर आप दवाई छिड़कना चाह रहे हैं, दवाई के हम आपको ये बताएंगे कि दवाई न छिड़के तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मुंजी में या मतलब चावल में दवाई ववाई का ज़्यादा उपयोग करना अच्छा नहीं होता है। फिर भी
1: जी
0: अगर
1: वो तो
0: आप कहें तो
1: समझ
0: हम
1: रहे हैं
0: दवाई भी बता देते हैं।
1: जी, बता दो ऐसा, लेकिन हम यही सोचते हैं कि हाथ से ही जो है हमें,
0: जी
1: जी
0: जी
1: वैसे
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: तो
0: देखिए
1: महंगाई
0: पहले
1: तो
0: तो
1: महंगा
0: आप
1: बहुत
0: हाथ
1: है।
0: से ही निकालने का प्रयास कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना है तो हम आपको बता रहे हैं, आप
1: जी,
0: प्रेटिला क्लोर या ब्यूटा क्लोर इसमें से
1: अच्छा
0: किसी
1: जी,
0: भी दवा को लेकर उसका छिड़काव आप कर सकते हैं।
1: अच्छा जी
0: हाँ लेकिन इस
1: जी
0: दवाई की बात यह है कि 15 से 25 दिन के बीच में आपको दोबारा छिड़कनी पड़ेगी,
1: अच्छा जी,
0: तो मतलब आदत अगर हम ना बनाएं अपने खेत को दवाई की तो ज़्यादा अच्छा है ना।
1: जो जी कोशिश तो यही कर रहे हैं, लेकिन बड़ी समस्या है कि मजदूर जो है एक तो मिल नहीं रहा।

0: करते हैं
1: उसमें
0: तो हमें परेशानी होती है। एक और कॉलर हमारा है, देखिए कौन भैया है।
1: हेलो हेलो
0: हेलो किसान। हाँ जी हेलो किसान, थोड़ा जोर से बोलिए।
1: जी जी बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए।
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
2: सर जो गन्ने में रोग आ रहा है इसके बारे में जाने कुछ बोल नहीं रही
1: जी। गन्ने में क्या रोग आ रहा
2: है?
0: क्या रोग आ रहा है गन्ने में?
2: सर जो सूखता ही आ रहा है, सूखने का भी जैसे
0: गन्ना सूख रहा है बीच की गोब।
2: हाँ फंगीसाइड। जी सर।
0: नहीं फंगीसाइड, बीच की गोब सूख रही है क्या? अच्छा अच्छा, मतलब आप जो है अगर बीच की जो दो पत्तियां होती हैं ऊपर को उखाड़े तो वो निकल रही ऊपर को?
2: हाँ ऊपर निकलेगा।
0: और अच्छा, आपने सूंघ के देखा था उसमें बदबू भी आ रही है?
2: बदबू आ रही जरा।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो देखिए ये जो रोग है ये आमतौर पर आजकल आ जाता है ना?
2: जी सर।
0: तो इसके मतलब इसका निदान आपने, देखिए सबसे बढ़िया बात तो यही है कि ये रोग ना आता, इससे थोड़ा पहले ही आप करते हैं, लेकिन अब तो काफी बड़ा हो गया होगा गन्ना आपका।
2: नहीं अभी हो जाएगा सर,
0: मतलब
2: हो जाएगा।
0: कितनी ऊंचाई का है?
2: तो 4-5 फीट हो गया।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: अच्छा, थोड़ा ही है।
0: अच्छा 4-5 फीट ऊंचा हो गया।
2: हाँ,
0: तो 4-5 फीट पे तो छिड़काव करना या
1: बहुत मुश्किल होता,
0: थोड़ा मुश्किल होता है
2: सर, हो जाता है वो कम से कम टंकी वाले।
0: अच्छा अच्छा, तो आपने देखिए तो आम तौर पे है ये, इसके लिए काफी दवाइयाँ करते हैं जैसा आप कोरोजन वगैरह का इस्तेमाल करते होंगे, हैं? वो करा नहीं था क्या?
2: जी हाँ, कोरोजन में करा
0: था सर। अच्छा, उसके उसके बावजूद भी हो गया?
2: जी बावजूद भी अब आया सर।
0: अच्छा, मतलब 3 महीने का टाइम निकलने के बाद आया है?
2: हाँ 3 महीने हो गए।
0: तो आपको उसी तरह के किसी भी रसायन का फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में आजकल बहुत रसायन उस तरह के मिलते हैं कोरोजन साल्ट के। जी
2: लोकल जाते हैं दुकान
1: पर। हाँ इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप कृषि वैज्ञानिक की सलाह पर ही कोई भी रसायन उसमें डालें, पहले उनको बता दें, लक्षण दिखा दें, अपना पौधा गन्ने का दिखा सकते हैं आप, उसके बाद में ही उसमें अगर किसी रसायन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ठीक है,
0: तो हमें उम्मीद है कि देखिए हमारे किसान भाई को जो है इस तरह के जो आजकल प्रमोद भैया देखिए परेशानी ये हो रही है कि बहुत सारे रोग आ रहे हैं।
1: हाँ,
0: और दो परेशानी हमारे किसान भाइयों को हो रही है, एक तो खेत में पानी है।
1: जी जी,
0: तो
1: जी।
0: पानी में फिर स्प्रे करना मुश्किल हो जाता
1: है, बहुत मुश्किल होता है।
0: दूसरा ये है कि पौधा बहुत बड़ा हो गया है, तो ये दोनों काम पहले करने चाहिए थे। ये रोग तभी आता है, छोटी भेदक जिसे कहते हैं, कि जब हमने समय से इसका इलाज नहीं किया होगा,
1: बिल्कुल
0: गर्मियों
1: बिल्कुल
0: में नहीं किया होगा। अब तो हमने फिर भी बता दिया है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई की समस्या का निदान हुआ होगा। एक और कॉलर है, देखते कौन भैया है।
1: हेलो
3: हेलो।
0: हाँ जी हेलो किसान।
3: हेलो किसान।
1: हाँ जी
3: कुमार जी, आदाब।
0: आदाब साहब।
3: आदाब
0: जी, कौन भैया बोल रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए।
3: जी मैं मुस्तकीम बोल रहा हूँ सेवारा से।
0: जी मुस्तकीम भाई,
1: बहुत स्वागत है मुस्तकीम जी, बताइए।
3: थैंक यू सर
0: जी। क्या क्या फसलें बो रखी है आपने मुस्तकीम भाई?
3: सर मैंने गन्ना लगा रखा जमीन में।
1: अच्छा,
3: और मूंगी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, मूंगफली वगैरह भी बोते हैं क्या आपकी साइड में?
3: नहीं हमारी साइड में मूंगफली नहीं बोते सर, हमारे यहाँ तो गन्ना और मूंगी और गेहूँ होता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
3: जी,
0: बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं आज?
3: मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैंने घर पे जो है ना नर्सरी में बहुत सारे पौधे लगाए हैं
0: जी।
3: वो जब पौधे लगाए हैं मैं लगातार पानी भी दे रहा हूँ, बारिश भी पड़ रही है।
1: हाँ।
3: लेकिन उन पौधों की पत्ते पीली हो रही है सर।
0: कहीं के पौधों की?
3: जैसे ये लौकी की बेल है या गुलाब की पत्तियां हैं, गुलाब नहीं आ रहे, या इस तरह जो और पौधे हैं जैसे चमेली का है, फूलों का है
1: जी,
3: चमेली का है, गेंदे का है, तो ये पीली पीली पत्ती पड़ रही है सर, और वो पौधा सूख रहा है सर, मैं लगातार पानी दे रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए मैं आपसे बताऊं, कई बार ये आमतौर पर फूलों में और ये जो बेल वाली फसलें हैं इनमें प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए बेल वाली फसल हो या फूल हो, ये अत्यधिक पानी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनमें जो है मतलब पानी की सीमित मात्रा रखनी चाहिए, इसमें ज़्यादा मात्रा रखने से जो है नुकसान होने की संभावना रहती है। जो बारिश का पानी है उसका थांबला भी इस तरह से कर दीजिएगा, पानी जमे ना, यानी कि पानी की निकासी की व्यवस्था कर दीजिएगा। इसमें नमी तो चाहिए
3: जी,
0: और पानी भराव नहीं चाहिए। जड़ अगर भर दी तो आपकी जड़ सूख जाएगी, और ज्यादा पानी भरने से क्या होगा,

0: पौधा सूखना शुरू हो जाएगा, मुलायम मुलायम पत्ती या जो बड़ी पत्ती हैं वे सूखनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। हाँ
1: जी,
0: और जो पोषक तत्व हैं वो भी। जी
1: जी सर, एक बात मालूम करने दी आप।
0: हाँ हाँ जी,
1: गन्ना गन्ना जो है मतलब बढ़ नहीं रहा है सर, तो मतलब बढ़ नहीं रहा है, नीचा है अभी।
0: देखिए एक बात मैं बता दूं, एक गांव में पुरानी कहावत है
2: जी,
0: अंबर के बरसे का और माँ के परसे का अलग ही गुण आता है। तो अब हल्की हल्की बारिश हुई है, गन्ना अब खींचेगा आपको ऊपर गांव। अगर आपने पूरे पोषक तत्व दे रखे होंगे और अच्छी देखभाल करी होगी, कोई रोग
1: जी, पूरी
0: हाँ
1: पूरी सर, पूरी जी दवाई तो मैं पूरी दे रहा हूँ सर।
0: हाँ बिल्कुल, आपका गन्ना देखिए, अब जैसे ही आप बारिश की बूंदे धीरे धीरे होंगी, बहुत बढ़िया ऊपर को बढ़ चलेगा आपका, आपकी फसल अच्छी होगी।
2: ठीक है, आपसे
0: बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद सर आपका।
0: देखिए बात यही चली थी कि अगर हमें बहुत अच्छी बात लगी मुस्तकीम भाई की,
2: हाँ,
0: कि इन्होंने जो है अच्छी देखभाल करी है, और अच्छी देखभाल जब जब कोई भी किसान करता है तो निश्चित रूप से उसका गन्ना अच्छा होता है, या कोई भी फसल अच्छी होती है। निगरानी बहुत जरूरी है,
2: निगरानी बहुत जरूरी है, जैसे कि इन्होंने भी की है कि इन्होंने कहा कि वो ज्यादा पानी देते रहे और गन्ने की बीज ठीक तरीके से देखभाल इन्होंने करी। तो देखिए हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें मात्रा का ध्यान जरूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। और भाई एक और हमारा कॉलर है, देखते हैं कौन भैया है।
2: हेलो,
0: हाँ जी हेलो,
3: हेलो किसान
0: जी, हेलो किसान, कौन भैया बोल रहे हैं, अपने नाम बता दीजिए।
3: शर्मा बोल रहे हूँ,
0: जी शर्मा जी,
2: जी जी
0: कैसे हैं।
3: बढ़िया जी, आप सुनाओ।
0: बढ़िया,
2: बहुत अच्छा
0: है। कैसी बारिश हो रही है।
3: बारिश तो सही हो रही है, अच्छा। सुबह शाम।
2: अच्छा, डेली बारिश हो रही है आपके यहाँ।
3: सही हो रही है अभी तो।
0: अच्छा शर्मा जी, एक बात पूछना चाह रहे हैं, आपकी जो भूमि है जिसमें आप खेती करते हैं वो रेतीली है या वैसी है, चिकनी मिट्टी है।
3: जी रात को पानी भर दो, सुबह को साफ हो जाओ।
0: अच्छा रेतीली है। अच्छा ये बताइए, पहले तो अमरोहा में सुना जाता था मूंगफली बहुत होती है, अब की बार बोई क्या किसी ने।
3: हमारे यहाँ पहले रोज से साफ ही होती थी, अब नहीं बोते, अब तो अच्छा, गन्ना बोते हैं सब।
0: अच्छा, सब गन्ना बोते हैं।
3: मूंगफली हमारे बहुत पैदा होती थी।
0: अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। और अरबी, अरबी भी बहुत बोते थे।
3: अरबी बोते हैं अमरोहा के आसपास।
0: अच्छा अच्छा,
3: अमरोहा तो पड़ता है कांट रोड पे 15 किलोमीटर।
0: अच्छा अच्छा, कौन सा गाँव है आपका।
3: खिदमतपुर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताइए, ये तो हमने बात की, पशु भी पाल रहे।
3: पशु पाल रहे, पशु के बारे में मालूम करना था।
0: हाँ जी बिल्कुल, पूछिए जी, पूछिए।
3: पशु का क्या है, हमने अभी भैंस छुटिया ली है, दूसरा ब्याई है वो।
0: हाँ,
3: तो वो कुछ बहुत कम खा रही है, शुरू शुरू तो हमने बिल्कुल खाया ही नहीं।
0: मतलब अभी खरीदी है।
3: हाँ अभी खरीदी है, 15-20 दिन हो गए।
0: ठीक है ठीक है, देखिए हम बताते हैं, देखिए जब पशु अपना स्थान बदलता है, जब आप देखें पशु क्या, किसी बच्चे को भी दूसरे घर ले जाओ तो उसे जो है थोड़ा हेयर होता है, हाँ, लगेगा, है ना। हाँ हेयर, हेयर कर रही है थोड़ा सा। अब उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने देखिए सेंधा नमक का बड़ा सा डला लिया क्या कोई। अच्छा ना, सेंधा नमक, सेंधा नमक वैसे नहीं, सेंधा नमक का एक डला सा लेके और वो उसके अपने जहाँ आप चारा खिलाते हैं वहां पर रख दीजिए,
2: उसके खुट्टे के पास रख,
0: चारे चाटेगा उसे। हेलो
3: जी,
0: पशु उसको चाटेगा, चाटने से क्या होगा, उसको प्यास लगेगी, उसका खाने का टेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि आजकल क्या होता है ज्यादा हरा चारा रहता है, और बहुत ज्यादा हरा चारा भी जो है वो अच्छा नहीं। जी जी हाँ हाँ हाँ, और ये भी हो सकता है कि आपके पशु का जो है वो पेट जो है वो खराब हो, गैस वगैरह का बन रहा हो, क्योंकि जब दूसरी जगह चारा खाता है पशु जाके तो ये भी दिक्कत आ जाती है। तो आप ये कर सकते हैं कि अजवाइन आप नोट कर लें चाहे तो
3: बताओ।
0: हाँ आप अजवाइन, सौंफ और काला नमक, ठीक है, उन्हें ले लें, और गुड़ का जो है अजवाइन, सौंफ और काला नमक, ठीक है,
2: गुड़,
0: और उसे गुड़ में जो है मिला लें, ठीक है।
3: गुड़ कितना डाल लें,
0: मतलब ये अंदाज से डाल लीजिएगा, मान लीजिएगा एक एक गिंदौड़ा ले रहे हैं आप गुड़ का, तो उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी आप अजवाइन ले लें, थोड़ा सा काला नमक ले लें, टेस्ट के अनुसार आप समझते होंगे। हाँ तो इसको आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा। जी हाँ जी जी जी, इसको आप थोड़ा थोड़ा करके दो तो वो टेस्ट से खाएगा भी, और उसको पशु को भूख लगेगी, जो गैस आदि होगी वो भी रिलीज होगी उसकी, और पशु जो है आपका स्वस्थ होता चला जाएगा, चारा खाएगा आपका, ठीक है।
3: काला नमक, सौंफ, अजवाइन,
0: जी जी
2: जी जी,
0: गुड़ में मिला के देनी है ये,
3: गुड़ में मिला के देना,
0: ठीक है साहब। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत अच्छा सवाल।

0: राम भैया, देखिए उन्होंने पूछा है और हमारे बहुत सारे पशुपालक भाइयों के सामने इस तरह की समस्या आती भी है। और हम तो ये कहेंगे कि भाई आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर कोई जानकारी हमसे लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। नंबर उनको हम फिर दोबारा बता दें,
1: जी
0: हमारे नंबर है 94-570-78-288। दूसरा नंबर है 01341-230-105।
1: बिल्कुल, देखिए अभी हमारे किसान भाई पूछ रहे थे, पशुओं की बात कर रहे थे,
0: जी
1: तो
0: जी
1: हम अपने जब तक हमारे किसान भाइयों का फोन आता है तब तक एक चर्चा करना चाह रहे हैं कि आजकल देखिए एक समस्या रहती है प्रमोद भैया,
0: जी
1: कि जो पशुशाला है वहाँ पर थोड़ा सी नमी हो जाती है, तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो नमी को जो है हटा दें वहाँ से,
0: हाँ
1: यानी
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: रेत डाल सकते हैं नीचे या और कुछ भी कर दें। आजकल जो है हमारे जिन किसान भाइयों की पक्की पशुशाला है तो वो भैया अच्छा बिछावन के तौर पर जो
0: हाँ
1: है वो बेड डाल देते हैं, मोटा सा गद्दा डाल
0: जी
1: देते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो उसकी बढ़िया से धुलाई होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी गंदगी होने से क्या होता है, पशुओं के खुर के बीच में जो जगह होती है वहाँ पर किचकिच होती है, और आजकल जो है खुरपका मुंहपका रोग होने की संभावना बढ़
0: बिल्कुल
1: जाती
0: भाई, इस मौसम में संक्रामक रोग ज्यादा फैलते हैं, एक दूसरे पशु में चले जाते हैं, तो इस तरह की सब परेशानियों से बचने के लिए हमें साफ सफाई का ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है ही।
1: है।
0: और साथ ही भैया देखो, हम तो यही कहेंगे कि अच्छा चारा, अच्छा स्वास्थ्य और ये सब होना बहुत जरूरी है।
1: दूसरी एक और ये है कि देखिए शाम का समय होता है, जैसे हम भी कहीं बैठते हैं तो
0: हाँ
1: एकदम से मच्छर लगने लगते हैं, तो ये मच्छर और मक्खी पिस्सू और कलीली ये जो है पशुओं को भी लगते हैं,
0: बहुत परेशान
1: तो भाई
0: करते हैं।
1: इसके लिए शाम के समय में हल्का सा धुआं अगर कर दें आप नीम के पत्ते ऊपर रख के, तो उससे क्या होता है मक्खी मच्छर भाग जाते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पशु आपका आराम से चैन से बैठ जाता है, जुगाली करता है तो उसका भोजन पचता है, और फिर जो है वो अगर दूध दे रहा है तो उसका दूध की क्षमता बढ़ जाती है दूध देने की, और वैसा पशु है तो स्वस्थ होता है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सारी बातें बहुत बताई हैं और देखा हमारे सब जो सुनने वाले हैं वो इन सब बातों को नोट भी कर रहे हैं और भैया लगातार हमारे पास में फोन भी कर रहे हैं। एक फोन आ रहा है, पहले देख लेते हैं।
1: जी
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: किसान,
0: जी,
1: हेलो ये
0: हेलो किसान, हाँ बोलिए, कौन क्या कौन भैया बोल रहे हैं
1: जलालाबाद से बोल रहे थे क्या? जी, अपना नाम बता
0: जलालाबाद से
1: दीजिए,
0: बोल रहा है।
1: नाम बता दीजिए अपना,
0: मेरा नाम तो खालिक है जी।
1: क्या
0: जी
1: नाम?
0: खालिक जी।
1: खालिक जी।
0: जी
1: जी खालिक भाई बताइए, क्या आज पूछना चाह रहे हैं आप हमसे,
0: जी
1: क्या पूछना चाह रहे हैं आज आप हमसे?
0: मैं आपका प्रोग्राम बराबर सुनता हूँ साहब।
1: जी अच्छी
0: आपका
1: बात,
0: प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है।
1: जी जी
0: मेरी
1: बहुत शुक्रिया,
0: परेशानी यह है कि
1: जी
0: दूध हमारी भैंस ब्याह हुए 5-5 महीने हो गए,
1: छह महीने हो गए,
0: तो दूध बढ़ने का क्या तकलीफ है बता दो कि
1: अच्छा पांच
0: कितने
1: महीने हो गए,
0: जी।
1: अच्छा
0: ये भी चालू कर दी
1: अच्छा ये बताइए आप राति मिश्रण कितना दे रहे हैं उसको?
0: परसों घर वाले रोटी दे रहे, बूट दे रहे और चीनी दे रहे, उसको चीनी दे रहे, चीनी
1: चीनी भी दे रहे हैं आप?
0: हाँ चीनी और चीनी भी दे रहे जिसमें चाय पड़े
1: अच्छा
0: चाय
1: अच्छा
0: में
1: अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अंदाजन आपके जो पशु है आपके भैंस है या गाय है,
0: भैंस है सरकार
1: तो भैंस का अंदाजन वजन कितना होगा?
0: साहब।
1: तकड़ी मतलब मोटी ताजी है एकदम।
0: हाँ
1: अच्छा तो कितना एक दाना दे देते हैं मिला के सभी आप, ये दाना मिश्रण
0: तो
1: राती?
0: दाना तो बिना उसको चोकर चोकर दे रहे, एक
1: अच्छा
0: चोकर
1: देखिए आप
0: और रोटी भिगोनी उसे रोटी।
1: देखो जैसा आपका पशु है उसके हिसाब से कम 3 किलो पर मिलना ही चाहिए उसको, और मुझे लगता है 3 किलो कम से कम तकड़ी भैंस अगर आपको बता रहे हैं, तो अगर आप उतनी मात्रा में नहीं दे रहे हैं तो पशु कैसे अपना दूध बढ़ाएगा?
0: जी
1: साथ साथ आप हरा चारे में
0: दिस कॉल इज
1: कितना
0: नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
1: हरा चारा कितना दे रहे हैं आप?
0: हरा चारा में हरा चारा लाऊंगा इस तरह से लाऊंगी।
1: हरा चारा मतलब कैसे दे रहे हैं आप, उसमें भूस मिला के दे रहे हैं या निखालिस दे रहे हैं?
0: निखाली दे है वो उसमें डाले क्या
1: देखिए हरा चारा आजकल निखालिस नहीं देना चाहिए, उसमें भूसा जरूर मिला लेना चाहिए, ठीक
0: साहब
1: है? आजकल क्या होता है हरा चारे की अधिकता होने की वजह से किसान भाई क्या करते हैं कि भूसा चलो जब हमारा बरसात होगी या कुछ होगी तो बचा के रख लेंगे, तो वो गलत है। देखिए निखालिस या अति जो है किसी भी चीज़ की बुरी होती है, एक तो आप राति मिश्रण बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, और पशु के
0: जी
1: रातब मिश्रण बढ़ा दिए, रातब यानी कि ये चने की चूरी है, खल है, चोकर है, ये बढ़ा दीजिएगा,
0: अच्छा
1: हाँ, और थोड़ा मेथी भी उसमें डाल लीजिएगा थोड़ी मात्रा में, ठीक है?
0: मीठी
1: हाँ तो ये सब चीज करेंगे तो आपके पशु का जो है क्या होगा, स्वास्थ्य भी सही रहेगा और बढ़िया रहेगा, और जो आप हरा चारा दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा भूसा जरूर मिला दीजिएगा। जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: जी
1: तो
0: मीठी भी देने मीठी।
1: हाँ
0: हाँ
1: उसमें थोड़ी सी
0: बिल्कुल
1: मात्रा में देनी है, ठीक है?

0: तो मुझे उम्मीद है कि शायद फोन इनका कट गया है, तो अगर ये ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि इनका पशु जो है अच्छे
1: बिल्कुल।
0: उत्पादन।
1: देखिए, अगर हम पशु की अवस्था के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार, वजन के अनुसार, अगर हम उसको सही मात्रा में चारा दें, राती मिश्रण खिलाते रहेंगे, सही देखभाल करते रहेंगे, तो पशु की दूध की मात्रा जरूर
0: देखिए
1: बढ़ेगी।
0: आमतौर पे क्या होता है कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, थोड़ा सा आटा लिया वो डाल दिया कि हम तो रातिब दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए उसकी आवश्यकता है,
1: बिल्कुल
0: उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है कि अपने शरीर के साथ जो है दूध
1: जी
0: बनाने
1: जी
0: में
1: जी
0: ज़रूरत पड़ती है
1: जी
0: उसकी।
1: जी जी
0: एक और किसान भाई हमारे फ़ोन लाइन पे हैं, देखते हैं कौन भैया है।
1: हेलो हेलो,
2: हेलो, नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी।
0: जी।
1: जी
2: जी मैं आलोक चौधरी बोल रहा हूँ, गांव खजीपुरा जनपद अमरोहा।
1: जी
0: जी
1: जी
0: चौधरी
1: जी
0: साहब कैसे
1: बहुत
0: हैं?
1: बहुत स्वागत है आपका।
2: जी अच्छे हैं साहब, बहुत अच्छे हैं। आप सुनाए, आप कैसे हैं?
0: अच्छा,
2: जी
0: आपके यहाँ मौसम की क्या दशा है बता दीजिए।
2: मौसम तो कुछ बेहतर है, थोड़ा ठंडा है, लेकिन बारिश ज्यादा अच्छी नहीं है।
1: अच्छा,
0: जी जी जी जी
1: फसलें
0: बारिश
1: कैसी हैं
2: हल्की
1: इस समय आपके यहाँ, विशेष रूप से अगर
2: फसलें
1: हम बात
2: फसलें
1: करें
2: हाँ
1: गन्ने की
2: फसलें
1: और
2: तो
1: धान
2: बोला
1: की?
2: है। हाँ, बहुत
0: जी
2: अच्छी फसल है, गन्ने की भी धान की भी, अभी तक तो बहुत अच्छी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
2: अब आगे क्या स्थिति रहे अभी तो कहा नहीं जा सकता।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल सही बात है। तो और बताइए क्या आज सलाह लेना चाह रहे हैं हमसे?
2: सलाह सर ये है कि गाय है वो बीमार हो गई थी, 10-12 किलो वो बेची थी,
0: जी
2: हाँ,
0: जी जी
2: उसका उपचार कराया, बस ठीक ठीक हो गया, दूध उसका मात्र 1-1.5 किलो रह गया।
0: मतलब क्या
1: अच्छा,
0: क्या हुआ था दूध गाय को?
2: बीमार हो गई थी, बुखार हो गया था,
0: अच्छा
2: डॉक्टर वगैरह बुलाए, उपचार
0: हाँ।
2: हुआ, वैसे ठीक ठीक हो गई, लेकिन दूध में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है
0: देखिए
2: उसकी।
0: ऐसा है, जब कोई पशु बीमार होता है तो उसकी जो दुग्ध नलियां हैं ना वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, ठीक है? तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उसका दूध का उत्पादन तो दबेगा ही, यानी कि कम होगा। तो आप ये है देखिए, इसमें एकदम से बहुत ज़्यादा राते मिश्रण देना भी इसे ठीक नहीं है, ठीक है?
2: अच्छा,
0: तो
2: हल्का
0: उसका
2: फुल्का दिया जाए।
0: हाँ, थोड़ा थोड़ा दिए, धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ेगा। और इसमें जो है गेहूं और मक्का का दलिया अगर बना दें, और थोड़ा बिनौला और जो है सरसों की खली और थोड़ी सी मेथी दाना जो है 50 ग्राम के करीब, और थोड़ा जीरा और गुड़, ये मिला के सब चीज़ें
2: ठीक
0: देंगे तो आपका जो पशु है वो तेज़ी से जो है दूध पा जाएगा, है ना? आप कहें
2: है
0: तो एक
2: सर,
0: बार और
2: ठीक
0: बता दें।
2: है। जी जी
0: देखिए आपको जो
2: क्या
0: है क्या करना है, मक्का का दलिया या गेहूं का दलिया, है ना, जिसे दाना हम कह देते हैं, ठीक है?
2: हाँ, दाना में
0: थोड़ा थोड़ा सा बिनौले डाल लीजिएगा उसमें, सरसों की खली आपको पता ही है 1-2 किलो देनी है आपको, है ना? और रोज़ जो है 50 ग्राम या 25 ग्राम आप मेथी दे दें, और 85 ग्राम जीरा, और 200 से 400 ग्राम गुड़, ये गुड़ के साथ दे देनी है। मेथी मेथी तो दे सकते हैं आप रातिब के साथ, जीरा और जो है गुड़ के साथ मिला के देना है आपको, ठीक है?
2: गुड़ अलग से देना है।
0: हाँ, गुड़ दे दीजिएगा तो थोड़ा सा ना एकदम
2: अच्छा,
0: से पशु धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा।
2: पर फिर दूध पा जाएगा सही।
1: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये वैसे ही है जैसे जब मनुष्य कोई बीमार होता है और उसकी भूख लगने कम हो जाती है, धीरे धीरे फिर वो थोड़ा थोड़ा उसको हम जब खिलाते हैं या खाते हैं तो फिर हम उसी तरीके से भूख ठीक लगती है, स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है हमारा।
0: हमारे बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, चीनी दे देते हैं। हम चीनी को थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि ना दी जाए तो अच्छा है, तो गुड़ दें तो बढ़िया है, क्योंकि आपको पता ही है सारे जितने केमिकल से बचा जाए उतना बढ़िया है।
2: हाँ, गुड़ बेहतर है चीनी के
1: जी जी जी
0: मुकाबले, गुड़
1: बिल्कुल
0: तो बहुत
1: बिल्कुल।
0: बेहतर है। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए प्रमोद भाई, हम लगातार अपने किसान भाइयों के प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, और एक बार हम और बता दें कि भैया किसान भाई अगर आप अभी भी हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो अभी हमारे पास समय है ज़रा सा, तो हम आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो हैं जल्दी से फ़ोन कर दें, फ़ोन नंबर एक बार बता दीजिए।
1: बिल्कुल, हमारे नंबर हैं 94-570-78-288, दूसरा नंबर है 01-341-230-105, इन दोनों ही नंबरों पर आप हमारे पास में फोन कर सकते हैं।
0: जी
1: और भैया कोई भाई लाइन पर हैं?
0: जी
1: हेलो हेलो,
0: शायद फोन नहीं लग पा रहा है।
1: हेलो
0: हाँ जी, हेलो
1: हेलो
0: हेलो
3: हेलो
1: जी जी
0: जी
1: जी बोलिए, आप रेडियो सेट से थोड़ा दूर होकर बोलिए। हेलो,
3: हेलो, मेरा
1: अपना नाम बता दीजिए।
3: नाम छतरपाल है।
0: जी
1: अच्छा,
0: छत्रपाल जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप आज हेलो किसान में?
3: मैं पूछना चाह रहा हूँ, जीरो छठा गन्ना लगाया था।
0: जी

0: उसकी पत्ती पीली हो रही।
1: अच्छा
2: अच्छा अच्छा अच्छा, तो ऊपर की पत्तियां पीली हो रही है या सारी पत्ती पीली हो रही है?
0: ना, नीचे वाली पत्ती।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए जो पीली पत्तियां हैं कई कारण से हो सकती हैं, ज़्यादा जल भराव की वजह से भी हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से भी हो जाती हैं, और ज़्यादा यूरिया की मात्रा देने से भी हो जाती हैं। कई सारे कारण हो सकते हैं, असली कारण तो जो खेत को देखने के बाद ही पता चलेगा। पोषक तत्व की कई बार कमी होने से भी हो जाता है, कि हम कई बार के यूरिया यूरिया तो डाल देते हैं, जिंक आयरन आदि डालते नहीं हैं, तो इसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। जिंक डाला था क्या आपने मुंजी के बाद? तो गन्ना नहीं बोया आपने?
0: यूरिया डाला था हमने बस।
2: नहीं, मुंजी के
1: हाँ
2: खेत में बोया गन्ना एक कहे में?
0: गन्ना बोया, सरसों और बरसीम था इसमें।
2: नहीं, उससे
1: अच्छा
2: पहले क्या फसल थी? सरसों से पहले,
0: हाँ, सरसों
2: सरसों से पहले क्या बोया था?
0: से पहले तो
2: नहीं मतलब मुंजी वगैरह नहीं बोया। हाँ तो चरी, देखिए वो झकड़ा जड़ की बात है। देखिए जो ऐसी होती है ना
0: चरी थी।
2: चौड़ी
0: हाँ
2: वाली जड़ जो होती हैं, ये इनसे
0: हाँ
2: जिंक की कमी आ जाती है हमारे खेत में। ठीक है,
0: अच्छा
2: तो जिंक आपको जरूर डालना चाहिए। जिंक, जिंक सल्फेट अभी भी डाल सकते हैं, कोई बात, उसे किसी दूसरे खाद मिला के नहीं डालना होता है। ठीक है,
0: अच्छा
2: हाँ तो आप उसकी मात्रा डाल दीजिएगा। पर खेत तो आपका बहुत बड़ा बड़ा हो गया होगा गन्ना।
0: हाँ अब तो बड़ा हो गया।
2: हाँ, ये तो अगली बार जब ऐसे करें, जब भी आप गन्ना बोएं किसी ऐसी चीज़ में, या तो चरी के बाद बो रहे हैं या मुंजी के बाद, तो उसमें जिंक सल्फेट डालना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो प्रमोद भाई, देखिए आज बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमने दिए, और अपने किसान भाइयों को हम ये बता देते हैं
1: जी
2: कि
1: जी
2: देखिए ये कार्यक्रम हमारा हर महीने के पहले शुक्रवार को होता है और पांचवें शुक्रवार को होता है।
1: और भैया हमारा तीसरा जो शुक्रवार होता है उसमें हम हेलो गन्ना किसान कार्यक्रम अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं। और इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए किसान भाई हमारे पास में फोन कर सकते हैं, नंबर वो जानते ही हैं। हमारे नंबर हैं 94-570-78-288, और दूसरा नंबर है 01-3-4-1-2-3-0-1-0-5।
2: तो भैया देखिए, अब ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं, तो आज यहीं पर संपन्न करते हैं अपना विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसका नाम है हेलो
1: हेलो
2: किसान।
1: किसान।

0: तो हमारे किसान भाइयों ने भैया अभी सजीव फोन इन कार्यक्रम सुना हेलो किसान, और
1: बिल्कुल
0: प्रमोद भैया देखो बात ये चल रही थी कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही
1: हाँ
0: है
1: भैया हाँ
0: और ऐसे में भैया सबसे ज्यादा तो जो परेशानी होती है वो हमारे पशुओं को होती है।
1: बिल्कुल
0: देखो आदमी का क्या है भाई, यहाँ चला जाएगा वहाँ चला जाएगा, छतरी लेकर चला जाएगा कहीं चला जाएगा, लेकिन पशु बेचारा कहाँ जावे।
1: जी
0: तो भैया हमें चाहिए ये है कि अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए जो है अपनी पशुशाला को साफ रखें।
1: बिल्कुल साफ
0: जिन्होंने
1: सुथरा
0: गद्दे बिछा रखे हैं तो भैया उन गद्दों की अपने प्रॉपर जो है सफाई होनी चाहिए, और शाम के समय में भैया धुआं जरूर कर देवें
1: जी
0: जिससे जो है मक्खी मच्छर बाहर चले जावें,
1: हाँ हाँ
0: और अगर आपने पंखा आदि लगा रखा है तो भैया पंखे की व्यवस्था भी जरूर करनी चाहिए।
1: देखो ये सारी बात तो हमें करनी होती है, और साथ ही साथ भैया देखो इस बरसात के मौसम में चारे की भी बहुत परेशानी होने लगती है, तो चारे की भी सही तरीके से व्यवस्था बनाकर रखें, और समय रहते अगर हम अपने पशुओं को हरा चारा देते रहेंगे, उनको खिलाते रहेंगे, तो हमारा जो पशु है वो एकदम स्वस्थ रहेगा। और भैया कोई मौसम मौसम की भी जानकारी है क्या?
0: बिल्कुल भैया, चलते चलते मौसम की जानकारी दे दें, और जानकारी हमें प्राप्त हुई है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के ग्रामीण मौसम सेवा से। तो भैया इनके अनुसार भैया आने वाली 10 तारीख तक जो
1: हाँ
0: है हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी,
1: अच्छा
0: और इसी प्रकार का मौसम जैसे बना हुआ ऐसे बना रहेगा। तो ऐसे रिमझिम मौसम के हिसाब से भैया अपनी खेती किसानी के जो काम है उन्हें अंजाम देवें। और प्रमोद भाई अब देखो समय जो है ज़्यादा बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो इसी के साथ आज का कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया आलोक कुमार गंगाराम
1: और भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों
0: राम
1: राम
0: राम।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर।

0: संध्या के 6:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, विविधा के अंतर्गत लीजिए अब सुनिए श्रृंखला हुनरबाज, जिसमें आज हमारे प्रतिभाशाली मेहमान हैं पंकज लोचन गोस्वामी, जिनसे बातचीत कर रहे हैं शोभित शर्मा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हुनरबाज की इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जो हुनरबाज मेहमान हैं उनका नाम है पंकज लोचन। पंकज लोचन धामपुर से आते हैं और क्या क्या हुनर उनके अंदर है, क्या क्या स्किल्स वो लेकर हमारे साथ आए हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। पंकज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पंकज जी, जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है हुनरबाज, हम हमेशा कहते हैं कि स्पेशली ऐसे टैलेंट्स को हम अपने श्रोताओं से मिलवाना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो ऑफिशियली अभी हमारे साथ, जैसे कि हमारे संगीत के ग्रेडेड आर्टिस्ट होते हैं तो ग्रेडेड नहीं है, या फिर हमारे नाटक के आर्टिस्ट होते हैं, ड्रामा आर्टिस्ट। तो आज हम आपसे जानेंगे कि कौन सा हुनर आपके अंदर छुपा हुआ है जो हमारे श्रोताओं को भी, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जो आपसे बात करके, आपकी बात को सुन के शायद वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस में डालें।
2: सबसे पहले मैं आपका आभार करना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इनवाइट किया। मैं एक्टर हूं और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे श्रोताओं को नहीं पता होगा कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पहला NSDN हूं। NSDN मीन्स आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मेरा स्पेशलाइजेशन है एक्टिंग में। 2013-16 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD न्यू दिल्ली। तो 6 बार मैंने ट्राई किया NSD, तो 6ठे अटेम्प्ट में मेरा NSD हुआ, क्योंकि NSD इज लाइक MBBS एंड IS, क्योंकि 20 सीट पर सिलेक्शन होता है 20 लोगों का, और जिसमें कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है वहां पर पहुंचना। तो मुझे लगता है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के श्रोता हैं उनको शायद नहीं मतलब पता होगा कि NSD भी कुछ है।
1: जी, मैं अपने श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि जैसे अभी पंकज जी ने जिक्र किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बेहद प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग में करियर बनाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी आपने बताया कि जनपद बिजनौर के आप पहले शख्स हैं
2: जी,
1: और इनफैक्ट अभी तक भी मेल के रूप में आप अकेले हैं, शायद फीमेल मेंबर और कोई भी हो, लेकिन मेल के रूप में आप अकेले बिजनौर के शख्स हैं जो NSD के पास आउट है। अब चूंकि पंकज जी NSD का जिक्र हुआ, NSD बहुत बड़ा संस्थान है, मुझे लगता है कि जितने भी आज की तारीख में हम पुराने समय की भी बात करें तो मंझे हुए जो एक्टर्स रहे हैं वो कहीं ना कहीं NSD का इम्प्रिंट उनके ऊपर रहा है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं। जब आप एक छोटे से शहर से बिजनौर जिला, और उसमें भी एक छोटी जगह धामपुर, आप ऐसा नहीं कि आप हेडक्वार्टर से सीधे गए, तो आप जब धामपुर से NSD गए तो आपको कैसा लगा वहां जाकर?
2: मेरे लिए तो NSD जाना हमेशा से मेरा एक ड्रीम रहा था, तो जब मैं वहां पहुंचा, मतलब एक ऐसा था, मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मेरा वहां सिलेक्शन हो गया। तो वो तो मेरे लिए आई कांट एक्सप्लेन, मेरे पास शब्द नहीं है उसके लिए। मगर हाँ, मैंने जैसा अभी कहा, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, और मुझे अनुभव मेरा वहां पर, आपको ना 3 साल वो सब कुछ दिया जाता है, वो सब कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, जो एक एक्टर को चाहिए होता है, तो वो मुझे चाहिए था, जो मुझे बाहर नहीं मिल रहा था। मुझे वहां खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, अपने अभिनय को तराशने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, क्या होता है कि आपको जब तक जिम्मेदारी नहीं मिलती है, मुझे बाहर बहुत छोटा बड़ा कैरेक्टर कुछ नहीं होता, मतलब उतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल रही थी बाहर। मैं वहां गया तो मुझे एक्सपोजर मिला, मुझे बड़े बड़े, जैसे मैंने जूलियस सीजर में कैसियस का कैरेक्टर किया, वो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था। मैंने आषाढ़ के एक दिन में बहुत बड़ा कैरेक्टर किया, आधे अधूरे, मतलब मैं ये इस तरह के प्ले बता रहा हूँ जो आपको एक पूरा प्ले लेके चलना पड़ता है, तो आपको उसमें सारे इमोशंस, सारे उसमें रस होते हैं, आप एक कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं, तो वो सब कुछ मुझे मिला वहां जाके, तो मेरे लिए तो वो बहुत ही एक ऐसा अनुभव रहा है जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ।
1: NSD के बाद की, अगर आगे की आपकी जर्नी की बात करें, चूंकि जब NSD का लेबल आपके ऊपर लगता है तो जाहिर तौर से जो निर्माता होते हैं या और किसी भी फिल्म मेकिंग के अलावा नाटक या कोई सीरियल्स वगैरह में भी, तो वो तलाशते हैं आपकी जैसी प्रतिभाओं को, तो उसके बाद की जो आपकी जर्नी रही है, कहाँ कहाँ पर आपने अभिनय किया या किन प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहे?
2: सर, मैंने NSD से पहले ही मैंने कुछ कैमरे के लिए काम किया था, जिसमें कि एक था स्वप्न नगरी, उसके डायरेक्टर थे आकाश आहूजा, वो मैंने दिल्ली में ही किया था, और एक किया था हम बच्चे हिंदुस्तान के, और एक ऐड किया था डिजिटल सेटअप बॉक्स का, जब ये सब कुछ डिजिटल हो रहा था तो वो सभी चैनल्स पे आया था। तो मैंने अनुभव कैमरे का एनएसडी से पहले किया था, और एनएसडी से पहले मैंने एमए मास्टर इन एक्टिंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वहां से भी किया है। तो एनएसडी के बाद मैं मुंबई गया, सिचुएशन कुछ ऐसी रही कि पापा की तबीयत खराब हुई, मुझे वापस आना पड़ा। तो वहां भी मैंने कुछ टीवी सीरियल किए, जैसे एक सीरियल था अटल बिहारी वाजपेयी जी पे, वो मैंने किया, और कुछ शॉर्ट्स फिल्म की, कुछ ऐड किए। तो हर किसी का सपना होता है कि वो अपने अभिनय को कैमरे के सामने, लोगों के सामने लेके जाए। तो लोगों ने मतलब मुझे काम दिया है, मगर मेरी सिचुएशन कभी कभी ऐसी रही कि मैं अभी भी मुंबई में जाता रहता हूँ और प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा रहता हूँ। अभी बिफोर मंथ मैंने एक आई लव फुलिंडा करके एक फिल्म है कि मुंबई की टीम है, उसमें मैं एक्टिंग कोच रहा हूँ, तो उसके साथ मैं जुड़ा रहा हूँ। वो फिल्म अभी रिलीज होने वाली है कुछ समय में।
1: पंकज जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया एक्टिंग कोच, हम एक्टिंग कोचिंग के बारे में आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो मैंने देखा, आपका रिज्यूमे देखा, उसमें आप फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी जुड़े रहे हैं, इनफैक्ट आप फाउंडिंग मेंबर भी हैं एक इंस्टीट्यूशन के, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे खुद एक्टिंग करने से लेकर दूसरों को एक्टिंग सिखाने तक की जो एक जर्नी है, कैसे आपने इस एरिया में कदम रखा।
2: मुझे लगता है कि जो एक अच्छा अभिनेता है उसको अभिनय के क्राफ्ट के बारे में पता होता है। तो जैसे कि हमारे एक पास आउट हैं नसरुद्दीन शाह, वो बहुत बड़े एक्टिंग कोच भी हैं और बहुत अच्छे एक्टिंग डायरेक्टर भी हैं वो। तो वो उनका अपना थिएटर ग्रुप है और वो अभी तक कोचिंग सिखाते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि जब आप सिखाते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं, क्योंकि अभिनय में ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है कि ऐसा ही होगा, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है उसमें। जो जिंदगी में घटता है, जो आम लाइफ में होता है, वही आप कैमरे के सामने, ऑडियंस के सामने करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं एक्टिंग सिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो उसमें हर बार एक नया एक्टर होता है, नया स्टूडेंट होता है, तो उससे मुझे खुद एक नया एक्सप्रेशन, नया इमोशन और खुद मेरी प्रैक्टिस होती है, वो मुझे प्रेरित करती है कोचिंग के लिए। मैं खुद सीखता रहता हूँ।
1: अपने कुछ इनिशिएटिव्स जो आपने स्पेशली इस एक्टिंग कोचिंग में आपने किए हैं, आपने कोई इंस्टीट्यूशन?
2: यस, जैसे कि अभी मैंने दून फिल्म स्कूल 3 साल रन किया है, मैं उसका को फाउंडर पार्टनर भी हूँ अभी भी, उसमें मैं एक्टिंग डायरेक्टर रहा हूँ, वो देहरादून में है दून फिल्म स्कूल। दिल्ली में एक क्राफ्ट फिल्म स्कूल, वहाँ मैंने कोचिंग की है, और इंडियन हाइट एक स्कूल है, वहाँ की है। मुंबई में द क्राफ्टर्स करके है, 5 सेंस एक इंस्टीट्यूशन है। तो अलग अलग जगह जाकर मैं अलग अलग तरह से कोचिंग देता हूँ किसी को। कई बार कोई प्ले कराते हैं, कोई सीन वर्क कराते हैं, कैमरा एक्टिंग कराते हैं, तो अलग अलग जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, मैं एसोसिएट हूँ।
1: पंकज जी, आप जिस फैमिली से हैं धामपुर में, आपके यहाँ थिएटर का बहुत जबरदस्त एक्सपोजर है, आपके जो ब्रदर हैं वो बहुत थिएटर के जाने माने अभिनेता हैं यहाँ के, तो थिएटर से कितनी हेल्प आपको मिली, आपकी फैमिली के बैकग्राउंड से कितनी हेल्प आपको मिली एक बेहतरीन एक्टर बनने में, एक बेहतरीन एक्टिंग कोच बनने में?
2: मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे फादर ही इज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, वो अभी मेरे हमारे साथ नहीं है, बट मेरी मेमोरी में, मेरी स्मृति में वो हमेशा मेरे साथ हैं, और मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। तो वो मेरी पहली पाठशाला है अभिनय की, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे भाई ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उनका कहना यही था कि आपको अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में जाओ और वहाँ काम करो। तो उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे अभिनय करना सिखाया, तो उनका तो हमेशा मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया।
1: जब यहाँ के बाद आप NSD जाते हैं, इनफैक्ट उससे पहले आपने बताया कि आपको ऑलरेडी एक्सपोजर था कैमरे का, तो लेकिन ये जो थिएटर का बैकग्राउंड है, स्पेशली मैं कहूंगा कि Tier 3 सिटी, उसमें भी एक छोटी सी तहसील से आप गए, तो आप कुछ ऐसा अपने साथ लेकर गए जो आई बिलीव कि वहां जो बाकी के कैंडिडेट्स होंगे 19 शायद उनके पास ना हो, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह से जाना, उसके बाद थिएटर का इतना बड़ा एक लेगेसी साथ में लेके जाना, तो उसका कैसा आपकी परफॉर्मेंस पर NSD में कैसा असर रहा?
2: वो हमेशा होता है, मतलब जैसे मैं हूँ वैसे ही हर बैच में NSD में एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, तो उसका फर्क पड़ता है हमेशा। उसका फर्क ऐसे पड़ता है कि आपकी परफॉर्मेंस में एक गंभीरता नजर आती है, एक डीपनेस नजर आती है, स्टेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि एक्टिंग थिएटर इवन फिल्म्स भी, ये सब चेन वर्क है। मतलब ये एक, जब तक आप

0: एक दूसरे को लेके नहीं चलोगे। जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता वो अपने आप को ही दिखाना चाहते हैं, और जिनको एक्सपीरियंस होता है वो सबको साथ में लेके चलते हैं, और आपकी परफॉर्मेंस अलग से दिखती है। आप डायरेक्टर की बात सुनते हो, आप अपने स्कूल की बात सुनते हो, मतलब अपने प्रोडक्शन की बात सुनते हो, पूरी टीम को लेके चलते हो। तो मुझे लगता है वो तो मुझे मेरी परफॉर्मेंस में भी लगा और वो मैंने फील भी किया, और वो मेरे टीचर ने भी मुझे बोला। तो मुझे मेरे टीचर हमेशा बोलते थे कि यू आर ए वेरी गुड सिंसियर एक्टर, और मैं अपनी क्लास में सेकंड नंबर पर था ऑलवेज, जब जो मार्किंग होती है तो उसका फर्क पड़ता है।
1: या बल्कि यूं कहें, हर मायने में जो हमारा ना चाहते हुए भी वो प्रतिबिंबित होता है कि हमारा परिवेश कैसा रहा। तो चूंकि आप बिजनौर से हैं, तो क्या कभी बिजनौर का जो डायलेक्ट है वो आपकी किसी रूल में या किसी अभिनय श्रृंखला में कहीं पर परिलक्षित हुआ हो, कहीं पर दिखाई दिया हो, ऐसा कभी हुआ या कहीं कोशिश की हो आपने?
0: क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि डायरेक्टर की बात सुननी चाहिए, मतलब जैसे डायरेक्टर बोलते हैं आपको वैसा करना है, क्योंकि यू आर प्रोफेशनल एक्टर। अगर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ तो आई एम नॉट प्रोफेशनल। तो मैं हमेशा उनकी बात सुनता हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बोला गया कि आप बिजनौर का जो एक्सेंट है, डायलेक्ट है, वो लेके आइए। आया भी नहीं कभी।
1: वी कैन से यू नेवर गॉट चांस।
0: और आया नहीं, जैसे कि क्या होता है ना कि बहुत सारे एक्टर का, जैसे मैंने देखा है मेरे कुछ को एक्टर जैसे बिहार से हैं या किसी भी एक स्टेट
1: से, प्रदेश से हैं, या
0: बोलने में वो डायलेक्ट आता है, एक्सेंट आता है, मुझे लगता है नहीं आना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि आपको कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करना चाहिए कि यू आर फ्रॉम यूपी या यू आर फ्रॉम बिहार। तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है। ढेर सारी बातें हमने आपसे की पंकज जी, आपके हुनर के बारे में हमारे श्रोताओं ने जाना, स्पेशली जो इस क्षेत्र के श्रोता हैं, और उसमें भी स्पेशली जो फिल्म मेकिंग में या एक्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए जो रास्ता है कट आउट है कि आप NSG जाइए, उसके बाद आपके जो अभिनय प्रतिभा है उसको नए आयाम मिलते हैं। उसके साथ में हम ये भी कहेंगे कि अगर किसी तरीके की, किसी भी प्रकार की ऐसे किसी श्रोता को जो एक्टिंग में करियर बनाने का इच्छुक है और किसी तरह की राय की आवश्यकता है, गाइडेंस की सकता है, तो पंकज जी हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर।
0: आई एम ऑलवेज, जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ और निस्वार्थ उनके साथ हूँ। मैं उनको हमेशा पुश करूंगा, उनको गाइड करूंगा।
1: ठीक है पंकज जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने अपना समय दिया, और उसके साथ में हम ये उम्मीद भी करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे जो आपकी आकांक्षाएं हैं, जो आपने सोचा है करियर के क्षेत्र में या एक्टिंग के क्षेत्र में या फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में, वो सारे सोपान आप प्राप्त करें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका बहुत सारा धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, और इसके अंतर्गत आज बातचीत हो रही थी प्रतिभाशाली मेहमान पंकज लोचन गोस्वामी से शोभित शर्मा की। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें कि संसद समीक्षा रात 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों के फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद का सजीव प्रसारण होगा रात 9:30 से रात 10:30 तक। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर 9457078288 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम रात के हम सफर का प्रसारण किया जाएगा रात 10:30 पर। तो हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के लिए भी हमारा नंबर यही है 9457078288। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। शाम के 7 बजने को हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत का। तो नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का फिल्म संगीत के कार्यक्रम छाया गीत में, और आज का ये कार्यक्रम लेकर आपके बीच उपस्थित हूं मैं राजवीर सिंह। श्रोताओं, शाम का ये वक्त होता है जो दिन भर की भागदौड़ के बाद थोड़े सुकून की तलाश में हमें मिलता है, और जब बात सुकून की हो तो पुरानी यादों और सदाबहार नगमों से बेहतर

क्या हो सकता है। आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं मौसम की बारिश और मोहब्बत के नाम इस खूबसूरत शायरी से। मौसम की पहली बारिश सा एहसास हो तुम, मौसम की पहली बारिश सा एहसास हो तुम, दूर होकर भी मेरे दिल के पास हो तुम। इन गिरती हुई बूंदों में छुपी है एक दास्तान, जैसे सदियों से अधूरा कोई ख्वाब हो तुम। जी हाँ श्रोताओं, रिमझिम बरसती बूंदों में जब किसी की याद सताए तो दिल बस एक ही गाना गुनगुनाता है। तो आइए सुनते हैं साल 1979 की फिल्म मंजिल से योगेश जी के लिखे और आर डी बर्मन के संगीत से सजे इस गीत को, जिसे अपनी मखमली आवाज दी है सुर कोकिला लता मंगेशकर ने।

फिल्म मंजिल से भी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। योगेश के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। श्रोताओं, बारिश का ये सिलसिला जब आगे बढ़ता है तो सिर्फ संजीदगी नहीं बल्कि थोड़ी नटखट शरारत भी साथ लाता है। जी हाँ, किसी भीगी हुई रात में जब कोई अचानक सामने आ जाए तो दिल की धड़कनें कैसे मचल उठती हैं। वो जुल्फों से पानी का टपकना और वो मुस्कुराना, वो जुल्फों से पानी का टपकना और वो मुस्कुराना मुश्किल कर देता है दिल का संभल पाना। एक अजनबी सी मुलाकात।

मुलाकात बन गई जीने का बहाना। बस यही है मोहब्बत का पहला अफसाना। श्रोताओं, ऐसी ही एक भीगी भागी रात और एक खूबसूरत अजनबी की कहानी बयां करता है हमारा ये अगला गीत फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे और एचडी बर्मन के जादुई संगीत से सजाए इस गीत को किशोर कुमार ने अपनी शरारती और बेमिसाल आवाज से अमर कर दिया। तो लीजिए, पेश है फिल्म चलती का नाम गाड़ी का ये गीत।

चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म में भी आपने सुना मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत एच डी बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज में। श्रोताओं, किशोरदा की आवाज का जादू आज भी उतना ही ताजा है जितना सालों पहले हुआ करता था। चलिए अब शाम की तरफ चलते हैं, और जब शाम इतनी मस्तानी हो तो महफिल अधूरी कैसे रह सकती है। तो आइए आज के छाया गीत का समापन करते हैं। साल 1971 की सुपरहिट

फिल्म कटी पतंग के सदाबहार नगमे के साथ। आनंद बख्शी साहब के लिखे और एक बार फिर आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। ये ढलती हुई शाम और ये मदहोश नजारे लगता है जैसे थम गए हैं वक्त के थारे। तुम्हारी यादों का साया है या हर तरफ बिखरा, तुम्हारी यादों का साया है अब हर तरफ बिखरा, अब तो बस हम हैं और ये दिल है तुम्हारे सहारे।

314.7 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:15 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। संसद समीक्षा रात 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद पेश किया जाएगा 9:30 पर। शाम 7:32 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात रात के हम सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। और अब एक नजर डाल लेते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम 10:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। इस सप्ताह संसद में हुई कार्रवाई की समीक्षा 8:00 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे और इस सप्ताह विधानमंडल में हुई कार्रवाई की समीक्षा हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे 8:20 पर। सुगम संगीत के अंतर्गत कल शाम 7:32 पर सुनिएगा सुमन कल्याणपुर के गाए भजन। विविध क्रम में शाम 6:45 पर अपर्णा चौहान की वार्ता का विषय होगा भारत के इतिहास में काल विभाजन का प्रश्न। कृषिगत कार्यक्रम के अंतर्गत कल शाम 6:05 पर क्रम रहेगा हेलो लोकमंजरी। कल शाम 5:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। शाम 5:00 मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जानकारी देंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना और दुकानदारों व्यापारियों और स्वनियोजित के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत कल अपराह्न 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे सुमित्रा रावत और साथियों के गाए गढ़वाली लोकगीत। विविध कलाकारों के स्वर में रुहेलखंडी लोकगीत आप सुनेंगे कल प्रातः 9:25 पर लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत। जिले की हलचल हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे कल प्रातः 9:15 पर। सूरज के साथ साथ इस कार्यक्रम की सजीव प्रस्तुति होगी कल प्रातः 7:31 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम जिंदगी लाइव का सजीव प्रसारण होगा कल दोपहर 12:05 पर और महिला जगत कार्यक्रम पेश किया जाएगा कल दिन में 1:15 पर। तो श्रोताओं ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:18 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
1: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
2: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
1: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बनेगा जनपद। और राज्य में लगातार बारिशों से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा, वाराणसी के असी घाट पर बदला गंगा आरती का स्थान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में साल 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। वस्त्र मंत्रालय के इस कार्यक्रम में वाराणसी के दो बुनकरों समेत 22 लोगों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहल की है।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: कार्यक्रम में वाराणसी के नसीम अंसारी को इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी बुनाई में उत्कृष्टता के लिए बुनाई श्रेणी में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं शाह मोहम्मद अंसारी को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार लुप्त प्राय बुनाई श्रेणी में सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए इन दोनों बुनकरों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धि प्रदेश के समस्त शिल्पकारों और बुनकरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हैंडलूम और पावरलूम उद्योग विकास योजना और झलकारीबाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना के लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रमुख संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हथकरघा और पावर लूम से करीब 30 लाख लोगों की आजीविका जुड़ी है। सरकार ने 40,000 से अधिक हस्तशिल्पियों को विद्युत सुविधा के रूप में 109 करोड़ रूपए का लाभ दिया है। मुख्यमंत्री ने हथकरघा उत्पादों को डिजाइन, तकनीक, पैकेजिंग और मार्केटिंग के जरिए वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को उपहार में देने की अपील भी की।
2: हमारा प्रयास यही होना चाहिए, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अम्बेडकर नगर में 706.81 करोड़ रुपए की लागत वाली 194 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अम्बेडकर नगर विकास के मॉडल के रूप में खुद को स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अम्बेडकर नगर को एक्सप्रेसवे से जोड़कर जिले को विकास में गति दी है। सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु भी अम्बेडकर नगर को बनाया जा रहा है।
3: नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थ नगर के बांसी से होते हुए, बसी होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको हम प्रयागराज तक पहुँचाएंगे।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज

0: AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर प्रदेश के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में नशा मुक्ति अभियान को प्रभावी और सतत बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में प्रतिदिन विद्यार्थियों को नशा मुक्ति शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही रन फॉर नशा मुक्ति, मैराथन, नुक्कड़ नाटक जैसी जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए पूरे प्रदेश को 5 जोन में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक सुनिश्चित की जाएगी। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कांवड़ यात्रा का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कांवड़ यात्रा की समीक्षा करते हुए कहा कि आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है। इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उधर मुजफ्फरनगर में हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़िये शिव चौक स्थित मंदिर में बाबा भोलेनाथ के समक्ष माथा टेक कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जिले के सभी मुख्य मार्ग बंद होने के कारण शिवरात्रि तक स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी कर दी गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और एटीएस के जवान तैनात किए गए हैं। मेरठ में कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए सेवा शिविर लगाए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। बिजनौर में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारी लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर निगरानी रख रहे हैं।
2: समय समय पर डेली ऑफिसर्स डेली जो है ड्यूटीज चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना आवश्यक है। प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार का जो है कॉन्फ्लिक्ट ना हो कांवड़ मार्ग के साथ। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक जहां पर भी डुअल लेन हाईवेज है वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि आने जाने के मार्गों का सेपरेशन रहे और किसी प्रकार की जो है ओवरटेकिंग इत्यादि की कोई दुर्घटना ना हो।
0: पहाड़ी क्षेत्रों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के चलते वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, मिर्जापुर, प्रयागराज, जौनपुर और आजमगढ़ में गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन और आपदा प्रबंधन एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। बढ़ते जलस्तर के कारण 80 घाट पर होने वाली आरती के स्थान को 10 फीट ऊपर कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के बाद गिरावट आने का अनुमान भी जताया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वाराणसी के 2 बुनकरों समेत 22 लोगों को प्रदान किए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। कहा, समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम है ये क्षेत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित। हथकरघा उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने अंबेडकर नगर को 194 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, सिद्धार्थनगर से शुरू होने वाले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बनेगा ये जनपद। और राज्य में लगातार बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। वाराणसी के 80 घाट पर बदला गंगा आरती का स्थान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। इस समय संध्या के 7:31 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात, और यह है कार्यक्रम की पहली पेशकश।

आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अगली नात, एक बार फिर इफ्तिखार अहमद और साथियों की आवाज़ों में।

कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं इफ्तिखार अहमद और साथियों की गाई नात। और अब समय है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति का।

0: इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात के 8 बज रहे हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृह मंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहां चर्चा होगी गृहमंत्री अमित शाह जब यहां जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहां निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक हैं, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा।
इसमें ये भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी।
सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने

हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग पर विचार करें। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुल्ता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को जीआई टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बजे बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कलवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉ एम थम्बी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थम्बी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त रात के 8:15 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का यह पहला गीत जिसको हमने लिया है फिल्म

चल रख दे मेरा रोकड़ा। क्या बात है, श्रोताओं सुनकर ही मजा आ जाता है। सुना भी आपने फिल्म चाचा भतीजा का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं अब वक्त है थोड़ा और रोमांच

0: अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म तीसरी मंजिल में।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। और श्रोताओं, अब समय है कुछ प्यार भरी नोकझोंक का। 1973 की फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया का ये आइकॉनिक सॉन्ग जो आज भी उतना ही ताजा लगता है, आनंद बख्शी के बोल और लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में। ये गाना झूठ के इर्द गिर्द घूमती मासूमियत को दर्शा

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत संध्या। यह आकाशवाणी का नजीब आबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय रात के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से। एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म है सन 1985 में आई महान निर्देशक रमेश सिप्पी की फिल्म सागर। श्रोताओं, सागर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि सुनहरे पर्दे पर बिखेरा हुआ एक जादुई एहसास था, और इस जादू की सबसे बड़ी वजह थी बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा डिंपल कपाड़िया की 12 साल बाद पर्दे पर जबरदस्त वापसी। उनके साथ थे चॉकलेटी बॉय ऋषि कपूर और अभिनय के बेताज बादशाह कमल हासन। एक ऐसा लव ट्रायंगल जिसने प्यार और कुर्बानी के मायने ही बदल दिए। श्रोताओं, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी धड़कन थी वो था इसका म्यूजिक, आर डी बर्मन साहब का संगीत और जावेद

अख्तर के लिखे गीत। तो चलिए इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं और चलते हैं समंदर की उन लहरों के पास और सुनते हैं किशोरदा की आवाज में ये सदाबहार नगमा।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम के तहत हम आपको सुनवा रहे हैं 1985 में आई फिल्म सागर के कुछ गीत। श्रोताओं, जब भी समंदर की लहरों, ढलती शाम, बारिश की बूंदों या फिर अधूरे प्यार की बात होती है तो कानों में धीरे से ये धुन गूंजने लगती है।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को भी आप सुन रहे थे फिल्म सागर में, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म

सागर के कुछ गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और चलते चलते अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की युगल आवाज में फिल्म सागर का ये गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और इसके अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म सागर के कुछ गीत। यह आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात के 8:45 हो रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद

0: शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों में स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौतों पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
4: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
6: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में JPSC और JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
7: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
8: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
9: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
10: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। पार्लियामेंट ने एमएसएमई तरक्याती बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद तेज तर अदायगी और तनाजात के जल्द इजाले को यकीनी बनाना है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में दहशतगर्दी, मुकासमत और तशद्दुद से पाक माहौल में ही पेशरफ्त हो सकती है। भारत ने बैनुल अक्वामी समंदर में महफूज और बिला रोक टोक जहाजरानी के अपने अज़्म को दोहराया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके दौरान मजमू खरीदारी 20 लाख करोड़ रुपए मालियत से तजावुज कर गई है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई यूथ और जूनियर

0: वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप्स में भारत की तितली माझी ने उज्बेकिस्तान में खवातीन के 45 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। इंतहाई छोटी छोटी और दरमियानी दर्जे की सनअतों की फरोग के तरमीमी बिल 2026 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पार्लियामेंट ने मंजूर कर लिया। इस बिल को राज्यसभा में पीर के रोज मंजूर कर लिया गया था। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के बाइस खलल पड़ा। अपोजिशन अराकीन के जरिए जारी शोर शराबे के बाइस दोनों ऐवानों की कार्रवाई जोहराने से कबल दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन के शोर शराबे की वजह से दोनों ऐवानों में वक्फा सवालात की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इससे कबल दोनों ऐवानों में भारत छोड़ो तहरीक की 84वीं सालगिरह के मौके पर तमाम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया गया। लोकसभा की कार्रवाई इंतहाई छोटी छोटी और दरमियाने दर्जे की सनातों की फरोग तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी के साथ पूरी की गई। राज्यसभा ने पीर के रोज इस बिल को मंजूरी दे दी थी। चूंकि दोनों ऐवानों की कार्रवाई जल्द ही मुलतवी कर दी गई, इसलिए प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं किया जा सका। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: भारत ने मुजवजा गैर मुल्की अतियात जाब्ता तरमीमी बिल से मुतालिक अमरीकी कानून साज के जरिए उठाए गए एतराजात को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि भारत के कानूनी मामलात उसके अंदरूनी मामलात हैं जिनके लिए पार्लियामेंट के जरिए फैसले किए जाते हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब देते हुए ये बात कही। जनाब जायसवाल ने वाजे किया कि अमरीका समेत बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो गैर मुल्की फंड्स के लेन देन को मुंजबित करते हैं।
2: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है जो विदेशी कोष को विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: भारतीय बहरी जहाजों और जहाजरानों के तहफ्फुज और सिक्योरिटी से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस मामले को आला तरजीह देता है। उन्होंने कहा कि तमाम खलीजी खित्ते में भारतीय मिशन उन मालिक में जहाजरानी की वजारत और समंदरी हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में हैं। उन्होंने कहा कि 24 घंटे सातों दिन हेल्प लाइन्स फाल हैं ताकि अगर किसी शख्स को मदद की जरूरत हो तो वो उन तक रसाई कर सके। ये हेल्प लाइन्स पिछले कुछ महीनों से मुसलसल फाल हैं। उन्होंने कहा कि भारत बैनुल अक़वामी समंदर में महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी और आज़ादाना तिजारत के लिए जोर देता रहा है। भारत ने तमाम फरीकैन पर जोर दिया है कि वो शहरी ढांचे और गैर फौजी बहरी जहाजों और जहाजरानों को निशाना बनाने से गुरेज करें। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने इस बात को दोहराया कि भारत का उस तकरीब में कोई किरदार नहीं था।
2: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई है।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान गुज़श्ता रात टेलीफोन बातचीत से मुतालिक वज़ारत-ए-खारजा के तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों ने मग़रिबी एशिया में जारी सूरत हाल और बदलते हुए हालात का जायजा लिया। उन्होंने मजीद कहा कि यह फोन इसराइल की जानिब से किया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की इसराइल के साथ खुसूसी जामे शराकतदारी है। तर्जुमान ने कहा कि दोनों लीडरों के दरमियान बातचीत के दौरान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इस सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान हालिया दिफाई माहदे से मुतालिक जनाब जायसवाल ने कहा कि भारत इन मामलों पर करीबी नजर रखे हुए है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत अफ्रीका फोरम चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़द करना चाहता है। दोनों ममालिक मौजूद तारीख तय करने के लिए एक दूसरे के रबते में हैं और ये तय करेंगे कि चोटी कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की जा सकती है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ भारत के ताल्लुकात सिर्फ दहशतगर्दी, मुखासमत और तशद्दुद से आज़ाद माहौल में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की अपनी पॉलिसी पर अमलावरी और दहशतगर्दी का सरकारी पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल जारी रखे हुए है। वजीर खारजा ने कहा कि भारत ने पुलवामा दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान को दिया गया सबसे ज्यादा पसंदीदा मुल्क

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है आपके द्वारा की गई फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद।

0: सुरों के कारवां में मिलकर नए रंग घोलते हैं। सुरों के कारवां में मिलकर नए रंग घोलते हैं। आपकी पसंद के तराने चलिए एक साथ सुनते हैं। हवाओं में घोलकर ढेर सारा प्यार और दोस्ती। चलिए आज फिर से हेलो नजीबाबाद कहते हैं। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का इस सुरीली शाम में। घड़ी में बज चुके हैं रात के 9:30। हवाओं में थोड़ी सी ठंडक है और माहौल पूरी तरह से फिल्मी संगीत के रंग में रंगने को है तैयार। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफर राजवीर। तो मेरे प्यारे नजीबाबाद के श्रोताओं, कैसे हैं आप? पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा ठहरने का, कुछ सुकून पाने का और अपनी पसंद के गानों में खो जाने का, क्योंकि शुरू हो चुका है आपका सबसे पसंदीदा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो नजीबाबाद। इस सुहाने वक्त पर बातें होंगी, कुछ पुरानी यादें ताज़ा होंगी और होगा फिल्मी गानों का एक शानदार सिलसिला। लेकिन जैसे कि आप जानते ही हैं कि ये शो आपके बिना है अधूरा, क्योंकि आपकी पसंद से ही इस शो की जान है। तो फिर देर किस बात की है, उठाइए अपना मोबाइल और मिला दीजिए हमारे फ़ोन नंबर्स। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9457078288 और हमारा दूसरा नंबर है 01341230105। तो श्रोताओं, मिला दीजिए हमारे नंबर और करिए अपने दिल की बातें। लाइनें हमारी खुल चुकी हैं और मुझे आपके फ़ोन कॉल्स का है इंतज़ार। तो चलिए इस खूबसूरत रात का आगाज़ करते हैं इस कॉल के साथ। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद, सबसे पहले आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार, हमारा भी नमस्कार। कैसे हैं आप और कहां से बात कर रहे हैं और कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान आपसे बात कर रहा हूं।
0: जी गफ्फार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, आपके और आकाशवाणी नजीबाबाद से क्या हाल है? और हमारे सर रोहित शर्मा जी के क्या हाल हैं?
0: जी सब बहुत अच्छे हैं, शर्मा जी भी अच्छे हैं, बाकी आकाशवाणी का समस्त स्टाफ बहुत बढ़िया से है। आप बताइए, आपके घर में सब अच्छे हैं? क्या करते हैं गफ्फार साहब?
1: मैं इस वक्त तो खाली हूँ, वैसे किराना की दुकान चलाता था।
0: अच्छा, तो अब बंद कर दिए, अब नहीं चलाते हैं?
1: जी अब उम्र का तकाजा है।
0: ओहो, कितनी एज हो चुकी है आपकी?
1: मेरी उम्र हो गई है 74 साल की।
0: चलिए बढ़िया बात है, स्वस्थ हैं, फिट हैं आप?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं।
0: हाँ, चलिए हम भी यही दुआ करेंगे कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कौन सा गीत सुनेंगे आज आप कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम है अमानत।
0: जी
1: और मोहम्मद रफी साहब की आवाज है और गाने के बोल हैं दूर रह कर ना करो बात, करीब
0: आ जाओ।
1: सुनने वालों के नाम है।
0: हाँ, तो ये गीत आपको पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है?
1: जी जी बहुत ही अच्छा है और जादूगर मोहम्मद रफी साहब की आवाज है।
0: हाँ देखिएगा, वो तो सुरों के जादूगर थे ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और हाँ, किन के नाम लेना चाह रहे हैं? आपका स्वागत है, ले सकते हैं।
1: वाइफ है राधिया खान, सिमरन खान
0: जी,
1: मसूद हुसैन, शानूर अंसारी, शबनम अब्बासी, हबीब अहमद जैसी, यही सुनना चाहेंगे सब।
0: चलिए ठीक है अब्दुल गफ्फार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में आपने शिरकत की और हम आपकी फरमाइश पर आपके तमाम साथियों के साथ सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का यह नगमा फिल्म अमानत से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: तो श्रोताओं अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म अमानत का ये गीत, जिसके लिए फरमाइश हमारे पास आई थी रामपुर से अब्दुल गफ्फार खान साहब की। और आप इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। तो हमारे जो भी श्रोता साथी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हम उनके लिए एक बार फिर से अपने मोबाइल नंबर्स जो है वो बता दे रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9457078288 और हमारा लैंडलाइन का नंबर है 01341230105। तो फिर उठाइए फ़ोन और मिला दीजिए हमारे नंबर्स। और एक समय एक श्रोता है हमारे लाइन पर। हेलो नजीबाबाद।
1: हाँ जी, हेलो नजीबाबाद।
0: जी हेलो नजीबाबाद, स्वागत है आपका।
1: सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर जी मैं मोहम्मद असलम बात कर रहा हूँ, नांगल सोती जिला बिजनौर से।
0: जी नांगल सोती से, ये तो नजीबाबाद के करीब ही है।
1: हाँ जी पास में है।
0: जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, घर में अच्छे से हैं?
1: दिन भर की थकान दूर हो गई।
0: देखिएगा थकान तो दूर होगी ही, वैसे भी महीना है सावन का और रिमझिम फुहारे भी पड़ रही होंगी, तो दिल अपने आप गुनगुनाने को करने लगता है ना, और अपने आप ही थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून खुद ब खुद मिलने लगता है जब अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम भी चल रहा हो, है ना। तो आपसे जानना चाहेंगे इस समय मौसम कैसा हो रहा है आपके आसपास का?
1: हमारे आसपास का तो मौसम इस टाइम तो बादल हो रहा है, तारे भी निकल रहे हैं कहीं।
0: कभी बादल कहीं तारे। हाँ तो असलम साहब,
1: हल्की फुल्की बारिश हुई लेकिन कल तो बहुत तगड़ी बारिश पड़ी।
0: हाँ कल बहुत अच्छी बारिश हुई है यहाँ पर, आज छींटा छाटी रही दिन भर। हाँ तो मौसम ठंडा है, मौसम ठंडा है या गर्म हो रहा है?
1: मौसम तो ठंडा ही है,
0: सुहाना मौसम है। हाँ
1: सुहाना मौसम हो रहा है, बहुत
0: तो
1: अच्छा
0: इस
1: मौसम हो रहा है।
0: इस सुहाने मौसम में किसको याद करना चाहेंगे आप, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर जी फिल्म का नाम है कर्तव्य
0: जी,
1: और गाने के बोले छेला बाबू तो कैसा दिलदार निकला,
0: कैसा दिलदार निकला। चोर समझी थी मैं आपने। देखिएगा तो आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, जो आप आकाशवाणी नजीबाबाद से इतना प्रेम करते हैं।
1: बात और बता, मैं देखो कभी कभी मौका मिलता
0: है। जी हाँ,
1: जो अनाउंसर होते हैं ना, जैसे आपकी ड्यूटी लगी है आज
0: जी,
1: तो जहाँ के भी अनाउंसर होते हैं उस गांव के अंदर भी या शहर के अंदर भी बहुत खुशी का माहौल हो जाता है और बहुत ही रौनक हो जाती है, मतलब कि भाई।
0: जी हाँ तो ठीक है असलम जी, हम आपकी इस खुशी को दोगुनी चारगुनी कर देते हैं आपकी पसंद के इस गीत के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें कॉल किया।

0: तो श्रोताओं में भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म कर्तव्य का ये गीत, और आप इस वक्त सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हेलो नजीबाबाद।
1: जब दिनकर सिंह निराशा की गर्द में डूब गया था, लेकिन समय बदला सर जी,
0: जी
1: गई और आपने मेरे बिल को रिसीव किया, और दिनकर सिंह निराशा से आशावादी हो गया, आशावादी हो गया। नमस्कार सर जी।
0: जी नमस्कार, आपने तो गजब ढा दिया दिनकर जी, ऐसा लगा जैसे कि दिनकर निकल रहा हो, सूर्य निकल रहा हो। बहुत ही खूबसूरत अंदाज और आगाज आपका कार्यक्रम में। कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मस्त है, एक हाथ में जो है बच्ची को लिए हुए हैं और एक हाथ से फोन चलाते हुए आपसे बात कर रहे हैं, और मैं अपना एड्रेस दे दूं।
0: जी जी बिल्कुल स्वागत।

0: क्या बात है,
1: चित्रकूट चित्रकूट धाम बहेरी ग्राम और दिनकर सिंह मम नाम। और सर जी यहाँ बुंदेलखंड में एक जो है आला गायन है, उस तर्ज में भी आपको मैं जो है परिचय दे सकता हूँ।
0: जी
1: जिला बांदा रहत हूँ और चित्रकूट है धाम।
0: क्या बात है।
1: और दिनकर सिंह मेरा नाम है और सर जी को करत प्रणाम।
0: बहुत बहुत स्वागत है दिनकर जी आपका कार्यक्रम में, और बहुत ही सुंदर अंदाज में आपने जो है इस कार्यक्रम में अपना परिचय दिया है। ऐसा लग रहा है आपसे बात करके जैसे किसी एक्टर से हमारी बात हो रही हो।
1: जी सर जी, और मैं गदगद हो गया आपके जो चैनल से जितने भी उद्घोषक हैं।
0: जी
1: मैं 2-3 चैनल में जरूर बात करता हूँ, लेकिन आपके चैनल में जितने भी उद्घोषक हैं मैं उनका तहे दिल से नमन करता हूँ।
0: तो दिनकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप किसी आ, आ, आ, आ, आ, कोई एक्टर हैं? क्या आप किसी तरह से किसी उससे जुड़े हैं किसी कार्यक्रम से? आपकी जो अंदाज है, जो आपकी आवाज़ है, वो उसको सुनकर वाकई ऐसा लगा कि जैसे कि आप कोई कलाकार हों।
1: जी जी सर जी, मैं जो है तो पहले शिक्षक का काम किया मैंने प्राइवेट विद्यालय में, और मैं उद्घोषक का भी काम करता रहा हूँ मंचों से जो है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, चित्रकूट के बारे में थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताइए, क्योंकि
1: चित्रकूट जो है ये राम की तपोभूमि है। राम यहाँ 12 वर्ष तक रहे, और एक जो है कामत गिर पर्वत है।
0: जी, क्या विशेषता है उसकी?
1: करीब जो है मंदाकिनी नदी से करीब जो है 12-14 किलोमीटर उसका परिक्रमा है वो है। और यहाँ पर ये 80 किलोमीटर क्षेत्र चित्रकूट का क्षेत्रफल फैला हुआ है। यहाँ पर कई धार्मिक स्थल हैं।
0: जी हाँ, तो बहुत श्रद्धालु वहाँ पर आते होंगे, है ना?
1: बहुत श्रद्धालु हैं, और सैकड़ों में यहाँ पर जो है होटल है, रेस्टोरेंट है।
0: जी,
1: यानी छोटे गरीब आदमी से लेकर रईस तक के लिए VIP व्यवस्था है।
0: अच्छा, जैसे सावन का महीना है और इस समय बारिश भी हो रही है, तो वहाँ पर क्या इस समय भी जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है पर्यटकों का?
1: जी बिल्कुल, सावन के महीने में ज्यादा पर्यटक सर जी आते हैं पर्यटक, बस जो है बाढ़ की स्थिति भर न हो। और इस समय बाढ़ नहीं, इस साल जो है, और यहाँ पर जो सावन के झूले और सावन के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं।
0: जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम में?
1: हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, यूं तेरा मुस्कुराना गजब गा गया।
0: कोई और गीत इसके अलावा आप सुनना चाहेंगे?
1: बस यही गीत सुनना चाहूंगा जो है।
0: और किसी वजह से ये गीत हम आपको ना सुनवा पाए तो कोई और फरमाइश?
1: सर जी, आप आपसे बात हो गई, हम धन हो गए।
0: कोई और फरमाइश? चलिए, हम आपको अपनी पसंद का गीत सुनाते हैं। आज हम अपने पसंद का गीत आपको सुनवाएंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है?
1: जी जी सर जी, तो चलिए 2-3 मित्र हैं, मैं उनको याद कर सकता हूं?
0: जी बिल्कुल।
1: ये हमारे जो है बुंदेलखंड से ही, खजुराहो से, मनकारी से जो है फूलचंद पाल जी हैं, और बेटा सिंह यादव जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं।
0: चलिए,
1: सभी के साथ ये गीत को मैं जो है सुनना चाहूंगा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में आपने कॉल की, और हम आपको सुनवा रहे हैं बेहद खूबसूरत सा ये गीत। हमें उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा।

0: प्यार की दास्तान इस फिल्म में भी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ राजवीर। तो एक और श्रोता है हमारे जो हमसे जुड़े हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: हेलो नजीबाबाद
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलक बुछुरा सा बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन बोल रहे हैं सर जी।
0: रजा हुसैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है मुरादाबाद से आप हमारे बीच में।
1: जी शुक्रिया सर जी।
0: तो कैसा मौसम है मुरादाबाद का इस समय? बारिश हो रही है हल्की हल्की।
1: जी जी जी, तो ऐसे ही मौसम है, कभी बारिश कभी धूप कभी गर्मी, ऐसे ही हो रही है।
0: अच्छा रजा हुसैन साहब क्या करते हैं आप?
1: हम सर जी अपने मुरादाबाद में ऑटो चलाते हैं, नहीं तो पहले तो हम बिजली की लाइन बनाते थे।
0: अच्छा, रजा साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि बारिश आते ही हमें कुछ अपनी वो पुरानी बातें, पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब हम कभी स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, रास्ते में पानी भरा होता था, कागज़ की नाव बना करके उसमें छोड़ दिया करते थे, है ना, और कई बार बारिश की वजह से जो है हम छुट्टी भी मार लिया करते थे। तो ऐसी कोई आपकी बचपन की बड़ी सुहानी सी कोई याद हो तो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: बचपन का आप जब मैं पुरानी याद को ताज़ा किया तो मैं बताऊं,
0: जी
1: क्योंकि यही मौसम था, चमाड़ का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो हम छोटे छोटे थे, तो हम हमारे गांव के पास में आम का बाग है
0: जी,
1: हम कई सारे लड़के गए थे छोटे छोटे, बारिश हो रही थी, जो बाग में बाग को रखने वाला था वो तो अपने झोपड़ी में था, और
0: हाँ।
1: चुपके से हम ये तोड़ के चले लेकर आ गए।
0: जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात, आपने पूरी ईमानदारी के साथ में बता दी। और कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस कार्यक्रम में?
1: फिल्म रही गुना गाने बोल रहे रहेंगे, हमने तुमको दिल ये दिया, ये भी ना पूछा कौन हो, तुम कुछ नाम बोल दूँ?
0: हाँ चलिए बोल दीजिए।
1: मेरा भाई सईद हुसैन, छोड़ो याद हुसैन, हमारे दोस्त मकसूद हुसैन है, और ये नजवा सब विष्णु अग्रवाल है, लाल मोहम्मद अंसारी है, दोस्त आप और हम कुछ, और एक मैसेज ये है कि जो नगीना से अग्रवाल रोड गए हैं तो एक गाँव पड़ रहा है नियामतपुर, वहाँ से हमारे दोस्त हैं दीपक, अगर वो सुन रहे हो तो मुझे फ़ोन कर ले। ठीक है, थैंक यू।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजा हुसैन साहब, आपने इस कार्यक्रम में कॉल किया, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके सभी साथियों के साथ में।

0: अभी आपने सुना अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो को फिल्म गुनाह में, फरमाइश थी रजा हुसैन की। और अब एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: जी हेलो, नजीबाबाद
0: हेलो नजीबाबाद जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार सर। जी
0: जी नमस्कार
1: जी, मैं सुरेश कुमार सैनी, ग्राम पोस्ट अजनर, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दूर से हमारे बीच में है, महोबा से।
1: जी सर।
0: क्या करते हैं सुरेश सैनी जी?
1: जी सर, मैं खेती किसानी करता हूँ, साथ में फूलों का डेकोरेशन वाला भी काम करता हूँ।
0: अच्छा।
1: और इस समय थोड़ा डेकोरेशन काम तो मध्य चल रहा है, तो इस समय मैं थोड़ा सिलाई का काम भी कर रहा हूँ साथ में।
0: अच्छा, तो खेती में क्या क्या करते हैं आप? कौन कौन सी
1: खेती में
0: फसल
1: सर
0: उगाते हैं?
1: जी, हमारे यहाँ मूँगफली है, नहीं मूँगफली है इस समय तो, और
0: खड़ी होंगी
1: उड़द है और तिली है।
0: जी। मूंगफली उगाते हैं और क्या उगाते हैं?
1: तिल है,
0: तिल,
1: उड़द उड़द भी है,
0: उड़द,
1: मूंग भी है।
0: धान वान
1: हमारे
0: नहीं
1: यहाँ
0: लगाते हैं इस समय?
1: नहीं, धान वान नहीं लगती सर हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मूँगफली अधिक
0: अच्छा,
1: खेती होती है।
0: वजह क्या है? वहाँ की जो ज़मीन है वो रेतीली है या फिर पानी
1: ना
0: की कमी
1: नहीं,
0: है?
1: रेते लिए सर, पानी की भी कमी है हमारे यहाँ। पानी की तो बहुत समस्या है हमारे खेत में।
0: अच्छा, जैसे बरसात का मौसम है इस समय, तो बारिश कैसी हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश तो सर जी अभी फिलहाल ठीक हो रही है 2-3 दिन से, लेकिन इससे पहले कुछ 10 दिन का गैप लग गया था बारिश का।
0: अच्छा,
1: काफी मूंगफली सूख चुकी है किसानों की।
0: ओहो, तो जो दूसरा साधन नहीं है पानी के, दूसरे स्रोत नहीं है जैसे ट्यूबवेल, पोखर, तालाब वगैरह, नहर?
1: नहीं, नहर वगैरह तो नहीं है, लेकिन ट्यूबवेल वगैरह है, जैसे बोर वोर करवा लेते हैं हुआ हुआ अभी तो, लेकिन जल स्तर बहुत नीचे है सर जी हमारे यहाँ,
0: अच्छा, कितने फीट पे पानी आ जाता है वहाँ पर?
1: करीब करीब 150 के समथिंग पे। जी
0: 150 के समथिंग पे, तो समर्सिबल पंप हुआ करते होंगे
1: जी जी सर
0: जी। तो चलिए सैनी साहब, कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस कार्यक्रम में?
1: जी, आज मुझे सुनना है सर जी, फिल्म का नाम है दामिनी
0: जी
1: और गीत से बोल है।

0: झूला झूलू मैं वादा
1: वादा
0: कैसे
1: कैसे
0: बोलूं।
1: भूलूं। हाँ, नहीं, वादा भूलना भी नहीं चाहिए सैनी साहब, हमेशा याद रखें अगर किसी से वादा
0: जी
1: किया है
0: जी
1: तो वो
0: जी जी
1: निभाना भी चाहिए। खैर, बहुत बहुत
0: और
1: शुक्रिया इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए।
0: कुछ श्रोता मित्रों को याद कर लूँ सर?
1: हाँ, जल्दी से ले लीजिए।
0: जी, जयपाल यादव जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, गजाल लोध जी हैं, विजय पांडे जी हैं, राम दिगर जी हैं, और कितने लोग तो रहे सभी के लिए सर।
1: चलिए, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सैन साहब कॉल किया इस कार्यक्रम में, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।

0: कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दामिनी का ये गीत और फरमाइशी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से और मैं हूं आपके साथ आपका साथी राजवीर। तो एक और कॉलर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो नजीबाबाद।
1: जी नमस्कार। जी
0: जी नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
1: कहते हैं दिल आपकी याद में उदास है, कहते हैं कि दिल आपकी याद में उदास है, बस आपसे मिलने की आस है, बस आपसे मिलने की आस है। न जाने कितने लोग हमारे पास है, न जाने कितने लोग हमारे पास है, लेकिन हमारे लिए आप ही खास।
0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। नईम, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? नईम मलिक साहब बात कर रहे हैं ना?
1: जी जी जी, नईम मलिक बात कर रहा हूँ। मैं कश्मीर से बात कर रहा हूँ, सेंट्रल कश्मीर से।
0: हाँ जी,
1: जिला बड़गाम में हमारा गाँव
0: जी। बिल्कुल, हम आपको पहचानते हैं, आपकी आवाज़ को पहचानते हैं, पहले भी हमारी आपसे बात हुई है। नईम साहब कैसे हैं आप?
1: अल्लाह का करम होना चाहिए। आप राजवीर सर बात कर रहे हो ना?
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं राजवीर बात कर रहा हूँ। और मौसम कैसा है इस वक्त कश्मीर का?
1: बस बारिश हो रही थी, अलग अलग जिले में बारिश।
0: अच्छा, अब तो रोजाना बारिश हो रही होगी इस समय, है ना?
1: पता नहीं क्या हुआ है। वैसे तो कश्मीर में जून जुलाई अगस्त का जो महीना होता है गर्मी का महीना होता है, लेकिन इस साल तो ज्यादा ही बारिश हो रही है।
0: खूब बारिश हो रही है।
1: अगर देखिए कि हर जिले में, जितने भी जिले हैं कश्मीर के अंदर, 10 ही जिले हैं मात्र,
0: जी,
1: हर जिले में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा।
0: अच्छा नईम भाई, हाँ कहिए।
1: जी जी बोलिए सर।
0: हाँ, आप देख रहे होंगे कि इस समय जो क्लाइमेट्स है, जो मौसम है, जो मौसम का चक्र है, वो लगातार कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है ना? जहाँ बारिश होनी चाहिए वहाँ बारिश नहीं हो रही है, जहाँ नहीं बारिश होनी चाहिए वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है। इस तरह का जो ये सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये मौसम में जो बदलाव है, इसमें कहीं ना कहीं हम अपने आप को जिम्मेदार समझते हैं। आप क्या मानते हैं इस बारे में?
1: मैं भी मानता हूँ सर,
0: है ना?
1: सहमत हूँ, मैं भी मानता हूँ। देखिए जहाँ पर ज्यादा बारिश होना चाहिए, ज्यादा बारिश, वहाँ बारिश नहीं हो रही है। और मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर तुम सब कुछ मिल सकते हैं, सवाए इंसान ही मिल सकते हैं। जो हमारा एक हमारे हिंदुस्तान के अंदर मैंने आसाम का बाढ़ देखा, और इतना मैं गंभीर हो चुका हूँ कि उन बच्चों को देखकर, उन बुजुर्गों को देखकर, उन औरतों को देखकर, और मुझे अच्छा नहीं लगता है, और ये हर हिंदुस्तानी को अच्छा नहीं लगेगा।
0: जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए हमें भी कुछ प्रयास करने होंगे अपनी ओर से, है ना? इस क्लाइमेट्स को, मौसम को, इनको बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे इस कार्यक्रम में हम? नईम जी,
1: फिल्म हम है राही प्यार की, यूं ही कट जाएगा,
0: यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। जी हाँ बिल्कुल, सफर तो साथ चलने से ही मस्त या बढ़िया कटता है ना? बस जरूरत होती है खूबसूरत, एक अच्छे, एक परवाह करने वाले हम सफर की। वेल, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कुछ और कहना चाहेंगे? जी
1: इसी में आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि आपको जो बोलने का अंदाज है ना, और मुझे इतना अच्छा लगता है कि
0: जी शुक्रिया शुक्रिया नदीम भाई, नईम भाई, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, फिल्म हम है राही प्यार के से।

0: जवाब हम देंगे। इस फिल्म में भी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार को, पसंद थी केसरी राजपूत की मध्य प्रदेश भोपाल से। इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का फोन इन प्रोग्राम हेलो नजीबाबाद। तो एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो नजीबाबाद
1: जी। नमस्ते
0: जी। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागपुर जिला उज्जैन से।
0: जी हाँ, एक बार फिर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में है प्रेम सिंह सिसोदिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ। और एक बात है, हमारे दोस्त हैं केसरी सिंह राजपूत
0: जी,
1: जिनका भी कॉल चल रहा था, इनकी सबसे ज्यादा फेवरेट यही सॉन्ग है, जब हे राम हूँ मैं तेरी जुल्फों को देखकर।
0: देखिएगा, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, वैसी आपकी भी कोई पसंद होगी, आप भी अपनी पसंद बताइए
1: जी। आपको बताऊं, मैं जब भी उनका कॉल सुनता हूँ ना, मैं तो सबसे ज्यादा मतलब इसी गाने की फरमाइश करते हैं वो।
0: देखिएगा, सबका अपना कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता है किसी ना किसी सॉन्ग से या किसी ना किसी विषय से, है ना? तो केसरी साहब को ये गाना पसंद है तो वो इसी को सुन लेते हैं। आप अपनी पसंद बताइए, हम आपको आपकी पसंद भी जरूर सुनवाएंगे।
1: हमको तुमसे प्यार है, ये है फिल्म का नाम।
0: जी जी, गीत के बोल,
1: गाने के बोल है, तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे।
0: चलिए, बहुत खूबसूरत गाना है ये भी जो आपने चुना है। और आपने बताया कि आप उज्जैन से बोल रहे हैं, महाकाल की नगरी से आप बात कर रहे हैं। तो इस वक्त जैसे सावन का महीना चल रहा है, तो बहुत सारे जो हमारे श्रद्धालु हैं कांवर लेकर, गंगा जल लेकर के पवित्र नदियों से अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ का नज़ारा कैसा है इस समय, उज्जैन के बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। बहुत दूर दूर से कांवर यात्री, आपने बताया कि जल लेकर आ रहे हैं बाबा को अर्पण करने के लिए
0: जी,
1: तो उन लोगों के लिए हमने काफी अच्छी सुविधा कर रखी है। जगह जगह पर भंडारे खोल रखे हैं
0: जी,
1: और आने जाने के लिए काफी रास्ते चौड़े कर दिए गए हैं। जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं और वो साइन बोर्ड दर्शा रहे हैं कि महाकाल बाबा का मंदिर इस साइड है। तो मतलब ऐसे मतलब जगह जगह साइन बोर्ड लगाने की वजह से काफी मतलब सुविधा हुई है, और हर किसी को मतलब कोई असुविधा ना हो, इसका सभी लोग बड़ा ध्यान रखते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी देखिएगा, जो उज्जैन है वो तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, वहाँ पर माना जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, है ना? तो बहुत सारे श्रद्धालु,
1: बताना चाहूंगा आपको मैं
0: जी,
1: कृष्णा नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है, और एक साइड में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है और दूसरी साइड में माँ हरसिद्धि का मंदिर है, जहाँ पर मतलब माता की जोत जलती है और बाबा का मंदिर सामने है। और आपको बताऊं, एक

0: आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। हेलो नजीबाबाद।
1: हाँ जी नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन सा बात कर रहे हैं?
1: मीरचंद ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील चसाना, गांव कोठली से बोल रहा हूँ
0: जी, जम्मू कश्मीर से।
1: जी
0: जी बहुत बहुत स्वागत है वीरचंद जी, दूसरी कॉल है हमारे पास आज जम्मू कश्मीर से। कैसे हैं आप?
1: हाँ जी बहुत बढ़िया हैं, ठीक हैं।
0: मौसम कैसा है? सुना है बहुत बारिश हो रही है वहाँ।
1: बारिशें बहुत हो रही हैं और पूरी पूरी बारिशें, ऐसी कोई खतरनाक नहीं है। कश्मीर में फटकर भरा है आज बादल, उड़ी में
0: बादल फटा है। हाँ बहुत नुकसान हुआ होगा,
1: जगह जगह जगह में बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो चलो भगवान के आगे हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि कोई बादल फट कर ना आए।
0: जी जी बिल्कुल, देखिएगा ये सावन का जो महीना है और बहुत ज़्यादा बारिश इस महीने में होती है और बहुत ज़्यादा घटनाएं आजकल सुनने को मिलती हैं कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बादल फट रहे हैं, बहुत पानी गिर रहा है, बहुत नुकसान होता है, तो बड़ा कष्ट भी होता है सुन
1: बहुत
0: के।
1: इस साल में बहुत खतरनाक बरसात है,
0: जी तो क्या करते हैं आप
1: साथियों
0: वीरचंद
1: को
0: जी,
1: याद कर देते हैं।
0: क्या काम करते हैं वीरचंद जी?
1: बस जिम्मेदारी का ही काम करते हैं जी, डाक से रिटायर हुए हैं, 40 साल सर्विस किया है डाक खाना में।
0: अच्छा रिटायर्ड हैं आप, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप इस कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम का समय
1: गीत
0: बिल्कुल समाप्त हो रहा है। जी
1: मोहम्मद रफी की आवाज में कोई गीत सुनाना, थोड़े साथियों को याद कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल, आप साथियों को याद कर लीजिए और हम प्ले कर रहे हैं आपकी
1: डोडा
0: पसंद
1: से
0: का गीत।
1: पंछी राम है।

0: किशकरनाथ है, कैशु शर्मा जम्मू से, और रियासी से सुभाष चंद्र खजूरिया है, और हिमाचल से गोल्डी है।
1: चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, और हम आपके साथियों के साथ आपको सुना रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म घराना का ये गीत।
0: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो नजीबाबाद। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। रात के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है हमारे श्रोताओं के द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेजेस पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम रात के हम सफर।

नमस्कार श्रोताओं, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि दुनिया सो रही है, लेकिन फिर भी कुछ दिल, कुछ यादें और कुछ हम सफ़र अभी भी जाग रहे हैं। मैं हूं आपका रेडियो साथी आरजे राजवीर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नजीबाबाद और कार्यक्रम है रात के हम सफ़र। श्रोताओं, अगले आधे घंटे तन्हाइयां दूर होंगी और सजेगा यादों का कारवां, क्योंकि जब कोई दिल के बेहद करीब होता है तो रात की यह खामोशी और गहरी लगने लगती है। आप में से कितने लोग इस वक्त खिड़की के पास बैठकर गीले आसमान को निहार रहे होंगे। हमारे कुछ श्रोता साथी अपने मोबाइल को हाथ में पकड़े उसकी स्क्रीन पर अपनी उंगलियां घुमा रहे होंगे। हो सकता है कुछ साथी अपनी डायरी या फिर किताब हाथ में लेकर कुछ पढ़ रहे होंगे। खैर, जो भी हो, अपने जज्बात हमारे साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। जब तक आपके मैसेज हमारे पास आते हैं, तब तक आनंद लीजिएगा इस खूबसूरत गीत का।

वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। अक्सर ज़िंदगी में कोई ऐसा आ ही जाता है कि उसके बिना ज़िंदगी अधूरी लगने लगती है, और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का जिक्र। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी एक सीधी सड़क की तरह चल रही होती है, और फिर अचानक एक मोड़ आता है। कोई ऐसा वाक्या होता है, कोई ऐसी बात होती है, या फिर कोई ऐसा शख्स हमारी ज़िंदगी में कदम रखता है, जिसके बाद हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं रहती जैसी वो पहले थी। सब कुछ बदल जाता है, हमारा सोचना, हमारा जीना, हमारी मुस्कुराहट और हमारा नज़रिया। आज रात के हम सफ़र में मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, आपकी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट क्या था, वो कौन सा शख्स, कौन सा लम्हा या कौन सी सीख थी जिसने आपकी ज़िंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अपने जज्बात, अपनी कहानियाँ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और सुनते रहिए हमारा आज का ये कार्यक्रम रात के हम सफ़र। तो कुछ मैसेजेस हमारे पास यहाँ पर आए हैं, तो देखते हैं। पहला मैसेज जो हमारे पास आया है, आया है हरदोई रोड लखनऊ से। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नाम देव का लिखते हैं, हम तो मोबाइल हाथ में लेकर अपने शहर के बाईपास पर आकाशवाणी नजीबाबाद से प्रसारित प्रोग्राम रात के हम सफ़र सुन रहे हैं और दोस्तों को भी सुना रहे हैं और बारिश के मौसम का मज़ा ले रहे हैं। बहुत खूब, बहुत ही अच्छी बात मास्टर साहब। बारिश का मौसम है और सावन का महीना है, तो वाकई मज़ा तो लेना बनता है इस मौसम का। आपने इस कार्यक्रम में हमें मैसेज किया, आपका बहुत बहुत आभार हृदय से। और एक और मैसेज अभी अभी हमारे पास आया है, और ये आया है हमारे पास मोहम्मद कैफ, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद ओवैस, डॉक्टर विजय और भूकन सैनी का। गांव मीरामपुर बेगा, पोस्ट मंडावली, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से आप लिखते हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद रात के हम सफ़र कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राजवीर जी को मेरा नमस्कार। तो हमारा भी नमस्कार। और आज की हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को इतना सुहाना बना दिया है कि हर बूंद जैसे दिल को सुकून दे रही है। क्या बात है, ऐसी ही प्यारी रात में मेरी तरफ से भी सभी श्रोताओं के लिए एक संदेश। तो क्या संदेश है आपका? आप लिखते हैं, बारिश की बूंदें ज़मीन को नहीं दिलों को भी महका देती हैं। वाओ, अपनों का साथ और आपका ये कार्यक्रम दोनों हम शाम को यादगार बना देते हैं, हर शाम को यादगार बना देते हैं। सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और एक बात और, जब मैं हेलो नजीबाबाद कार्यक्रम सुन रहा था तो उसमें एक श्रोता जुड़े थे, दिनकर जी। मुझे लगा कि श्री स्वर्गवासी रामधारी सिंह दिनकर आ गए हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात लगी उनकी। मैं बहुत अधिक प्रयास करें आपसे फ़ोन पर बात करने की, लेकिन किसी वजह से कॉल नहीं लग पाए, लेकिन दिल आपसे मिला हुआ है। मैं आशा करता हूँ और आशावादी व्यक्ति हूँ, आप मेरा ये मैसेज ज़रूर शामिल करेंगे आज के कार्यक्रम रात के हम सफ़र में, धन्यवाद। तो बिल्कुल, देखिएगा, आप आशावादी हैं तो आपकी, जो आशावादी होते हैं तो वास्तव में भगवान भी उनकी सुनता और आपका मैसेज हमारे पास तक पहुँच ही गया और हमने आपका मैसेज शामिल भी कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। और इसी तरह से एक और मैसेज हमारे पास आया है वर्ली मुंबई से, नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान का। लिखा कुछ नहीं है। एक और मैसेज हमें जो मिला है, ये हमारे पास आया है ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। लिखते हैं, सर हम आपका प्रोग्राम एक घंटे से सुन रहे हैं, 9:30 बजे से और अभी तक सुन रहे हैं। हमने आकाशवाणी नजीबाबाद पूरा सुना, उसमें हमारी 3 बार कॉल भी लगी पर रिसीव नहीं हुई, 2 बार मोबाइल नंबर पर और 1 बार PNT नंबर पर आपने रिसीव नहीं की है। हमें अच्छा नहीं लगा, आगे से फिर प्रयास करेंगे कॉल लगाने की। और इस समय भी हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, रेडियो पर छत पर सुन रहे हैं बैठे हुए और देहरादून को भी सुन रहे हैं आपकी फरमाइश। तो मोहम्मद फरमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो आपने दुल्हापुर से हमें कॉल किया, मैसेज किया है। देखिएगा, हमारा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कार्यक्रम में शामिल करें और आज भी 10 कॉलर्स को हमने इस कार्यक्रम में शामिल किया है। और किसी वजह से आपका फ़ोन नहीं उठ पाया, उस बात का हमें भी खेद है, लेकिन आगे भी आप प्रयासरत रहिएगा, आपकी कॉल ज़रूर रिसीव होगी। और एक और मैसेज हमें अभी मिला है, लिखते हैं, मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं गाँव जैतरा धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। आज मैं अपनी छत पर गया था, मैंने देखा मेरी छत पर एक कबूतर भूखा प्यासा बैठा था, तो मैंने उसे
पानी पिलाया और दाना खिलाया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर नरेश कुमार जी, इतना पुण्य का काम आपने किया। और हम चाहते हैं कि हमारे तमाम श्रोता साथी, सभी देशवासी, अगर इस तरह से पशु पक्षियों की, इन बेजुबानों की बातों को समझ करके उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर ये भारत हमारे सपनों का भारत बन जाएगा। और इसी समय एक और मैसेज हमें मिला है, और ये मैसेज हमारे पास आया है जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला जी, नायक शोभा नायक और समस्त डागला परिवार की ओर से, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। हाँ, आप लिखते हैं, हेलो नजीबाबाद आकाशवाणी, सभी को ज़िंदगी तो एक जैसी होती है बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की, क्योंकि हम लोगों की कहानी सीखने में, अपने हर चीज़ की तरफ ध्यान लगाने में बीत जाती है। और जब बुरा आता है वक्त, तो उत्तम देखो कैसे लगता है कि जैसे कि हम बिल्कुल ही ढल गए हैं, कुछ स्पष्ट समझ नहीं पाए हैं हम, लेकिन फिर भी जो आप कहना चाह रहे हैं वो समझ में हमारी आ रहा है, और हमारे तमाम श्रोता भी समझ रहे होंगे। और इसी समय एक और मैसेज अभी अभी फ्लैश हो रहा है हमारी स्क्रीन पर, और ये मैसेज हमारे पास आया है मोहल्ला हलवयान कस्बा शेरकोट से, मोहम्मद वक्कार फरीदी और परिवार के सदस्य की ओर से। लिखते हैं, हमारा प्यार भरा सलाम, कैसे हैं आप? राजवीर सिंह जी, आपका स्वागत है, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, सभी को शुभकामनाएं। प्रोग्राम रात के हम सफ़र, बाहर मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं, और साथ ही रे नजीबाबाद आकाशवाणी, और साथ ही आकाशवाणी नजीबाबाद के बिना भी ये जीना, हम सब आपके रेगुलर लिसनर्स हैं, मैं रात को 11 बजे तक सभी प्रोग्राम सुनकर सोता हूं। तो वक्कार साहब, वाकई आप हमारे पुराने श्रोता हैं, लगातार कार्यक्रम सुनते हैं, हम जानते भी हैं और आप सुन रहे हैं, इसका भी हमें, इस बात की भी बड़ी खुशी हो रही है। इसी बीच एक और मैसेज अभी हमारे पास आया है, ग्राम गद्दारोना, जिला हरिद्वार उत्तराखंड से, मदन गिरी जी का। लिखते हैं, राजवीर जी धन्यवाद, जैसे आपसे उम्मीद थी आपने हेलो नजीबाबाद ऐसे ही प्रस्तुत किया, पूरी 9 कॉल शामिल की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात की है पुरानी यादों की, तो मुझे याद आ रहे हैं बचपन के वो दिन जब बरसात के दिनों में हम सब स्कूल जाते थे तो भीग जाया करते थे, तो बड़ा मज़ा आता था, और बरसात के पानी में कागज़ की नाव चलाना बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। हमारे गाँव के पास काफ़ी गांव का बरसाती पानी आता था, हम उस पानी में जाकर तैरते थे, बड़ा मज़ा आता था। और जैसे अब सावन के महीने में रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ रही है, तो मैं सोचता हूँ कि काश मेरा बचपन लौट आए। धन्यवाद जी। हाँ, देखिएगा, बीता हुआ समय तो गिरी साहब मदन जी लौट करके नहीं आता है, लेकिन हाँ, वो यादें पुरानी ज़रूर हमें याद आती रहती हैं, और जब वो यादें याद आती हैं तो समझ लीजिए पुराना मौसम ही एक बार फिर से लौट करके हमारे सामने वो समय आ जाता है। आपने इस कार्यक्रम में हमें बहुत खूबसूरत मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से आभार। और एक और मैसेज अभी अभी हमारे पास आया है, गांव और पोस्ट राहू नंगली से, आचार्य सत्यवीर सिंह का। लिखते हैं, आज हम नेशनल हैंडलूम डे पर 5 मीटर कढ़ी का कपड़ा खरीद, हमने खादी का कपड़ा खरीदा है, और 2 कुर्ते सिलवाने के लिए दर्जी के पास भेज दिए हैं, उसकी वीडियो बना करके यूट्यूब पर डाल दी है। सभी को नेशनल हैंडलूम डे की जो है शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दे रहे हैं, और सभी से निवेदन भी कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इस दिन कुछ ना कुछ खादी खरीदें और उसकी वीडियो बना करके जो है उसको अपलोड भी करें। जी हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दे रहे हैं हैंडलूम डे की। तो देखिएगा आचार्य जी, आपके मैसेज और आपकी जो प्रेरणा है वो हमेशा बहुत ही अच्छी होती है हमारे श्रोताओं के लिए भी और हमारे लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में इतना खूबसूरत मैसेज लिख करके हमें भेजा है। और एक और मैसेज हमारे पास आया, कस्बा रेहड़ जिला बिजनौर से, बादशाह फरीदी की ओर से। लिखते हैं, बारिश का मौसम सिर्फ मौसम नहीं बल्कि एहसासों का खूबसूरत सफ़र होता है। जी हाँ, बहुत अच्छा। पहली बूंद गिरते ही मिट्टी की खुशबू, ठंडी हवा और बादलों की आवाज़ मन को सुकून देने लगती है। कोई इस मौसम में चाय का मज़ा लेता है, कोई खिड़की के पास बैठकर पुरानी यादों में खो जाता है। वही पल आज याद आ गया है। अब आप लिखते हैं कि एक दिन मेरी पसंद की सब्जी नहीं बनी तो मुझे अपनी माँ की याद आई। पहले माँ से कह देता था कि ये सब्ज़ी नहीं खाऊँगा, मुझे दूसरी बना कर दो। फिर गुस्सा करता था, नखरे दिखाता था और माँ हंसकर मेरे लिए कुछ और बना देती थी। लेकिन अब जो बन जाए चुपचाप खा लेता हूँ। क्योंकि अब समझ में आ गया है कि सब्जी का स्वाद नहीं, ज़िंदगी की थकान बढ़ती है और माँ की वो मुस्कान अब हरने वाले के साथ बहुत बहुत याद आती है। जी हाँ, बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही प्यारा आपका मैसेज। और
एक और मैसेज हमारे पास आया, लक्सर रोड सुवाहेड़ी कस्बा पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जाबिर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज़, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोहेब कहकशां और पूरे ही परिवार की ओर से लिखते हैं, नमस्कार सर, बरसात का मौसम एक अलग ही एहसास दिलाता है। बरसात के मौसम में शूट किए गए गाने दिल को छू जाते हैं और बरसात के गीत बहुत अच्छे भी हमें लगते हैं। तो मैसेज का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और हमारी स्क्रीन पर लगातार मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। और ये मैसेज हमारे पास आया है नाज़ पैलेश अजमेर शरीफ से, सैयद आलम हाशमी और बेगम गुलनाज हाशमी की ओर से लिखते हैं, ज़िंदगी के सफ़र में यादों की दुनिया हमारी वो दुनिया होती है जिसमें हमने संजोए होते हैं अपने वो खट्टे मीठे एहसास, जो कभी हमें हंसाते हैं तो कभी हमारे दर्द को सहलाते हैं। इसी तरह सहलाती है हमारे अजीज़ दोस्तों, हमारे दिल के करीब रहने वालों की मोहब्बत। जब भी यादों के दरीचों में जाकर हम ये सब याद करते हैं तो केवल मिलने की दुआ ही अपने खुदा से करते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जी हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत सैयद आलम हाशमी साहब आपका ये मैसेज। और एक और मैसेज अभी हमारे पास आया है परीमहल कासगंज से, आबाद खान नबी खान आरफा आरफी और इल्मा खान की ओर से, सिर्फ आपने मैसेज हमें किया है, मैसेज में कोई संदेश लिख करके हमें विशेष तौर से नहीं भेजा। और एक और मैसेज ये हमें अभी अभी मिला है, और ये मैसेज आया पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और इनके परिवार के सदस्यों की ओर से। और इसी के बीच एक और मैसेज हमें मिला है, और ये मैसेज आया

अकबर भाई नय्यर नगीना से। जी हाँ, ये लिखते हैं, बारिश में जब हम दोस्तों के साथ बाहर निकलते थे तो वो बारिश में जब हम दोस्तों के साथ बाहर निकलते तो वो यादगार पल होते हैं। चलिए, बहुत ही खूबसूरत, आगे इससे ज़्यादा आपने कुछ खास लिखा नहीं है। और चलिए, यादगार पल होते हैं बारिश के, ये तो जो भी पल होते हैं वो यादगार ही होते हैं। और कुछ पुरानी बातें जब याद आती हैं तो वाकई दिल खुश हो जाता है। भेजने वाले हैं कासिम पेंटर और उनके काम करने वाले कुशल कार्य और उनके साथी। ये लिखते हैं, मुझे नजीबाबाद के सभी कार्यक्रम बहुत पसंद है, मेरा पता है मंडावली गांव मीरामपुर बेगा। लिखते हैं, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, जैसे कि सावन माह का महीना चल रहा है और मेरा जो गांव पड़ता है वो पड़ता है हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर। वहां मैंने एक ऐसा दृश्य देखा कि जैसे कि भोले जी की कांवड़ चल रही है और उसका कांवड़ में हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, जिसे 22 लोगों ने पकड़ रखा था और कम से कम वो 100 से 150 मीटर लंबाई में था और उसे लेकर जाया जा रहा था। ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। आप मेरा मैसेज अपने कार्यक्रम में शामिल करें। और कुछ बात और है जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के सफ़र में लोगों को निराश नहीं होना चाहिए और सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन सुनते रहिएगा आकाशवाणी नजीबाबाद। बहुत सुंदर मैसेज के साथ में, बहुत सुंदर आपने एक हमारे श्रोताओं को और भी मैसेज दिया है कि आकाशवाणी नजीबाबाद सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक और मैसेज अभी भी हमारे पास आया है, और ये मैसेज हमें मिला है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा की ओर से। हालांकि इन्होंने मैसेज में कोई ख़ास बात ऐसी लिखी नहीं है। चलिए, मैसेज और भी हमारे पास हैं, हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा गीत।

इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रात के हम सफर। श्रोताओं, जब कोई दिल के बेहद करीब होता है तो रात की ये खामोशी और भी गहरी लगने लगती है। तो चलिए इस खामोश रात में आपके नाम अर्ज है एक शेर। किताबें माजी के पन्ने उलट के देख जरा, किताबें माजी के पन्ने उलट के देख जरा, जो जिक्र मेरा ना हो तो फिर मुझे भूल जाना। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी बात है तो जागते रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए रात के हम सफ़र। ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम नजीमपुर, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर से योगेश कुमार की ओर से। लिखते हैं, मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ तब आया जब मैं करियर में बुरी तरह फेल हो चुका था और सब ने साथ छोड़ दिया था। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि गिरते वही हैं जो दौड़ते हैं। उस एक बात ने मुझे दोबारा खड़ा कर दिया। योगेश जी, सलाम है आपकी माँ को और आपके हौसले को। सचमुच कभी कभी एक सही वक्त पर कही गई बात पूरी ज़िंदगी बदल देती है। और अब जो अगला मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज हमें मिला है नगीना से, अनिल विनोचा शम्मी की ओर से। आप लिखते हैं, हाँ आप लिखते हैं, अच्छा याद दिलाया खिड़की से किसी को निहारना। कुछ लाइन याद आ रही हैं, लिख रहा हूँ। आप लिखते हैं, आसमान पर नज़र आने वाले चांद, चांद नहीं मेरे यार हैं वो, चांद मेरे नज़र आते दाग, वो चांद में नज़र आते दाग, दाग नहीं मेरे यार के जलवे हैं। चांद पे नज़र आती सलवटें, सलवटे नहीं मेरे यार की अंगड़ाइयाँ हैं। बहुत खूब, बहुत सुंदर मैसेज आपका हमें मिला है अनिल विनोचा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस मैसेज को करने के लिए। और एक और मैसेज ये हमारे पास आया है, और आप लिखते हैं गंज डुंडवारा से, शमशुल कमर राही। आप लिखते हैं, कभी कभी इंसान इतना तन्हा हो जाता है और अपनी उदासी की कहानी खुद ब खुद कहने लगता है। तन्हाइयों में अश्क बहाने से क्या मिला, खुद को दिया बनाने से जलाने से क्या मिला। तन्हाइयों में अश्क बहाने से क्या मिला, खुद को दिया बना के जलाने से क्या मिला। मुझसे बिछड़ के रेत सा वो भी बिखर गया, उस जाने वाले शख्स को जाने से क्या मिला। अब भी मेरे वजूद में हर सांस में वही, अब भी मेरे वजूद में हर सांस में वही, मैं सोचता हूँ उसको भुलाने से क्या मिला। तो क्या गया कि दिल मेरा खामोश हो गया, इन धड़कनों के शोर मचाने से क्या मिला। बहुत बहुत बहुत खूबसूरत आपका ये शेर, बहुत सुंदर आपका मैसेज, धन्यवाद। और एक और मैसेज अभी हमारे पास आया है, ये मैसेज हमारे पास आया है ज़िला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से, मुकेश कश्यप और इनके परिवार के सदस्यों की ओर से। लिखते हैं, बहुत पहले की बात है कि घर में ना कोई बिजली का पंखा, कूलर, एसी कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग बहुत सुकून से रहते थे, क्योंकि पहले हर घर में एक पेड़ होता था। पेड़ के नीचे बैठकर दादा दादी के पुराने किस्से कहानी सुना करते थे। अब पेड़ बहुत अधिक संख्या में काटे जा रहे हैं, एसी पंखों की हवा से भी कोई सुकून नहीं मिल रहा है, बीमारी बढ़ रही है, इसके भागीदार हम सब हैं। देखिएगा मुकेश जी, आपने इस बात को स्वीकार किया, इसमें कोई दोराय नहीं है कि वाकई इन सब चीज़ों के जिम्मेदार जो क्लाइमेट्स में जो चेंज हो रहा है, मौसम जो बदल रहा है, कहीं ना कहीं हम ही हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों का संरक्षण करना चाहिए। बहुत ही सुंदर आपका संदेश हमारे तमाम श्रोताओं तक पहुंच चुका है। और ये मैसेज हमारे पास आया जसपुर रोड दुल्हापुर जिला मुरादाबाद से, महबूब दुकानदार और इनके परिवार के सदस्यों की ओर से। आप लिखते हैं, बदलाव का संदेश। आप लिखते हैं, मौसम हमें यह सिखाता है कि जीवन में परिवर्तन ही एकमात्र सत्य है। जिस प्रकार हर एक पतझड़ के बाद बसंत और हर तेज धूप के बाद ठंडी फुहारें आती हैं, उसी प्रकार कठिनाइयों के बाद सुखद समय का आना भी निश्चित है, बारिश और सुकून। अब आप लिखते हैं कि बारिश की पहली बूंद जब सूखी धरती पर पड़ती है तो उसकी सौंधी खुशबू न सिर्फ मिट्टी को महकाती है बल्कि मन के हर कोने को तरोताज़ा कर देती है। बारिश का मौसम उदासी मिटाने और नए ख्वाब बुनने का सबसे बेहतरीन समय होता है। अब आप लिखते हैं ठंड और आत्मीयता पर। आप लिखते हैं कि सर्दियों की ठंडी सुबह और कोहरे की चादर हमें अपनों के करीब लाती है। गर्म चाय की चुस्की के साथ खिड़की से बाहर गिर

कोहरे को देखना जीवन के छोटे छोटे सुकूनों का एहसास कराता है। अब आप धूप और ऊर्जा पर भी लिखते हैं। आप लिखते हैं, तेज धूप और गर्मी भले ही हमें थका दे, लेकिन यही धूप पौधों को जीवन देती है और फसलों को पकाती है। ये हमें ये याद दिलाती है कि हर चुनौती हमारे भीतर ऊर्जा और चमक भरने के लिए ही आती है। तो जी, बहुत सुंदर आपका मैसेज हमारे पास आया है महबूब दुकानदार साहब। इस मैसेज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज जो हमें ये मिला है, ये मैसेज हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ का, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आप लिखते हैं, अब पहले जैसी बात कहाँ, अब पहले जैसी बरसात कहाँ। अब पहले जैसी बरसात होती नहीं है। आपसे 15-20 साल पहले हफ्ता हफ्ता बारिश हुआ करती थी। कच्चे मकान थे, मकान की दीवारें गिर जाया करती थी और छप्पर दीवार गिर गई और छप्पर टंगा रह जाता था बरसात में। खैर, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है, वाकई ऐसा हुआ करता था। और एक और मैसेज हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि अब कार्यक्रम जो है बिल्कुल समापन की ओर है। और यह मैसेज हमारे पास आया है बिजनौर से, शाही मार्केट सोहारा जनपद बिजनौर से, आसिफ चौधरी और उनके परिवार के सदस्यों की ओर से। आप लिखते हैं, रात हो रही है और दुनिया सो रही है, लेकिन हम जाग रहे हैं। आपको मैसेज भेज रहे हैं, 2 लाइनें लिख रहा हूँ। वो बात है, वह और बात है कि हम तारीफ न कर सके, हम जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गए। क्या बात है, बहुत ही सुंदर आपका मैसेज हमारे पास आया है। और इसी मैसेज के साथ अब आज का ये कार्यक्रम रात के हम सफर संपन्न करने की मुझे यानी राजवीर को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रात के हमसफर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्प